मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 32 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

चार 26 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 32 सेकंड्स हुए हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और इस नई सुबह की ताजगी भरी इस मीठी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद है कि आज का सूरज आपके लिए नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नई सफलताओं का संदेश लेकर आया होगा। सुबह का ये समय अपने आप में दोस्तों बहुत खास होता है। रात की खामोशी के बाद जब जीवन फिर से रफ्तार पकड़ने लगता है तो हर ओर एक नई शुरुआत का एहसास होता है। कहीं चाय की खुशबू है, कहीं पक्षियों का मधुर कलरव, तो कहीं लोग अपने दिन की तैयारियों में लग चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि किसी भी नए दिन की शुरुआत तभी पूरी होती है जब हमें देश दुनिया की महत्वपूर्ण हलचलों की जानकारी मिल जाए। तो आइए अब रुख करते हैं समाचारों की ओर और जानते हैं देश विदेश की ताजा और प्रमुख खबरें। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय

0: सुबह के 6:05 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हर रोज हम अपने किसान भाइयों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज सुनिए खरीफ में हरा चारा उत्पादन, इस विषय पर डॉक्टर राम प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं। खरीफ में जहां हरा चारा उत्पादन करना चाहते हैं तो क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ में हरा चारा पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है?
2: नमस्कार किसान भाइयों, खरीफ में हरे चारे की महत्वपूर्ण योगदान है और हरे चारे की आवश्यकता है। आज मौसम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से चलते हुए लखनऊ तक पहुँच रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों को 10 जुलाई तक चारे की उन्नत खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है और उसके अनुसार ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ये सब जो हरे चारे की फसलें हैं, आवश्यकता अगर है तो चारे की बुआई करें।
1: तो खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है डॉक्टर साहब?
2: खेत की तैयारी में सबसे पहले भूमि का चयन आता है। चयन वहाँ हो जहाँ जल निकास उत्तम हो। दूसरी चीज, दोमट और बलुई दोमट जमीन इसके लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है
1: जी।
2: ऐसी परिस्थिति में किसान भाई जिस जमीन का 6.5 से 7.5 पीएच मान हो,
1: हाँ।
2: वही सर्वोत्तम जमीन चारे के लिए होती है।
1: तो प्रजातियां कौन कौन सी हैं डॉक्टर साहब? आपने ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया की बात की, कुछ बहुवर्षीय चारा भी है
2: जी। जैसे ज्वार है हमारा, ज्वार में है एकल कटाई, बहु कटाई
1: जी,
2: दो तरह के चारा की फसलें और उन्नत प्रजातियां कृषि वैज्ञानिकों ने दी हैं, जिसमें PC6, PC9, PC23 और HC171, HC260, UP Cherry 1, UP Cherry 2 और Raj Cherry 1 और 2
1: जी।
2: यह एकल कटाई की फसल है।
1: और बहु कटाई?
2: बहु कटाई में SSG 998, SSG 855, SSG 61-3 और Co 27, Pant Cherry 5 और Punjab Sudex Cherry 1, यह प्रजातियां सबसे उन्नतशील हैं।
1: और बाजरे में?
2: बाजरे की जो है प्रजाति, वह थोड़ा सा ज्वार की प्रजातियों से अलग, किसान भाई इस पर विशेष ध्यान दें। एकल कटाई के लिए Raj Bajra Cherry 2, Narendra Chara Bajra 2, ये हमारे कृषि विश्वविद्यालय की प्रजाति है। बहु कटाई के लिए Giant Bajra, Pro Agro No. 1, ये प्रजातियां हमारी हैं।
1: कहीं कहीं मक्का की फसल भी हरे चारे के रूप में किसान भाई उगाते हैं।
2: बहुत मुख्य आपने बात कही और किसान भाई जो उगाते हैं इसका रो टू रो थोड़ा सा इसका कम कर देते हैं उस मक्का की दाना की अपेक्षा।
1: स्पेसिंग?
2: हाँ, स्पेसिंग जिसे कहते हैं, पक्त से पक्त की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसकी जो प्रजात है बहुत ही अच्छी प्रजातियाँ, अफ्रीकन टाल है, विजय कंपोजिट है, जवाहर कंपोजिट है, BL54, APFM8 और प्रताप मक्का, Cherry 6 आदि प्रजातियां ये हैं जो एक बार ही इसमें कटाई होती है, इसमें बहु कटाई नहीं होती है।
1: डॉक्टर साहब, जहां दलहनी चारा में लोबिया उगाना चाहते हैं किसान भाई बहन?
2: देखिए, लोबिया की फसल तो बहुत अच्छी है और कम लागत में यह पैदा होती है। इसमें नत्रजन की मात्रा बहुत कम लगती है, फास्फोरस के भरोसे ये इसकी फसल ली जाती है। अगर कंपोस्ट की मात्रा 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई प्रयोग करें तो लोबिया की चारा बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रजातियां बहुत अच्छी हैं, कोहिनूर है, श्वेता है, बुंदेल लोबिया 1, 2, 3 है, GFC 1, 2, 3 प्रजात है एवं 4 भी प्रजाति इसकी GFC निकली हुई है, UPC 618, UPC 622, EC 4216 और रसियन जायंट ये पुरानी प्रजाति है। बहुत अच्छी ये प्रजातियां हैं लोबिया की, जिसमें हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में हरा चारा उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: मेरा मोबाइल नंबर है 94-50-76-38-23,

0: 6 3 8 2 3 94 50 76 38 23 पहली बरसात पर आई हुई नमी पर ज्वार बाजरा मक्का लोबिया की खेती उपयुक्त नमी आने पर बुआई करें।
1: डॉक्टर राम प्रताप सिंह साहब आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में हरा चारा उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ में हरा चारा उत्पादन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। इसी के साथ अब कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है गांधी चर्चा
3: में पहले सुनिए बापू के विचार।
4: महात्मा गांधी ने मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक में एक जगह लिखा है कि मुझे जेल का पहला अनुभव सन 1908 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छा पूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे तक खाना खा लेना होता है, उन्हें हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या कॉफी नहीं दी जाती, नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है, स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। जब मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक बनती हुई रसोई में ही डालने की बात कही तो वे बोले कि यहाँ आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं, आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है, आरोग्य के विचार से नमक ऊपर से लें या पकाते समय रसोई में डालें, दोनों एक ही बात है। वहां तो बड़ी मेहनत के बाद हम आखिर जरूरी परिवर्तन करा सके थे, लेकिन केवल संयम की दृष्टि से देखें तो दोनों प्रतिबंध अच्छे ही थे। ऐसा प्रतिबंध जब जबरदस्ती लगाया जाता है तो वो सफल नहीं होता, लेकिन स्वेच्छा से पालन करने पर ऐसा प्रतिबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए जेल से छूटने के बाद मैंने ये परिवर्तन भोजन में तुरंत किया, भरसक चाय पीना बंद कर दिया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया जो लगभग 10 वर्ष तक अखंड रूप से कायम रहा। अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। ये तो मुझे सूझा ही था कि नमक न खाने से ब्रह्मचारी को लाभ होता है। मैंने ये भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमजोर शरीर वाले को दाल नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं उन्हें तुरंत छोड़ ना सका था, दोनों चीजें मुझे प्रिय थी। यद्यपि शस्त्र क्रिया के बाद कस्तूरबाई का रक्त स्राव थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो गया और किसी प्रकार बंद ही न होता था। अकेले पानी के उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था, दूसरी दवा करने का आग्रह न था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। बहुत मनाने पर भी, अपने कथन के समर्थन में कुछ न कुछ पढ़कर सुनाने पर भी वो नहीं मानी। आखिर उसने कहा कि दाल और नमक छोड़ने का तो कोई आपसे कहे तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे दुख हुआ और हर्ष भी। मुझे अपना प्रेम उड़ेलने का अवसर मिला। उसके हर्ष में मैंने तुरंत ही कहा, तुम्हारा ये ख्याल गलत है, मुझे बीमारी हो और वैद्य इस चीज को या दूसरी किसी चीज को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन जाओ, मैंने तो 1 साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़े, तुम छोड़ो या ना छोड़ो ये अलग बात है। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ, वो कह उठी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं कहते कह गई, अब मैं दाल और नमक नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात लौटा लें, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी तो अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन मैं अपनी ली हुई प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकूंगा, मुझे तो इससे लाभ ही है। मनुष्य किसी भी निमित्त से संयम क्यों ना पाले, उसमें उसे लाभ ही है, इसलिए तुम मुझसे आग्रह ना करो, फिर मेरे लिए भी एक परीक्षा हो जाएगी और इन दो पदार्थों को छोड़ने का जो निश्चय तुमने किया है उस पर दृढ़ रहने में तुम्हें मदद मिलेगी। इसके बाद मुझे उसे मनाने की जरूरत तो नहीं ही रही, आप बहुत हठीले हैं, किसी की बात मानते ही नहीं, ये कहकर और अंजलि भर आंसू बहाकर वो शांत हो गई। मैं इसे सत्याग्रह का नाम देना चाहता हूँ और इसको अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में से एक मानता हूँ। इसके बाद कस्तूरबाई की तबीयत खूब संभली, क्षीण शरीर फिर पनपने लगा। स्वयं उस पर तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव अच्छा ही पड़ा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक नहीं रही। नमक और दाल छोड़ाने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफी किए और दक्षिण अफ्रीका में तो उनके परिणाम अच्छे ही आए। वैद्यक दृष्टि से दोनों चीजों के त्याग के विषय में दो मत हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं कि संयम की दृष्टि से तो इन दोनों चीजों के त्याग में लाभ ही है। भोगी और संयमी के आहार भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वाले लोग भोगी का जीवन बिताकर ब्रह्मचर्य को कठिन और कभी कभी लगभग असंभव बना डालते हैं।
3: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, जीवन की सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान हमें केवल ईश्वर की शरण में ही मिल सकता है, इसलिए आइए हम भी चलते हैं उस परमपिता परमेश्वर की शरण में और करते हैं उस परमपिता की आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जब प्रकृति नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आती है, तब मन भी ईश्वर की भक्ति में डूबकर एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो आइए इसी भाव के साथ आरंभ करें आज की आराधना का। आज आराधना का आरंभ करते हैं करबला की कहानी से, जो हमें सच्चाई, सब्र और कुर्बानी का पैगाम देती है।

श्रोताओं, जब भक्ति किसी रूप और आकार की सीमा से परे हो जाती है तब वो सच्चे अर्थों में आत्मा की पुकार बन जाती है। भक्ति भाव में डूबी ये साधना हमें भीतर की शांति और सत्य से जोड़ती है और उस समय

श्रोताओं, कहते हैं राम नाम में ही शांति है, सहारा है और जीवन की राह है। तो आइए सुबह सवेरे हम भी करें सिया राम के नाम का सुमिरन।

श्रोताओं, माता का नाम लेते ही मन में विश्वास और दिल में हिम्मत जाग उठती है। माँ केवल स्नेह और ममता की प्रतीक ही नहीं बल्कि शक्ति, श्रद्धा और अटूट विश्वास का स्वरूप भी है। आइए उसी जग जननी के चरणों में हम भी अपना मन समर्पित करते हुए सुनते हैं ये पावन भजन।

माता रानी हम सब का कल्याण करे। जिनके मस्तक पर चंद्र सुशोभित है, जटाओं में गंगा विराजती है और कंठ में विष धारण कर जो जगत का कल्याण करते हैं, उन देवादिदेव महादेव को शत शत नमन है।

इसी मंगल भावना के साथ आज के आराधना कार्यक्रम को अब यही विराम देने का समय आ गया है। श्रोताओं, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप और हम सब के परिवारों पर सदा बना रहे, आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव का प्रकाश फैलता रहे और हर नया दिन आपके लिए आशा, विश्वास और मंगल संदेश लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, भक्तिमय इस पावन बेला में आइए नमस्कार लखनऊ के सफर में अब आपको सुनवाते हैं भक्ति और मर्यादा की अनुपम गाथा श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज का प्रसंग है आश्रम में श्री राम के अयोध्या वासियों, माताओं और गुरुजनों से मिलने और उनका स्वागत सत्कार करने का वर्णन। आज सुनिए भाग 213।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से

बहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी वाणी जयराम और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

0: ये न केवल शरीर की गर्मी को संतुलित करता है बल्कि हमारी पाचन शक्ति, त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। हमारा आज का विषय है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा एक प्रकार का प्राकृतिक रेजिन है जो विशेष पेड़ों के तनों से निकलता है। भारत में ये खासतौर पर राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका उपयोग सदियों से होता आया है। गर्मियों में जब शरीर लू से झुलसने लगता है, पसीना थकान में बदल जाता है और अंदरूनी गर्मी, सिर दर्द, नकसीर और चक्कर जैसे लक्षण पैदा करने लगती है, तब गोंद कतीरा जैसे तत्व शरीर को ठंडक देकर एक ढाल का काम करते हैं। गोंद कतीरा बाहर से कठोर और पारदर्शी होता है, लेकिन जब इसे रात भर पानी में भिगोया जाता है तो ये फूल कर एक ठंडी जिलेटिन जैसी संरचना में बदल जाता है। यही गोंद का रूप शरीर में जाकर ठंडक फैलाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अंदर से शरीर को ठंडा करता है बिना किसी नुकसान के। ये हमारे पाचन तंत्र पर भी अच्छा असर डालता है, पेट की जलन और गैस की समस्या को कम करता है और पेशाब की रुकावट जैसी समस्याओं में भी राहत पहुंचाता है। गर्मियों में अक्सर शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और ऐसे में गोंद कतीरा को ठंडे दूध, शिकंजी या नींबू पानी में मिलाकर पीने से शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है और तापमान का संतुलन भी रहता है। आप इसे रोज सुबह एक चम्मच भिगोकर दूध या शरबत के साथ सेवन कर सकते हैं। ये शरीर को आंतरिक ठंडक तो देता ही है, साथ ही मांसपेशियों को मजबूत बनाने, कमजोरी दूर करने और थकान को कम करने में भी सहायक होता है। यही कारण है कि ये अक्सर गर्मियों के पारंपरिक शरबतों जैसे गोंद कतीरे का फालूदा या रूह अफ़ज़ा मिल्क में शामिल किया जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि गोंद कतीरा केवल पुरुषों या मजदूरों के लिए फायदेमंद है तो जरा रुकिए, ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी है। प्रसव के बाद की कमजोरी, मासिक धर्म की अनियमितता और गर्भाशय को मजबूती देने के लिए भी गोंद कतीरा का उपयोग किया जाता है। खासकर जिन महिलाओं को गर्मी में शरीर में जलन, थकान या चक्कर आने जैसी समस्या होती है, उनके लिए ये एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। गोंद कतीरा त्वचा के लिए भी वरदान है। इसके ठंडे स्वभाव के कारण ये त्वचा पर जलन और फुंसियों को कम करने में मदद करता है। इसे चेहरे पर फेस पैक की तरह भी लगाया जा सकता है। गर्मी में जब त्वचा रूखी और चिपचिपी हो जाती है तब ये एक शीतल मॉइस्चराइजिंग प्रभाव डालता है जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक भी आती है। एक और रोचक बात ये है कि गोंद कतीरा का उपयोग आयुर्वेद के अलावा यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी होता है। इसे वात पित्त कफ को संतुलित करने वाला तत्व माना गया है। ये विशेष रूप से पित्त को शांत करता है जो गर्मी के मौसम में संतुलन में आ जाता है और शरीर में कई तरह की जलन, चिड़चिड़ापन और त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा करता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां रेडीमेड और प्रोसेस्ड ड्रिंक्स का चलन बढ़ गया है, वहां गोंद कतीरा जैसे पारंपरिक तत्वों को भूलना हमारी सेहत के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ये प्रकृति की ओर लौटने का सीधा रास्ता है। ये बाजार में भी आसानी से मिल जाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सस्ता भी है और पूरी तरह से सुरक्षित भी। श्रोताओं, क्यों ना इस गर्मी हम सभी अपने घर में गोंद कतीरा को शामिल करें। क्यों ना हम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय कतीरे वाला ठंडा दूध पिलाएं। क्यों ना हम अपने शरीर को बाहरी एसी से नहीं बल्कि अंदर की ठंडक से आराम दें। यही तो असली स्वास्थ्य है, अंदर से संतुलन और बाहर से स्फूर्ति। आज की स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे विषय के साथ जो हमारे जीवन को स्वस्थ और सरल बनाने में मदद करेगा। तब तक स्वस्थ रहें, शीतल रहें और इस गर्मी में गोंद कतीरा जैसी प्रकृति की देन को अपनाकर खुद को भीतर से ठंडा रखें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सेहत के लिए गोंद कतीरा के फायदे, नीना सोनकर से अभी स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे ये जानकारी। और इसी के साथ अब स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी का नमस्कार लखनऊ में। प्रातः के 7 बजे हैं और श्रोताओं ये समय है स्वास्थ्य चर्चा का। कार्यक्रम में आज नीना सोनकर से जानकारी सुनिए सेहत के लिए गोंद कतीरा के फायदे इस विषय पर।
1: नमस्कार, मैं हूँ नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पारंपरिक प्राकृतिक तत्व की जो गर्मियों की तपती दोपहर में शरीर को अंदर से शीतलता प्रदान करता है।

आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा आगरा और बिजनौर जिलों की खबरें। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा मुहर्रम पर खसूसी मकाला, करबला का पैगाम, सब्र और इंसानियत। मकाला निगार होंगे प्रोफेसर सैयद सादिक हुसैन आबिदी और डॉक्टर फाजिल हाशमी से सुनिएगा मर्सिया। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे डॉक्टर आभा आर के गाए भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:50 और दिन में 2:45। आपको पुनः बता दें आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे डॉक्टर आभा आर दीक्षित के गाए भोजपुरी लोकगीत। प्रातः 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा अशोक गोस्वामी के वायलिन वादन का। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज डॉक्टर अंशुल चंद्रा से ममता उपाध्याय की भेंटवार्ता बहनें सुन सकेंगी। बातचीत का विषय रहेगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन। वार्ताकार होंगे राम नरेश वर्मा। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा जन्मेजय शुक्ल से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। बातचीत का विषय रहेगा ग्रामीण आजीविका मिशन और जन भागीदारी। 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आज कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे। आलेख व वाचन आनंद अग्निहोत्री का होगा एवं संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का होगा। शाम 7:45 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में आज देवांशी प्रकाश से डॉक्टर शिवा राकेश का इंटरव्यू सुनिएगा यंग माइंड्स रीडिंग साइंस एंड इंटरव्यू विद रिसर्चर इस विषय पर। रात 8 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे की वार्ता सुनिएगा। विषय होगा भक्ति काल के कवियों का दर्शन। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों के स्वर में नात व कव्वाली। रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा अशोक गोस्वामी के वायलिन वादन का। और रात्रि 11:10 से सुनिएगा लखनऊ स्थित स्थानीय इमामबाड़ा गुफरो माब में संपन्न मजलिसे शाम ए गरीबा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत एवं प्रायोजित कार्यक्रम भी सुन सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा।

आज के सफर की शुरुआत एक छोटे से लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम करने के बाद आपने सोचा हो, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर किसी दोस्त की सलाह मानकर आपने कोई फैसला लिया हो और बाद में लगा हो कि वो सलाह सचमुच बड़े काम की थी। दरअसल जिंदगी में हम जो भी फैसले लेते हैं उनके पीछे केवल हमारी समझ नहीं होती बल्कि उन लोगों और विचारों का भी बहुत गहरा असर होता है जिनके बीच हम रहते हैं। शायद इसी बात को बहुत सरल शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, बिनु सत्संग विवेक ना होइ। यानी अच्छे लोगों और अच्छे विचारों का साथ मिले बिना सही समझ विकसित नहीं होती। अब एक सवाल मन में कौंधता है कि आखिर सत्संग है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ किसी धार्मिक कार्यक्रम में बैठना है? जी नहीं, सत्संग का मतलब उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सत्संग यानी ऐसी संगति, ऐसा माहौल, ऐसी बातें और ऐसे विचार जो हमें कुछ अच्छा सोचने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। हम सब ने घर में बड़ों से कुछ ना कुछ सीखा है। किसी ने सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो किसी ने कहा कि बच्चों देखो जरूरतमंद जहां दिखे उसकी मदद जरूर करो, तो किसी ने ये समझाया कि गुस्से में फैसले कभी नहीं लेने चाहिए। ये सारी बातें किताबों से कम और संगति से ज्यादा सीखने को मिली, और बस यही तो सत्संग है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा मेहनती लोगों के बीच रहता है तो उसके भीतर भी कुछ कर गुजरने का जज्बा आ जाता है। वहीं अगर आसपास हमेशा शिकायत करने वाले और नकारात्मक सोच वाले लोग हों तो धीरे धीरे वही सोच हमारे अंदर भी घर करने लगती है। ये आपने भी महसूस किया होगा, है ना? दोस्तों, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी कमरे में अगरबत्ती जल रही है और वहां बैठने वाले हर व्यक्ति के कपड़ों में उसकी खुशबू अपने आप आ जाती है, ठीक यही बात अच्छी संगति के साथ भी है। अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे विचार अपने मन में आने ही लगते हैं। आज के समय में सत्संग का अर्थ केवल लोगों तक सीमित नहीं है। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो भी हमारी संगति का ही हिस्सा बन जाता है। अगर दिन भर हम ऐसी खबरें, वीडियो या बातें सुनते रहें जो मन में डर, गुस्सा या नफरत बढ़ाए, तो उसका असर हमारे सोचने के तरीके पर भी पड़ेगा ही। दूसरी ओर अगर हम प्रेरक बातें सुने, अच्छे लेख पढ़ें या सकारात्मक लोगों से जुड़ें, तो हमारी सोच भी सकारात्मक बनती है। दोस्तों, विवेक का मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें जानना नहीं है। विवेक का मतलब है सही समय पर सही बात समझ पाना। जैसे कि हमें कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब गुस्से को रोकना है, कब किसी की मदद करनी है, और हाँ, कब किसी गलत बात का विरोध करना है हमें। ये समझ धीरे धीरे बनती है और इसमें अच्छी संगति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और दोस्तों, अगर ध्यान दें तो हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो बिना किसी बड़े उद्देश्य के हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संगत बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, और कई बार दोस्ती ऐसी राह दिखा जाती है जो शायद हम अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाते हैं।

दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोगों के पास समय कम है, लेकिन फिर भी दिन में कुछ मिनट अच्छे विचारों के लिए निकालना मुश्किल नहीं है। कोई अच्छी किताब, कोई प्रेरक लेख, कोई सकारात्मक चर्चा या किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत, ये सब हमारे जीवन में सत्संग की तरह काम करते हैं। और एक बात और, सत्संग का मतलब ये नहीं कि हम केवल दूसरों से सीखें, कभी कभी अपने आप से ईमानदारी से बात करना भी एक तरह का सत्संग ही है। दिन के अंत में 2 मिनट रुककर ये सोचना कि आज मैंने क्या अच्छा किया, मैं अपने आप में क्या सुधार सकता हूँ, ये आदत भी हमें विवेक की ओर ही ले जाती है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, तुलसीदास जी की ये छोटी सी पंक्ति आज भी उतनी ही सच लगती है जितनी सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। क्योंकि समय बदल गया है, साधन बदल गए हैं, लेकिन इंसान की जरूरत नहीं बदली। आज भी हमें सही और गलत का अंतर समझने के लिए अच्छे विचारों और अच्छी संगति की जरूरत है। तो आइए आज से हम ये कोशिश करें कि अपने आसपास ऐसे लोगों और ऐसे विचारों को जगह दें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। क्योंकि अच्छी संगति का असर धीरे धीरे जरूर होता है, लेकिन होता बहुत गहरा है। अब जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि अच्छे लोगों के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय जीवन को नई दिशा दे सकता है। याद रखिए, संगति से गुड़ उपजत है, संगति से गुड़ जाए, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए अपनी दोस्त रिंकी शर्मा को अनुमति फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेती असाना। पहले मुख्य समाचार। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा, कहा किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा आज, ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। आरोपितों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
1: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2-3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उन्होंने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री कल अयोध्या भी पहुंचे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह

0: अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई घर का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यहां प्रतिदिन 1,00,000 स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कराकर विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा को सशक्त समाज की पहचान बताते हुए कहा,
0: शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
2: भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौमे आशूरा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। गोरखपुर सहित राज्य के कुछ पूर्वी जनपदों में आज तड़के हुई बारिश से सुबह का मौसम सुहावना हो गया है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कल भी हल्की बारिश हुई थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए

0: दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आनंद लीजिए अशोक गोस्वामी के वायलिन वादन का। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र। राग अलैया बिलावल में है, विलंबित रचना तीन ताल में और द्रुत रचना भी तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अशोक गोस्वामी का वायलिन वादन राग अलहिया बिलावल में, और लीजिए अब सुनिए राग भैरवी। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना भी तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अशोक गोस्वामी का वायलिन वादन राग भैरवी में। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। श्रोताओं, इसी के साथ अब शास्त्रीय संगीत का ये सफर यहीं संपन्न होता है और इसी के साथ संपन्न होता है नमस्कार लखनऊ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस

प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष

0: 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।

0: श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial

0: मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे पर मबनी इनकलाब किस तरह इक्तसादी खिदमात तक ज्यादा रसाई को मुमकिन और उन्हें किफायती बना रहा है, जिससे रहन सहन में आसानी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाख्तियार हो रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में शराकत दार मुल्कों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने की खातिर मुसलसल पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक सेशेल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज के एक दस्ते और भारतीय बहरिया के दो जहाजों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम से मुतालिक तालमेल मरकज की आला सतह की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने इस मीटिंग का अहतमाम किया है। इसमें मरकजी वजारतों, रियासती सरकारों और मनशियात की रोकथाम से मुतालिक कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, ताकि मुल्क में मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों का जायजा लिया जा सके और उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर जनाब अमित शाह 2026 से लेकर 2029 तक के अरसे के लिए मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। सनती और कमर्शियल एलपीजी सारिफीन को बड़ी राहत पहुंचाते हुए सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर सभी तरह की बंदिशें हटा ली हैं और इसकी सप्लाई उसी सतह पर बहाल कर दी है जो मगरबी एशिया बहरान से पहले थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने एक बयान में कहा है कि बहरान शुरू होने पर बल्क एलपीजी की जो सप्लाई मौतल कर दी गई थी उसमें बहरान से पहले की खपत की सतह की 50% की रियायत की गई है, जिससे कमर्शियल और सनती सारिफीन को काफी राहत मिली है। एलपीजी सप्लाई की सूरत हाल ही में बेहतर होने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने एलपीजी पूल के लिए C3-C4 स्ट्रीम की मुंतकली को कम करने का भी फैसला किया है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान सरकार ने लाजमी खिदमात के एक्ट के तहत अहकाम जारी किए थे, जिसकी रूह से C3-C4 स्ट्रीम को सिर्फ एलपीजी की पैदावार के लिए बरोकार लाने की बात कही गई थी, ताकि अंदरून मुल्क एलपीजी की पैदावार में इजाफा हो सके। सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि वो कमर्शियल और सनती एलपीजी सारिफिन के बारे में जामे डेटा बरकरार रखें, ताकि मौसर मनसूबाबंदी और सप्लाई बंदोबस्त में सहूलत हो सके। सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी को वसत देने के अपने अहद को भी दोहराया है। दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
0: इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए अबूरी आंसर कीज को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवारों को सहूलत फराहम की है। तलबा इस महीने की 28 तारीख तक ₹200 फी सवाल की फीस अदा करके इन सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कबूल किए जाने की सूरत में ये पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में सख्त कार्रवाई की है और 8 नामजद मुलजिमों और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ पहली FIR दर्ज की गई है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। मस्कूरा FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कृणीश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टीनू का नाम मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ये केस उस वक्त रोशनी में आया जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मौसूल होने वाले चढ़ावे और चंदे की चोरी के इल्जाम सामने आए। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरखास्त की थी, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

आपके मेल @gmail.com। तो मुस्कुराइए, कुछ पल अपने लिए निकालिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अगले कुछ समय तक रहेगा सिर्फ आपकी पसंद, आपकी यादें और संगीत का खूबसूरत सफर मेरे यानी रिंकी शर्मा के साथ। तो चलिए, ढेर सारे मेल हमारे पास आ चुके हैं और शुरुआत करते हैं आज के पहले मेल से, जो हमें भेजा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घोड़कार राही श्रीमती सरिता घोड़कार प्रिंस एकांश घोड़कार ने। बदलापुर मुंबई से एक मेल आई है प्रणीता सिद्धांत और टुक टुक की। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से भी मेल हम तक पहुंच चुकी है, से भेजा है वैशाली शैलेश श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि घोड़कार ने। एक मेल हमारे पास आई है ग्राम पजौनिया जिला जालौन से, इसे भेजने वाले हैं सतेंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। एक मेल हमें भेजी है राहुल मनवर सरला मनवर विशाल मनवर चेतन मनवर और रोशनी मनवर ने, इनके साथ प्रियांशी भी है और कह रही है कि नमस्कार आपको, तो हमारा भी प्यार भरा नमस्कार आपको। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से भी एक मेल आई है, बहुत ही खूबसूरत सा नाम इस पार्क का, ऑक्सीजन पार्क। जी हाँ, हरे भरे पेड़ पौधे हो और ऑक्सीजन हम सभी के लिए ज़रूरी है, इसे भेजा है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि और हिरामण शेंडे ने। तो आइए आपको लिए चलते हैं एक खूबसूरत से नगमे की ओर, सुनवाते हैं फिल्म हमराज का एक गीत, गीत में आवाज़ महेंद्र कपूर की, संगीत रवि का और बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने। और हाँ, ये खूबसूरत से नगमा आप में से ही एक श्रोता की पसंद है, तो सुबह सवेरे एंजॉय कीजिए, खूबसूरत सा ट्रैक पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर।

जी हाँ दोस्तों, हम सफ़र अगर कदम से कदम मिलाकर चलता रहे तो सफ़र वाकई बहुत आसान हो जाता है, और यह खूबसूरत सी बात कही गई थी इस खूबसूरत से नगमे में। और यूँ भी वक्त बदलता है, लेकिन अच्छे गीत संगीत से जुड़ी यादें हमेशा ताजा रहती है। आइए सफर में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला मेल जो हमें भेजा है ग्राम जसवंडी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने। श्रोताओं, एक मेल हमें बहुत दूर से मिली है, इसे भेजा है लद्दाख से BHM नरेश सिंह, विकास, विजेंद्र, सपना शिंदे, ब्रजेश, सुनील, JP यादव, पिंकी, प्रिया, ज्योति और सुषमा जी ने। आप सभी की फरमाइश एक बेहद ही खूबसूरत से नगमे की है, तो बिना देर किए आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा नगमा।

अलका याग्निक और विनोद राठौर को सुन रहे थे आप। फिल्म थी दीवाना। इस गीत का संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और बोल लिखे थे समीर ने। खूबसूरत गीतों का ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, लेकिन वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अभी वापस आते हैं।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। दोस्तों, हर सुबह खास होती है क्योंकि ये शुरुआत होती है कि नए दिन की, नए सफर की। इस सफर को कैसे चलना है, कैसे जीना है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये आपके और हमारे हाथ में होता है। इसलिए सकारात्मकता का हाथ थामे और खूब दूर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। कार्यक्रम का अगला मेल हमें आया है प्रहलाद कुमार कुशवाहा, श्रीमती सोनम कुशवाहा, गनीपुर बेहटा, बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह,

पाठक भी मेल कर रहे हैं। एक मेल हमारे पास आई है कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन एमपी से प्रवीण शमाली और मीना श्रीमाली की। सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा भी मेल कर रहे हैं ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से। प्रेम लता वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा का मेल आ चुका है और आप सभी की फरमाइश पर एक खूबसूरत सा नगमा आप तक पहुंचा रहे हैं। इसे सुनिए, एंजॉय कीजिए, फिर ढेर सारी बातें करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी कोई पसंदीदा गीत है या कोई प्यारा सा संदेश है तो हमें ज़रूर लिखिए। हो सकता है अगली फरमाइश आपकी ही हो। एक बार फिर

आपको अपना ईमेल एड्रेस बता दें, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। चलिए पढ़ते हैं अगला मेल, जो बहुत खूबसूरत सा मेल है। इसे भेजा है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा ने। अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे मेल कर रहे हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी का मेल भी हम तक पहुंच चुका है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का मेल आ चुका है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी मेल कर रहे हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मेल हम तक पहुँच चुका है। एक खूबसूरत से नगमे की फरमाइश इन्होंने की है फिल्म परदेश से, तो लीजिए सुनिए आपके लिए आपकी पसंद का यह खूबसूरत सा ट्रैक फिल्म परदेश से कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में।

0: यादों की खुशबू और सुरों का साथ, यही तो है इस महफिल की पहचान। लेकिन दोस्तों, आज की ये संगीत भरी मुलाकात बस यहीं तक। आपके मेल, आपकी भावनाएं और आपकी पसंद के गीत इस महफिल को हर बार खास बना देते हैं। इसी तरह अपना प्यार, अपने संदेश और अपने पसंदीदा गीत हमें भेजते रहिए। हम उन श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी हैं कि जिनकी समय की कमी की वजह से हम आज मेल शामिल नहीं कर पाए, पर अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब हो सकता है आपके मेल हम जरूर शामिल करें। नई बातों, नए मेल और नए गीतों के साथ किसी रोज फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विश्व प्रख्यात ताजमहल के पार्श्व में योगा कर निरोग रहने का दुनिया को संदेश दिया गया। वहीं आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर योगा अभ्यास करते हुए सभी को करो योग रहो निरोग का देश और दुनिया को संदेश दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। योग शिविर में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सरकारी अर्ध सरकारी आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में मौजूद शहरवासियों को योगाचार द्वारा योग के विभिन्न आसन कराए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पूरी दुनिया हमारी विद्या और विद्या का अनुगमन कर रही है, जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करती है।
3: करें योग, रहें निरोग, और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और मेंटल हेल्थ इस समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत बड़ा योगदान है।
2: उन्होंने कहा कि योग तनाव को दूर करता है और एकाग्रता पैदा करने के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बीते दिनों आगरा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रिक्स इंडिया 2026 के तहत पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरे ब्रिक्स एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक सम्पन्न हुई। पहले ब्रिक्स

0: एमएसएमई फोरम की बैठक में केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेन्द्र चौधरी सहित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबिया, कजाकिस्तान, मलेशिया सहित 21 देशों के ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लेकर वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमजोर वर्गों के उत्थान में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8.6 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो 38 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन केवल संवाद का अवसर नहीं है बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग, तकनीकी आदि।
1: स्वच्छता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के इस अभियान के माध्यम से एक संदेश समाज में देने का कि पूरा समाज जब किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो वो अभियान एक आंदोलन बन जाता है।
0: आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के पी इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किसान जवान महिला स्वाभिमान रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दी घाटी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य किसी दरकार और इतिहासकार का मोहताज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
2: हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है।
3: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ स्थित ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने पर लाभार्थियों को न केवल भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य योजनाओं के दैनिक लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों ने बताया,
5: जो हमारी जमीन में ट्रेनिंग 2 में थी अब 1 में हो गई है, हमें पूर्ण भूमिधारी का अधिकार मिल गया है, इसमें हम लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, हमारा स्वामित्व पूरा हो गया। सरकार ने हमें वो प्रमाण पत्र दिए और हमें खतौने दिए, हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
4: मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। जन विभिषिका के शिकार विस्थापितों को भूमि आवंटन के मालिकाना अधिकार के अभिलेख पत्र प्रदान करने से पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों के तत्वाधान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई बिजनौर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभ

0: प्रारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मसूद, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौहान तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंदिरा बाल भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि तारिक मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा जनपद की विकास पर योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जरिए बिजनौर जिले के पारंपरिक स्वादों को न केवल नई पहचान मिलने जा रही है बल्कि इससे जुड़े छोटे और मझोले कारोबारियों के दिन भी बहुरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत बिजनौर के 4 प्रमुख स्थानीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन व्यंजनों को तैयार करने वाले स्थानीय निर्माताओं को सरकार की तरफ से भारी अनुदान और आसान किस्ते पर ऋण की सुविधा मिलेगी। जिले में प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रशासन ने 4 खाद्य पदार्थों का चयन किया है। धामपुर की सिंगाड़े की कचरी, नजीबाबाद की गजक, सोन पापड़ी और बतीसा पारंपरिक रूप से तैयार होने वाला एक मीठा व्यंजन है जो इस सूची का मुख्य हिस्सा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण सुविधा के साथ भारी अनुदान दिया जा रहा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया,
1: परंपरागत स्थान है या कुछ ऐसे व्यंजन है जो अभी तक लोकल लेवल तक ही सीमित थे, उसी जनपद तक सीमित, अब इस स्कीम से उनकी पहचान प्रदेश भर में और देश भर में या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का सरकार का मुहिम है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।

कर्बला में सब्र की इंतहा तब ख़त्म हो गई जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर हज़रत अली असगर, जिनकी सिर्फ उम्र 6 महीने की थी, उनके प्यासे गले पर 3 भाल का तीर चलाकर शहीद कर दिया गया। 3 भाल का तीर उस वक्त में जंगली और वहशी जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इमाम ने उस पर भी सब्र किया। जुल्म यहीं नहीं रुका। 6 माह के बच्चे की कब्र को खोदकर इन मलूनों ने बच्चे का सिर तन से कलम कर दिया, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उफ़ न किया, सब्र किया। इस मौके पर शायर ने सही कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान से मोहब्बत थी। जब यजीदी फ़ौज ने आपको घेरा तो इमाम ने फरमाया, मैं कुरैज़ी नहीं चाहता, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। मगर उमर साद मलून, यजीदी फ़ौज का कमांडर, इस बात पर बजित था कि या तो यजीद की बैत करो वरना सर दे दो। बस इमाम को यकीन हो गया। उन्होंने शब आशूरा अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम सब की ज़मानत मैं लेता हूँ, जन्नत की बशारत देता हूँ, इनको हमारे सर की तलब है, जिसमें से जो भी लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं। इमाम ने यह कहकर चिराग को बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इमाम ने चिराग को फिर रोशन किया तो तमाम साथी, तमाम अंसार, तमाम दोस्त सब मौजूद मिले और सभी शिकवाकुन थे कि मौला, क्या आपको हम पर यकीन नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, आप अगर हुक्म दें तो हम सभी अभी फौरन अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें काट कर आपके कदमों में डाल दें। तभी उसी मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जैसे जानिसार साथी मुझको मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले। किसी शायर ने बजा फरमाया है मौजूदा पसे मंज़र में कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत।

अल्लाह अल्लाह, रोज़े आशूरा नमुदार हुई, पहला तीर दुश्मन यजीदी फ़ौज की तरफ से खय्याम हुसैनी पर लगा। आगाज़ जंग हो गया। एक एक करके तमाम अंसार, दोस्त भाई भतीजे भांजे बेटे शहादत जाम पीते रहे। वो वक्त भी आ गया कि जब मर्दों में फ़कत आबिद बीमार बचे जो गश में थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुख्सत के लिए खैमे में आए। सैयद सज्जाद ने गश से आंखें खोली, पूछा, बाबा क्या हुआ? इमाम ने फरमाया, सज्जाद, मर्दों में सब के सब शहीद हुए, सब ने शहादत का जाम नोश फरमाया, अब मर्दों में फ़कत तुम बचे हो। सैयद सज्जाद ने पूछा, क्या आशकिया खैमों में आ गए? इमाम सैयद सज्जाद को गैज आ गया और आपने मैदान जाने का इरादा किया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि सज्जाद, तुम ही इमाम वक्त हो, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, इस इस्लाम को बचाना है, सब्र करो, तुमको माँ बहनों खुबियों को सरे दरबार साथ में जाना है, इस पर भी तुमको सब्र करना है और सजदे शुक्र अदा करना है।

हुआ, सर झुक गया फलक का, ये औजे जमी हुआ, खुर्शीद महवे हुसने हुसैन।

लग गए चेहरे के नूर से, हातिफ ने दी सदा कि जहे शाने करबला, मुख्तारे कायनात है मेहमाने करबला, फूलों से आज भर गया दामाने करबला, बस अब नवा बहिश्त है

जिससे अर्श वो दुर्रे नजफ मिले। अब्बास ने कहा कि मेरा फख्र है ये काम, बीवी तुम्हारे बाप का अदना हूँ मैं गुलाम। दी तुमने आबरू मुझे ऐ दुख्तरे इमाम, अब हो गया जहाँ में बहिश्ती हमारा नाम। कौ

वो कहकर ये बात बाग उठाई समंद की, सूरत बदल गई फरसे सर बुलंद की, छलबल हरन की तेज परी थी परंद की, सूरत बलाएं लेती थी हर जोड़ बंद की, बिजली चमक के छुप गई पारा तड़प गया, और जंगल में यूं उड़ा कि चिकारा तड़प गया, कदम जमीन पे न रखता था ना से, बिजली को खौफ क्या है नशेबो फराज से, चालाकियां दिखाता था किस इम्तियाज से, उड़ता था पर सदा न निकलती थी सांस से, राकिब वो हैं जो फर्क दो आलम के ताज हैं, घोड़ा भी जानता है कि नाजुक मिजाज हैं, मतलब मुनाफिकों के जो हैं मुलतवी रहें, या रब तेरे हुसैन के बाजू कवी रहें, तैगें खिंची लिए हुए भागे जो अहले शर, कटकर किसी का हाथ गिरा और किसी का सर, तलवार यहाँ पड़ी थी किसी की तो वहाँ पसर, बरछी थी इस शकी की तो उस नहस का जिगर, ये जंग थी कि हश्र कोई जानता न था, बेटे को बाप खौफ से पहचानता न था, पढ़कर रजज अली ये वली का पेसर बढ़ा, गोया शिकार खेलने को शेर नर बढ़ा, दरियाए कहरे खालिक जिन्नो बशर बढ़ा, बहरे नबर्द मालिक फतहो जफर बढ़ा, और तड़पा जो रख्श बर्क निगाहों से गिर गई आमद खुदा के शेर की आंखों में फिर गई, जब करबला में

0: घर, ऐसा न हो निकल पड़े ज़ैनब बरहना सर। चिल्लाए तब ये रोके शहंशाहे बहरोबर, अम्मा कमर तो टूट गई जाए अब किधर। हम मर गए कि खल्क से भाई गुजर गया, बाजू हमारा थामने वाला तो मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला ज़रीह पाक पे बुलवा ये शिताब, अब हिजर की अनीस के दिल को नहीं है ताब।
1: सामाइन, आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाज़त, आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से ही नश्र किया जा रहा था। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर आभा आर दीक्षित के गाए भोजपुरी लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस सोहर के साथ, सुनिए और आनंद लीजिए।

लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर आभा आर दीक्षित के गाए भोजपुरी लोकगीत। अभी आपने इनकी मीठी आवाज में सुना ये सोहर, और लीजिए अब सुनिए ये खेमटा।

0: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आभा आर दीक्षित के गाए भोजपुरी लोकगीत, अभी आपने सुना इनके स्वर में खेमटा। आपके साथ संगत करता थे ढोलक बजाई मनोज कुमार मेहता ने, हारमोनियम पर थे चंद्रेश पांडे, बांसुरी बजा रहे थे अलका सिंह, साइड रिदम दिया विनोद कुमार श्रीवास्तव ने और नक्कारा बजा रहे थे सुनील कुमार विश्वकर्मा। श्रोताओं, इसी खेमटा के साथ अब आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 10:01 हो चुके हैं और समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए एक खूबसूरत से गीत से। ये गीत हमने लिया है फिल्म जीत से। संगीत दिया है इस गीत को नदीम शवर ने और बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, उम्मीद है ये खूबसूरत सा नगमा आपको ज़रूर पसंद आएगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म मन से।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए फिल्म मन के इसी गीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए कल 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 235 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति, अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स की महारानी के साथ मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधी उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने भारत के जनधन कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी बातचीत की, जो एक सरकारी पहल है और जिसके तहत परिवारों को किफायती दरों पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्ण कांत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट

0: अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और सेशेल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन संबंधों पर आधारित दूरगामी साझेदारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी प्रभावी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू हो रहा है। आज 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी व्यापार पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाभी ढांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला में कल आए भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों से मृतकों की संख्या अब 235 हो गई है। 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: भूकंप के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए कई देश आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को निकालने के प्रयास रोक दिए हैं। ओमान तट पर कल एक जहाज पर हुए हमले के बाद ये निर्णय लिया गया। इसके पहले ईरान की अनुमति के बिना जहाजों को नए मार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई थी। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: सबसे पहले बात फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। गोंजालो प्लाटा के शानदार खेल की बदौलत इक्वाडोर ने वापसी करते हुए ये मैच जीत लिया। इससे पहले आइवरी कोस्ट

0: ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट के 6 अंक हो गए हैं। एक अन्य मैच में जापान और स्वीडन का मैच ड्रॉ रहा, दोनों ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही जापान और स्वीडन नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रहे। उधर नीदरलैंड ने ट्यूनिशिया को हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया और पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। अब बात निशानेबाजी की। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत प्रतियोगिता में कुल 25 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर है। बात महिला T20 विश्व कप की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। कल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और उधर T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। दूसरा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा।
1: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 10:21:26:27:28 और समय हो चला है फिल्म संगीत कार्यक्रम का चित्रपट से। तो आइए आपको लिए चलते हैं नए तरानों की ओर और कार्यक्रम का आगाज करते हैं अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाजों में फिल्म भेड़िया के एक शानदार और खूबसूरत गीत से। इस गीत में संगीत सचिन जिगर का है और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म का गीत सुन रहे थे आप अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में। आप आनंद ले रहे हैं इस समय चित्रपट संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन का एक गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए। अन्नू मलिक के संगीत से सजा हुआ रानी मलिक के लिखे बोलों के साथ विनोद राठौर की आवाज में फिल्म बाजीगर से।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में चमत्कार फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत अनु मलिक का। इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें लेकर हाजिर हूं मैं भाषा। स्वीकार कीजिए भाषा का नमस्कार। आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0522-223-8825। नंबर एक बार फिर से सुने 0522-223-8825। और देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो,
1: दिनेश कुमार बोल रहे हैं, ग्राम पिपराकुर से, जिला सीतापुर से।
0: दिनेश कुमार जी, आपका स्वागत है। दिनेश जी बताइए क्या करते हैं आप। हेलो,
1: बहुत फोन मिला है तो मिला कि ना है हल्ली।
0: बहुत फोन मिलाते हैं, मिलता नहीं है। अरे भाई, मिलता क्यों नहीं है, देखिए मिल तो गया।
1: फिर सही करन कोई बनाओ कि ना चखरते दुकान पर।
0: देखिए आपका फोन मिल गया है दिनेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
1: गाना दूध का कर्ज में का।
0: दूध का कर्ज फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप। जी हम जरूर सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग। आप अपना
0: जी
1: नाम तो
0: मेरा नाम
1: बताइए।
0: भंडोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रहे हैं।
1: तनुश्री, क्या करती हैं
0: जी
1: तनु आप?
0: और आपसे पहली बार बात कर रहे तो मुझे बहुत यहाँ खुशी हो रही है। जी
1: मुझे भी खुशी हो रही है भाई। क्या
0: और आप
1: कर
0: बहुत अच्छे हो मैम, आपकी बहुत आवाज अच्छी है, मुझे बहुत
1: ओह
0: पसंद
1: थैंक
0: आई।
1: यू। अच्छा बताइए तनु, आप क्या सुनना चाह रही हैं? मैं आपको तनु बुलाऊं?
0: जी मैम मुझे घर में तो सब तो नहीं बुलाते हैं।
1: ओह देखा, मुझे पता चल गया आपको घर में सब लोग तनु बुलाते हैं।
0: जी
1: बताइए
0: और
1: क्या।
0: आपने कहा तो आपके तो मतलब आपने कहा तो बहुत बहुत अच्छा लगा।
1: हाँ और बताइए क्या सुनना चाह रही हैं आप?
0: जी मैम थाने फिल्म का नाम है थानेदार और गाने के बोल है जीना भी तो हंस के जिए,
1: ओहो
0: जीवन में एक पल भी रोना ना। और दो तीन मित्रों को याद करना चाहते हैं।
1: देखिए तनु जी,
0: हेलो
1: आप ही की तरह बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं ना कि उनका भी कॉल लगे।
0: तीन दोस्त थे मेरे, पहले तो आप थे भगवान सिंह शर्मा है, हमो रमेश प्रजापति, इन सबके साथ थे मेरे।
1: चलिए चलिए, हम सुना रहे हैं आपकी पसंद का गीत तनु, ठीक है?
0: जी ओके
1: ओके धन्यवाद कॉल करने के
0: बाय
1: लिए, बाय।
0: बाय।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हेलो
1: ना
0: हेलो।
1: उदास बैठो, ना उदास बैठो, ना उदास होने दो, ना उदास बैठो, ना उदास होने दो, हंसाते रहो तुम सभी को, किसी को मत रोने दो। हाय मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। इतनी अच्छी शायरी सुनाने वाले का नाम क्या है?
1: जी मैम, पूनम बात कर रही हूँ कानपुर से। मैम कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ पूनम, आप कैसी हैं?
1: जी मैम, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और आकाशवाणी लखनऊ में कॉल लग जाता है तो और भी अच्छी हो जाती हूँ।
0: ओहो, आप लोगों की कॉल लगती है, आप लोगों से बात होती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम भी बहुत अच्छे रहते हैं।
1: जी मैम, और कहते हैं ना कि आप सबकी आवाज इतनी मधुर है कि जब हम सब सुनते हैं कानों में वो आवाज गूंजती रहती है, तो लगता है ना कि हमारा दिन अच्छा हो गया।
0: ओ, आप लोगों की कॉल
1: जी
0: लगती है तो हमारा भी दिन अच्छा हो जाता है। तो बताइए
1: जी
0: पूनम, क्या
1: मैम।
0: सुनना चाह रही हैं आप?
1: मैम गीत तो मैं सुनना चाह रही हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जानना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि हमारा कानपुर और आपका लखनऊ ज्यादा दूर तो नहीं है, बट मौसम जानना चाह रहे हैं
0: नहीं,
1: कैसा है
0: हमारे
1: आपके
0: यहाँ तो देखिए धूप खिली हुई है, तीखी धूप
1: यहाँ।
0: है और गर्मी है। अभी तो
1: अच्छा जी,
0: मौसम के मतलब भगवान भास्कर का प्रकोप चालू है
1: हाँ
0: कहने का
1: बिल्कुल, भगवान भास्कर
0: मतलब
1: जी ना, इतनी इतनी तपन इतनी तपन हो रही है कि मैम बस सच में बिल्कुल चैन ही नहीं
0: नहीं तो
1: आता है अब।
0: इस तपन में
1: जी
0: पूनम जी आप लोग कहीं बाहर हालांकि बाहर निकलना अवॉइड कीजिए, और अगर निकलते
1: बिल्कुल,
0: हैं तो अपने आप को कवर करके निकलिए, बहुत सारा पानी पी करके निकलिए, छाता
1: बिल्कुल,
0: लेकर के निकलिए।
1: हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम इस गर्मी से बचाव कर सकते हैं और बच
0: बिल्कुल
1: सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना मैम?
0: जी, बिल्कुल। तो
1: तो
0: पूनम क्या
1: चलिए
0: सुनना चाह रही हैं आप?
1: गाना बता देती हूँ। फिल्म का नाम है प्रतीक्षा और गीत के बोल हैं, गीत मेरे मेरे ये गीत हैं तेरे लिए।
0: चलिए, आपकी पसंद
1: जी
0: का गीत
1: मैम,
0: हम आपको
1: और ये
0: सुनवा रहे
1: गीत
0: हैं।
1: मैं सभी को डेडिकेट कर रही हूँ, जितने भी श्रोता लाइव सुन रहे हैं, कुछ तुम कहो कुछ हम कार्यक्रम को सभी को डेडिकेट है।
0: थैंक यू और धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए पूनम। चलिए
1: थैंक यू,
0: सुनाते
1: बाय
0: हैं
1: बाय।
0: आपको। बाय।

0: हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो। हाँ जी,
1: मैं अशोक कुमार बोल रहा था, जबलपुर एमपी से। जी
0: अशोक कुमार जी, जबलपुर एमपी से
1: जी जी
0: स्वागत है आपका इस कार्यक्रम।
1: जी धन्यवाद।
0: जी बताइए, क्या सुनना चाह रहे हैं आप? पहले ये बताइए, आपके जबलपुर में क्या फेमस है?
1: क्या बोल रहे मैडम? प्रसिद्ध
0: आपके जबलपुर में क्या प्रसिद्ध है?
1: है यहाँ पर, कई जगह है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट है, धुआंधार है, कई प्रसिद्ध स्थान हैं जो
0: जी जी
1: देश विदेश से लोग घूमने आते हैं और बहुत सुकून मिलता है।
0: जी जी बिल्कुल। क्या सुनना चाह रहे हैं आप अशोक जी?
1: सबसे पहले मैडम ये बोलो, पूछना चाह रहा था कि वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
0: देखिए, यहाँ पर तो धूप है, गर्मी है,

0: गर्मी है
1: जी,
0: यहाँ
1: जी.
0: भी बहुत गर्मी है मैडम, तो कहते हैं कि ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़क देता है,
1: जी जी
0: इस बार गर्मी दिया है छप्पड़ फाड़क।
1: चलिए भाई, ऊपर वाले ने दिया है
0: और
1: तो.
0: बस ऊपर वाले से बस यही विनती है कि पानी की प्रलय ना आए, किसी का नुकसान ना हो।
1: देखिए अशोक जी, इसमें कुछ हमारी हमारी आपकी सबकी गलतियां हैं. हम लोग
0: हाँ
1: पेड़
0: गलतियां
1: काटते
0: तो
1: जा रहे
0: है,
1: हैं.
0: अब क्या करें, सबको भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि दो बैल जो आपस में भिड़ते हैं तो आजू बाजू की चीजें तहस नहस हो जाती हैं, तो
1: नहीं
0: ये सब जो वार चल रहा है सब
1: जी जी जी
0: उसी के नतीजा है।
1: जी जी इसके सा
0: ये
1: सब
0: पूरे वातावरण को खराब करके रखा है, कहीं गर्मी ज्यादा है, कभी पानी गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है।
1: जी जी और देखिए, अपने आसपास पेड़ लगाइए, कोशिश करिए, आप अपने
0: जी,
1: घर में एक पेड़
0: पेड़ तो खैर
1: लगाइए.
0: लगाते रहते हैं लोग और हम भी लगाते हैं।
1: देखियो देखिए, पर्यावरण को संतुलित रखना हमारा काम है. इसमें सहयोग
0: जी,
1: कीजिए, लोगों को
0: वो तो बनी बात
1: जागरूक
0: है।
1: कीजिए, ताकि वो लोग भी जागरूक हों, पेड़ लगाएं. पेड़ बहुत ज़रूरी है. और देखिए, इतनी गर्मी, ऊपर वाला तो भाई, ऊपर वाले ने तो इस धरती को बहुत ही खूबसूरत बना करके भेजा.
0: जी,
1: उस धरती को कैसे रखना है, ये हमारा और आपका काम है.
0: सही बात है। हाँ
1: तो पेड़ ऊपर वाला तो काट नहीं रहा है, काट तो हम और आप रहे हैं.
0: वो तो क्या है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, उनको तकलीफ उनको नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों उनको तकलीफ नहीं
1: नहीं,
0: होती,
1: हो रही
0: जो
1: है
0: पेड़ काट
1: तकलीफ,
0: रहे हैं।
1: सभी को हो रही है. जाहिर सी बात है, ये हवा, ये पानी, ये धूप सबकी है, तो तकलीफ उनको भी हो रही है. लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी मानते नहीं हैं. तो अब भी समय है, मान जाएं, पेड़ लगाएं, पर्यावरण को संतुलित रखें. जी अशोक जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं आप? आपने कॉल लगाई है और
0: फिल्म
1: इतनी
0: का
1: दूर
0: नाम
1: से
0: है
1: लगाई
0: रोटी,
1: है. जी
0: फिल्म का नाम है रोटी,
1: जी
0: ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। जी
1: बढ़िया, अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा गीत है. ये जो पब्लिक है सब जानती है,
0: हाँ,
1: तो
0: सब
1: सुन
0: जानते हुए भी अनजान बन जाते।
1: जी. तो चलिए, हम आपकी पसंद का ये गीत जो रोटी
0: बहुत
1: फिल्म से
0: बहुत
1: है,
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद.

0: मैंने कहा बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, समझे कि नहीं?
1: हेलो, कुछ तुम कहो
2: हेलो,
1: कुछ हम
2: नमस्ते
1: कहें।
2: मैम।
1: नमस्ते, नाम बताइए।
2: मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से। मैम
1: सुनील कुमार जी सीतापुर से बोल रहे हैं।
2: जी मैम।
1: अच्छा सुनील जी, ये बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
2: मैम मौसम तो बहुत गर्मी पड़ रही है मैम, क्योंकि बरसात हो नहीं रही मैम, तो काफ़ी धूप तगड़ी निकल रही है इस समय।
1: अच्छा जी, और क्या करते हैं आप? हेलो सुनील जी, क्या
2: मैम
1: करते
2: थोड़ी आवाज आपकी स्लो आ रही है मैम।
1: क्या करते हैं आप सुनील जी? आपकी
2: मैं
1: आवाज
2: खेती
1: मुझे
2: बाड़ी का काम करता हूँ।
1: जिस जी
2: जी
1: अच्छा, तो क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
2: मैम मुझे गीत फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम।
1: गीत फिल्म का टाइटल सॉन्ग? जी बिल्कुल सुनवा रहे हैं आपको हम, आपकी
2: और
1: पसंद का
2: ये
1: गीत।
2: गाना मैम आपको और लखनऊ के हमारे जितने आरजे हैं सभी को और जितने दोस्त सुन रहे हैं लाइव सभी को सुनाऊंगा मैम।
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत मैं भी सुन रही हूँ और आपके सभी दोस्त सुन रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के
2: धन्यवाद
1: लिए
2: मैम।
1: सुनील जी, धन्यवाद।

0: हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हेलो
1: हेलो, नमस्ते। हाँ,
0: नमस्ते।
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ़ अहमद रैना।
0: लतीफ़ जी,
1: हाँ, लतीफ़
0: स्वागत
1: अहमद रैना।
0: स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: क्या गीत सुनना
1: आज
0: चाहते हैं? कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है तेजाब, उसमें कोई भी चलाए गाना।
0: कोई भी गीत। क्या करते हैं लतीफ़
1: हाँ,
0: जी आप?
1: और मेरे साथी हैं भगवान सिंह परमा और राकेश कुमार शुमला से। वो मेरे से नाराज़ है, उनको मैं फ़ोन करता हूँ मगर वो उनका नंबर खाली बिजी आ रहा है।
0: ओ भाई, आप शर्मा
1: राकेश
0: जी,
1: कुमार
0: आप क्यों
1: शुमला
0: नारा
1: से।
0: राकेश कुमार जी क्यों नाराज़ हैं आप लतीफ़ जी से? आप उनका कॉल
1: अब मैं
0: उठाइए,
1: इसकी
0: बात
1: वसादत
0: कीजिए
1: से राकेश कुमार को बोलता हूँ,
0: जी।
1: मेरा कॉल उठाइए।
0: हाँ बिल्कुल, मैंने कह दिया कि लतीफ़ जी का कॉल
1: हाँ
0: उठाइए। राकेश जी आप
1: हाँ
0: ठीक है,
1: राकेश
0: कौन सा
1: कुमार
0: गीत
1: को
0: सुनना चाह
1: बोलना।
0: रहे हैं आप?
1: अब जो भी मलाल होगा, जो भी नाराजी होगा,
0: हाँ
1: वो छोड़िए। अब मेरा
0: हाँ
1: फोन उठाइए। हाँ,
0: अरे क्यों नाराज़ होंगे आपसे? चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं तेजाब का? तो हम आपको तेजाब फिल्म का गीत, हाँ कोई गीत
1: कोई भी
0: सुनवा रहे
1: गाना
0: हैं।
1: तेजाब
0: ओके
1: फिल्म
0: ओके,
1: का।
0: धन्यवाद, आपने कॉल किया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं
1: जी
0: आप?
1: मैम, मंडला मध्य प्रदेश से बबीता बघेल मैम।
0: मध्य प्रदेश से बबीता बघेल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपने कॉल लगाया है, क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैम, आज हमको एक गीत सुनना है, तेरे संग जीना तेरे संग मरना।
0: तेरे संग जीना तेरे संग मरना, बड़ा ही प्यारा गीत है।
1: इनका नाम है नाच उठा संसार।
0: नाच उठा संसार। चलिए, हम गीत तो आपको सुनवाएंगे बबीता जी, लेकिन ये बताइए कि आप करती क्या हैं?
1: मैम हम तो हाउसवाइफ हैं।
0: हाउसवाइफ हैं, अच्छा जी।
1: जी
0: हाउसवाइफ मतलब घर में गृहिणी जो होती है।

0: उनके बहुत सारे काम होते हैं घर में,
1: मैम आपकी
0: और
1: आवाज ना बहुत कम आ रही है।
0: घर में जो गृहिणी होती हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं।
1: जी।
0: हाँ जी, तो रेडियो थोड़ा दूर रखिए आप, आपको मेरी
1: जी मैम।
0: आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देगी और आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है बबीता जी। चलिए बबीता जी, हम आपको
1: जी मैम, ये
0: आपकी
1: सॉन्ग
0: पसंद
1: मैम
0: का
1: आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे दादा आसाम से अनूप कुमार भट्टाचार्य जी, मांगीलाल चंदेल जी, पूनम, राकेश जी और संगीता बहन और जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको।
0: चलिए, आपके पसंद का गीत आपके सभी जानने वाले और मैं भी सुनूंगी। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हेलो,
1: जी मैडम नमस्ते। जी
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना। और
1: मेरा नाम है रमेश, यहाँ यूपी अयोध्या से बोल रहा हूँ।
0: रमेश जी अयोध्या से बोल रहे हैं। रमेश जी क्या सुनना
1: जी
0: चाह रहे हैं आप?
1: जी फिल्म का नाम है बलवान, उसका गीत है आशा भोसले की आवाज में।
0: जी जरूर, हम आपको बलवान फिल्म का गीत सुना रहे हैं, सुनवाएंगे। लीजिए सुनिए बलवान फिल्म का गीत अपने रेडियो सेट
1: जी
0: पे।
1: मैडम, ये गीत आपको और आपके पूरे सुनने वाले लोग सभी को।
0: चलिए धन्यवाद।

0: हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हेलो
1: आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास।
0: हेलो, मेरी आवाज़। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मैम, मैं जिला बहराइच से हबीब मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: जिला बहराइच से हबीब मंसूरी जी, बताइए मंसूरी जी, कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं आप?
1: मैम, गीत के बोल है प्यार हमारा, हमारे घर में याद करेगा रिश्ता मजबूत किया
0: चलिए,
1: आपने।
0: हम आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं हबीब जी। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद मैम।

कुछ तुम कहो कुछ हम कहे कार्यक्रम का आज का ये आखिरी गीत था। दीजिए अनुमति भाषा को ये कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।

कुछ तुम कहो कुछ हम कहे कार्यक्रम का आज का ये आखिरी गीत था। दीजिए अनुमति भाषा को ये कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा

0: करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Happy birthday to you, Stephen. Join us

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।

साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया

0: और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
7: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।

0: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
1: आग का गोला?
0: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
2: सूरज।
0: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
3: बहुत आसान पूछते हो।
0: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
3: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
2: हाँ।
0: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
3: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
4: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
5: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही एकदम सही।
4: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
3: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
3: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
4: और
0: अच्छे।
4: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
3: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
3: हाँ।
5: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
3: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
3: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
4: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
4: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
3: वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
4: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
3: दूर होता है इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
3: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
4: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
2: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी।
3: हाँ। पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
4: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला लेकिन,
2: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है,
2: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके,
2: धरती काटे चक्कर इसके,
0: लगे ये चलता जाता है,
2: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
2: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
2: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
2: दे प्रकाश।

0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
1: वो भी दस पूछेंगे,
0: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: मौसी
0: डर जाती है।
1: और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। लीजिए सुनिए सुरीले गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सुनने वाले सभी श्रोताओं को भाषा का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं 1974 में बनी फिल्म ईमान के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे अपनी मेलोडियस आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। शब्दों के मोती आनंद बख्शी के, सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में उमर कैद फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। शब्द रचना गुलशन बावरा की, सुरों में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत साथियों। लीजिए सुनिए इश्क पर जोर नहीं फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत सचिन देव बर्मन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। अनोखी अदा लीजिए, सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में, गीत रचना आनंद बख्शी की, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

सच्चा झूठा। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, शब्दों की मोती कमर जलालाबादी के हैं, तर्ज कल्याण जी आनंद जी की।

और लीजिए सुनिए आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

अभी आप सुन रहे थे आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आसपास फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार नख्मे समाप्त करने की दीजिए अनुमति भाषा को। नमस्कार। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। ग्राम खटभडिया, थाना इनायतनगर, जनपद अयोध्या निवासी ओम प्रकाश ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री नव्या, जिनकी उम्र 4 माह, रंग गेहुआ, कद 1 फुट, बाल काले, लापता होने वाले दिन उन्होंने सफ़ेद निकर, पीला और हरे कलर का झबला, गले व हाथ में काला गंडा पहने हुए हैं। वह 4 बाग रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 8-9 से लापता हो गई हैं। उनके मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। थाना जीआरपी जनपद, जीआरपी 4 बाग जनपद लखनऊ। जॉगर्स पार्क दुबग्गा लखनऊ से श्रीमती गुड़िया ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री शीतल, जिनकी उम्र है 12 वर्ष, कद 4 फिट, रंग गोरा, दिनांक 3 जून 2024 को लापता हो गई हैं। लापता होने वाले दिन इन्होंने लाल टी शर्ट, काला लोअर पहन रखा था। इनके मिलने के संबंध में यदि कोई भी जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर हमें सूचित करें। कोतवाली दुबग्गा, पुलिस कमिश्नरेट, जनपद लखनऊ। सत्यानंद मदेशिया के लापता होने के संबंध में संगीता देवी ने सूचित किया है कि उनके पुत्र दिनांक 17 मई 2026 से लापता हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। लापता होने वाले दिन इन्होंने काले टी शर्ट, नीला लोअर व काले रंग का स्लीपर पहन रखा था। उनके मिलने के संबंध में हमें इस पते पर सूचित करें। थाना विकास नगर, जनपद लखनऊ। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जन्मेजय शुक्ल की वार्ता, ग्रामीण आजीविका मिशन और जन भागीदारी। रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे की वार्ता, भक्ति काल के कवियों का दर्शन। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने के हैं, कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें नश्र की जाएगी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया के बरहज और रुद्रपुर असेंबली हलकों में 456 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की और अवामी बहबूद की ये मुहिम हर ख़ानदान की ज़िंदगी में नई उम्मीदों, नए मौके और नई खुशहाली की बुनियाद बनेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ज़रई रोड मैप, ज़राअत के शोबे में मरकज़ी और रियासती मुख्तलिफ़ स्कीमों के निफाज और देही तरक्की के प्रोग्रामों का मुश्तरका जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने मरबूत काश्तकारी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि किसानों को मेयारी पौधे फराहम करने के लिए लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर कायम किया जाएगा।
2: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2-3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज पर अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना, हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
1: मरकजी वजीर ने कहा कि एक खुशहाल उत्तर प्रदेश तरक्याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर उन्होंने चने, दाल और सरसों की सरकारी खरीदारी की मुद्दत में तोसी की भी मंजूरी दी। वजीर आला ने इसके लिए मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे रियासत के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपनी पैदावार कम अज़ कम इमदादी कीमत पर फरोख्त करने का मौका मिलेगा और उनके मफादात के बेहतर तहफ़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। मीटिंग के दौरान अलनीनों के असरात से निमटने के हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 149 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत के हर ज़िले की तरक्की हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने असलाफ की विरासत को महफूज रखा है।
3: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
1: स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की बुनियाद पर अयोध्या में राम मंदिर के चंदा फंड में मुबैना गबन के मामले में 18 नामजद और दीगर नामालूम मुलजमीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये कार्रवाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के रुकन कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। मुलजमीन के खिलाफ गबन, धोखाधही और मुजरमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदा फंड के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम सामने आने के बाद रियासती हुकूमत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की दरख्वास्त पर 13 जून को SIT तश्कील दी थी। SIT मामले की तफसीली जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल नए मुकर्रर करदा रियासती ओहदेदारों की फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त में 8 जनरल सेक्रेटरीज, 19 नायब सदूर और 19 वज़रा शामिल हैं। मजीद बरां मगरबी, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के इलाकाई सदूर के साथ साथ मुख्तलिफ महाजों के सदूर का भी ऐलान किया गया है। BJP के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने तमाम तबकात और इलाकों को जहन में रखते हुए ओहदेदारों का तकर्रुर किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम 9 तैनात ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। आज 10 मुहर्रमुल हराम है, इस दिन को आशूरा भी कहा जाता है। इसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को अपने साथियों समेत मैदान करबला में शहीद किया गया था। आज रियासत भर में लोग मुख्तलिफ करबला में ताज़िये लेकर उनकी तदफीन कर रहे हैं।

0: लखनऊ में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दीगर मजाहब के लोग भी ताजियादारी करते हैं। ताजियों को आज लखनऊ के मुख्तलिफ करबला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तालकटोरा करबला, महानगर करबला, ऐशबाग, तेलीबाग और आलमबाग के मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। ट्रैफिक की यह पाबंदी ताजिए के जुलूस के अख्तिताम तक नाफिज रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब बहने अपना कार्यक्रम सुने अपराजिता।

0: सखियों, आज है शुक्रवार और हर शुक्रवार और मंगलवार हम लेकर आते हैं आपके लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम अपराजिता, जिसे आज लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी सखी आंचल
1: और मैं सीमा अग्रवाल।
0: स्वीकार कीजिए हमारा स्नेह एवं सम्मान भरा
1: नमस्कार।
0: दीदी, आज जब मैं रास्ते से आ रही थी ना, तो मेरा मन ना बहुत उदास हो गया।
1: हाँ आंचल, मुझे भी लग रहा है काफी अपसेट हो। पर ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम्हारा मन इतना उदास है? सब ठीक तो है ना?
0: हाँ, मैं तो ठीक हूँ दीदी, लेकिन मैंने देखा कि आज बहुत ही कम उम्र के लड़के, बच्चे ही बोलेंगे हम उन्हें, तो आज मैंने कुछ बच्चों को सड़क किनारे नशे में धुत बैठे देखा। देखिए ना दीदी, जिनकी उम्र हंसने खेलने की, पढ़ने लिखने की और सपने देखने की है, उनकी ऐसी दशा देख मेरा दिल दुखी हो गया है बहुत ज्यादा। समझ नहीं आता दीदी कि जिनकी जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, वो खुद अंधेरे में क्यों खुद को लेकर जा रहे हैं।
1: हाँ, बात तो सही कह रही हो आंचल, और तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी दुख हो रहा है। जानती हो, असल में इसकी शुरुआत तो अनजाने में ही हो जाती है। ये बच्चे कभी दोस्तों के कहने पर, तो कभी सिर्फ ये देखने के लिए कि चलो एक बार करके देखते हैं नशा। लेकिन वो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि जिस झूठे मज़े को वो तलाश कर रहे हैं, उसकी वजह से वो अपनी असली खुशियों को खो दे रहे हैं। नशा इंसान को और उनकी ज़िंदगी को हर अच्छाई से दूर कर देता है।
0: और इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है उनके माता पिता को। देखिए ना दीदी, माता पिता अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी और उस जिंदगी की पूरी, मतलब जवां पूंजी जो उनकी होती है ना, पूरी खर्च कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे।
1: सही बात है।
0: सोचिए, उनके बच्चों अगर इस तरह से खराब संगत में पड़ जाएं, ऐसी चीजें करें, तो पूरा हंसता खिलता परिवार नहीं उजाड़ जाता, सोचिए।
1: बिल्कुल।
0: और फिर वहां पे खुशियों का होना तो असंभव है दीदी।
1: हाँ, और जानती हो आंचल, नशा सिर्फ इंसान के शरीर को ही खराब नहीं करता, बल्कि उन बच्चों के माता पिता की उम्मीदों को, उनके आत्मसम्मान को भी मार देता है। और इसकी वजह से परिवार का चैन और खुशियाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि अगर अपने आसपास की खुशियों को वापस लाना है, तो बच्चों को नशे को खुद से दूर रखना होगा। चाहे जितना भी कोई प्रलोभन दे, कोई भी परेशानी हो, उन्हें नशे का सहारा लेने के बजाय अपने परिवार से, अपने माता पिता से बात करनी चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल, क्योंकि भाई परेशानी कितनी भी हो, नशे का सहारा लेने तो गलत है ना दीदी।
1: बिल्कुल।
0: और हम, मतलब जो बच्चे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम नशा ना करें और हम खुद पर संयम रखें, है ना?
1: सही बात।
0: क्योंकि जाहिर सी बात, हम नशा करेंगे तो खुशियों का आसपास होना, वही बात है कि भाई अगर खुशियां घर में चाहिए भरपूर, तो नशे से हमें दूर रहना होगा।
1: बिल्कुल। और कहते ना कि जिंदगी इतनी कीमती है, इसको संभाल के रखना चाहिए। और जब हमारे युवा इस बात को समझ जाएंगे कि असली खुशी सेहतमंद रहने और अपनों का साथ निभाने में है, तो वो कभी भी इस गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे।
0: और फिर नशे से दूर रहने के लिए हमारे अंदर संयम होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और जो हमारा दिल है ना दीदी, इस दिल में अच्छी बातें होनी चाहिए, सुविचार होने चाहिए।
1: सही बात है,
0: है ना? और दिल का शांत रहना भी जरूरी है।
1: हाँ,
0: तो भाई मन की इसी शांति के लिए क्यों ना आपके साथ और अपनी सखियों के साथ मिलकर ये प्रार्थना सुन जाए, क्या कहती है?
1: हाँ, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये प्रार्थना ना बहुत तसल्ली देती है, सुकून देती है, तो सुनते हैं आंचल।
0: बिल्कुल।

0: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास राजपूत, चेस्ट फिजिशियन हूं। मैं इटावा जिले में प्रैक्टिस करता हूं। बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सरदर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस ना ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही हैं, तो इन्हें नजरअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और समय पर ही सही इलाज कराएं। धन्यवाद।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
5: लीजर रिसोर्ट बहराइच,
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
5: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
4: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
5: UPSRTC देवरिया,
4: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
5: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
4: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
5: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
5: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
4: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
6: हो गया इंतजाम।

0: किसका? गुड्डी की फीस का।
1: दिखा।
0: 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सखियों, पुनः स्वागत कार्यक्रम अपराजिता में। दीदी, वैसे जो ये बैम्बू से बनी चीजें होती हैं, जो बेंत के फर्नीचर्स होते हैं, झूला उला होता है, कैसा लगता है आपको ये?
7: बहुत अच्छा लगता है, इतना ज्यादा कि मेरे ड्राइंग रूम और लॉबी एरिया में इससे बनी काफी चीजें हैं। पर तुमने ये सवाल अचानक से क्यों पूछा?
6: एक्चुअली मुझे ना इसमें ना बहुत इंटरेस्ट है, मतलब मुझे ना पहली बात तो ये चीज़ें अच्छी बहुत लगती हैं। अच्छा। फिर मुझे ना इसमें अपना छोटा मोटा कारोबार करना है, तो उसको बनाते कैसे हैं, शुरुआत कहाँ से करूँ, इसका आइडिया नहीं है मेरे पास।
7: तो इसमें फिक्र करने की तो कोई बात ही नहीं है। चलो एक काम करती हूँ, तुम्हें और अपनी श्रोताओं को इसी विषय से जुड़ी भेंटवार्ता सुनवा दूँ।
6: सच में? मजाक तो नहीं?
7: अरे भाई, मैं मजाक क्यों करूँगी। टॉपिक बताऊँ?
6: हाँ बिल्कुल।
7: टॉपिक है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी। और हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अंशुल चंद्रा जी, और उनसे बात कर रही हैं ममता उपाध्याय जी।
6: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दीदी, चलिए सुनते हैं सखियों के साथ मिलकर।
7: बिल्कुल।
8: सखियों, आज हमारे साथ जो स्टूडियो में हमारी सखी हैं, वो व्यापार की दुनिया यानी उद्योग स्वरोजगार की दुनिया से संबंधित है। उनको देखकर किसी की लिखी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि मेहनत की दुकान जब दिल से सजती है तभी किस्मत भी आकर साझेदारी करती है। तो भाई, बहुत मेहनत से इन्होंने अपनी दुकान अपनी सजाई है और भाग्य भी इनका साथ दे रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना और हमारी सखियां क्या सीख सकती है हमारी इन सखी से, तो हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर अंशुल चंद्रा जी, जो बांस से बने हस्तशिल्प उत्पाद से संबंधित हैं और इसका व्यापार भी करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अंशुल जी आपका हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद ममता जी।
8: डॉक्टर अंशुल चंद्रा जी, आज हमारी जो बातचीत का विषय है वो है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी। अक्सर जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी सखियां हैं ना, वो शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी नौकरी या अपने घर से काम तो करती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, MSME हैं, उस क्षेत्र में आगे आने हिचकती हैं। हालांकि आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 20% जो है वो संख्या है इस हिस्सेदारी में MSME में, और जो महिलाओं द्वारा संचालित उद्योग हैं 2.2 से 2.7 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देते हैं, ये आंकड़े हमें कहते हैं। लेकिन फिर भी संख्या बहुत कम है, हम आधी जनसंख्या की बात करते हैं महिलाओं की। तो ये बताइए कि जो MSME है या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, इस क्षेत्र में महिलाएं क्यों नहीं आना चाहती हैं और आप कैसे आ गईं?
9: देखिए, कोई भी काम करने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है स्टार्ट करने में, और जैसे कि हमारे लिए आप पूछ रही हैं तो हमें भी बहुत समय लगा और बहुत संघर्ष करना पड़ा इसको करने का, और लगातार ये चल ही रहा है संघर्ष।
8: जी,
9: किसी भी व्यापार को या कोई भी काम कोई महिला अपना शुरू करना चाह रही है तो सबसे पहले इसमें अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
8: जो आपका उद्योग है वो में आता है सूक्ष्म
9: में ही आता है हमारा,
8: सूक्ष्म में
9: तीन श्रेणियां हैं इसमें, सूक्ष्म वाले में हमारा आता है।
8: जी जी।
9: तो इसके लिए किसी को भी स्टार्ट करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और अब तो सरकार ने काफी मतलब इसमें पहल करी है, सरल बना दिया इस पोर्टल को, ये ऑनलाइन ही शुरू कर दिया, डिजिटलाइजेशन।
8: जब आपने किया था तब?
9: हाँ, तब भी हो गया था, अब और अच्छे से हो गया, मतलब इसमें सरल तरीके से होने लगा है।
8: जी, तो रजिस्ट्रेशन से क्या लाभ मिलता है?
9: रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही हम उस श्रेणी में आ पाएंगे, अपने व्यापार को, अपना जो भी हम घर बैठे शुरू करना चाह रहे, जब तक इस श्रेणी में नहीं करेंगे तो हमें जो सब्सिडी है या कोई लोन जो हमें प्रदान करती है सरकार, वो उसमें नहीं ले पाएंगे।
8: जी, तो इसलिए यदि हम अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो, लघु या मध्यम हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, जो महिलाएं हैं जब उद्योग के लिए आगे आती हैं, अपना रोजगार करना चाहती हैं, तो बहुत ही समस्याएं महिलाओं के सामने आती हैं, और जो पहली समस्या है वो है ऋण मिलने की बात है, उनके पास पैसों की कमी होती है। तो आपके पास क्या स्थिति थी और इसे दूर करने के लिए क्या कोई योजना सरकार की चलती है जिसका लाभ आपने उठाया?
9: हाँ, जैसे कि आपने नाम लिया MSME, तो इसमें ही PMEGP प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम।
8: जी,
9: इसमें

0: जो है, जैसे हमने बताया अभी आपको, सबसे पहले तो एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके थ्रू क्या होता है, हम सारी जितनी भी लोन की इसमें सुविधाएं हैं उसमें हम अपने आप को ला पाते हैं। जैसे महिलाओं के लिए 25-35% रखा गया है, और जैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उनके लिए 35% तक है, उसी श्रेणी के अकॉर्डिंग होता है आप किस क्षेत्र में है और किस श्रेणी में आते हैं, उसके हिसाब से इसमें आपको लोन और सब्सिडी मिलती है।
1: जी जी, तो जैसे महिलाओं के पास अपनी संपत्ति कई बार खुद की नहीं होती है या फिर बैंक से लोन मिलने में दिक्कत आती है, तो इस योजना के माध्यम से जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, इसके माध्यम से ऋण मिलना आसान हो जाता है।
0: सब्सिडी भी आसानी है।
1: अच्छा, सब्सिडी की बात की तो वो किस तरह से मिलती है?
0: बैंक के थ्रू ही मिलती है सब्सिडी, और इस PMEGP जो प्रोग्राम का नाम लिया है हमने, इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिला है तो 35% तक सब्सिडी मिल जाती है,
1: और शहरी क्षेत्र की?
0: शहरी की 25% तक।
1: अच्छा, तो आपको जो मिला होगा वो 25% मिला होगा। अच्छा, तो जब ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने के बाद हम बैंक में लोन अप्लाई करते हैं, तो क्या हमें पूरा अपना जो हम काम शुरू करने जा रहे हैं उसका विवरण देना पड़ता है?
0: हाँ, कुछ पेपर्स होते हैं जिनको वो जमा करते हैं और चेक करते हैं जब सत्यापन हो जाता है, कुछ उद्यम रजिस्ट्रेशन हुआ और कुछ आपकी जो संस्था है उसके पेपर्स चेक होते हैं, ट्रस्ट डीड वगैरह बनती है वो, और फिर ये बैंक अधिकारियों को जमा होता है, वो सत्यापन करते हैं, उसके बाद ऋण मिल जाता है। एक सरल प्रक्रिया है।
1: जी जी जी,
0: और इससे बहुत महिलाओं को मतलब आसान हुआ है अपना काम शुरू करने में। जैसे अगरबत्ती उद्योग है, हस्तशिल्प जूट का है या चिकन का है, इसमें कई महिलाओं को मिला है।
1: जी जी, अच्छा आपने लाभ तो बताया पर चुनौतियां भी सामने आती होंगी, तो चुनौतियां किस तरह की आती हैं सामने?
0: चुनौती जो महिलाओं को है, जैसे पूंजी की कमी होती है या उनको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसकी लागत कहाँ से ली जाए, यही सब चुनौतियां हैं। जैसे उनको उतना समय नहीं मिलता, घर रह के काम कर रही हैं, अब इस प्रोग्राम के थ्रू जो है ये चुनौतियां कम हो जाती हैं। ऋण मिल गया तो धीरे धीरे कोई काम शुरू किया और घर बैठे व्यापार शुरू कर रही हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है उनको। और अब MSME में तो मतलब ऐसे कई चीजें शुरू करी हैं, जैसे एग्जीबिशन के लिए प्लेटफॉर्म
1: मिलता है,
0: तो अपने खुद उत्पाद ले जाकर खुद बेचते हैं सीधे।
1: जी जी, तो आप बांस से निर्मित हस्तशिल्प का कार्य कर रही हैं, बहुत सारे आप उत्पाद बांस से बना रही हैं, तो आपके सामने क्या चुनौतियां आई और किस तरह से आज आपका जो उद्योग है वो आगे बढ़ रहा है, ये हमारी सखियों को बताइए।
0: चुनौतियां सबसे पहले यही थी कि हमारे पास भी पूंजी की कमी थी, हमें MSME के थ्रू इसका लाभ मिला, और उसके बाद दूसरी ये मार्केटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो इसमें भी हम कहेंगे जैसे एग्जीबिशंस लगती रहती हैं खादी की, माटी कला बटलर कॉलोनी में खादी का ऑफिस है, वहीं माटी क्लब लगती है
1: जी
0: एग्जीबिशन, तो वहाँ पे 10-12 दिन का प्रोग्राम होता है, तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट्स खुद ले जाकर खुद ही इंस्टॉल लगाते हैं। अब जैसे इन्होंने सरकार की वजह से ये भी हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, वो भी दिक्कत होती थी कि कहाँ ले जाएं, प्रोडक्ट तो बना लिया हमने उत्पाद, अब उसको बेचें कहाँ, तो इसमें भी हमें बहुत हेल्प मिली।
1: जी जी, जब हम अपना खुद का रोजगार चलाते हैं चाहे वो सूक्ष्म हो, लघु हो, मध्यम हो, तो हम बहुत सारे और लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हैं, तो आपके साथ भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं?
0: हाँ, मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं, हमने भी जैसे 2-4 से शुरू किया, अब इस समय हमारे पास 12-13 लोग हैं जो जुड़े हैं, साथ में काम कर रहे हैं, उत्पाद बनाते हैं और उनकी मार्केटिंग ऑनलाइन भी हमने अब उन सब चीजों को जोड़ा है, और जैसे ये एग्जीबिशन टाइम टू टाइम होती रहती है, 2-3 महीने पे होती, उसके थ्रू भी हमें काफी हेल्प मिली है।
1: जो आप उत्पाद बनाती हैं बांस से, वो कौन कौन से हैं और कैसे आइडियाज आते हैं आपको कि इस क्षेत्र में कुछ नया किया जाए?
0: बांस से जैसे इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, तो हम लोग अब वैक्यूम प्रेशर ट्रीटमेंट देते हैं बांस को, जिससे उसमें दीमक और फफूंदी वगैरह ना लगे, तो उसके बाद हम उससे ट्रे बनाते हैं, पेन स्टैंड है, फ्लावर पॉट है, और अब तो जैसे प्लेट्स वगैरह बना रहे हैं, मैट्स बना रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है सब क्रिएटिविटी, और डेकोरेटिव आइटम्स भी बहुत हैं,
1: फर्नीचर भी बनाते हैं।
0: हाँ, फर्नीचर भी बनाते हैं, चेयर्स वगैरह, अब हम लोग जैसे हाउसिंग जैसे बताएं गजीबो वगैरह सिटिंग का होता है बैम्बू का, वो भी बना रहे हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो आप नए प्रयोग कर रही हैं। अच्छा, जब प्रयोग की बात होती है उससे पहले क्या होता है कि कुछ मन की शंकाएं होती हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं, जो आपने कहा कि जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसके माध्यम से काफी हद तक महिलाओं को इस समस्या से निजात मिल रहा है, लेकिन ये बताइए कि जो घर की समस्या होती है ना, कई बार महिलाओं को कहा जाता है कि आप कहाँ जाएंगी ये काम करने के लिए, घर पे से कुछ करिए, या फिर जो हमारे पारंपरिक जो महिलाएं करती हैं शिक्षा के क्षेत्र में है या बैंक या नौकरी करिए, तो क्या कभी ऐसा सामना आपको करना पड़ा?
0: हाँ, कहिए तो रहा ही है, शुरू में हमारे घर में भी ये हुआ, मतलब मना तो नहीं किया गया, पर यह था कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई थी, बच्चा भी छोटा था, फिर घर भी देखना था, पर सबने सपोर्ट किया, सास ससुर और घर के लोगों ने, सभी ने, तो धीरे धीरे बच्चे बड़ा हो गए, अब चीजें ठीक हो रही
1: जी, तो पारिवारिक समस्या

0: महिलाओं सामने आती हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप बराबर समय देंगी घर को भी और अपने करियर को भी, जो आप करना चाहती है अपने सपने को भी। प्रबंधन तकनीकी कौशल की भी समस्या आती है कि महिलाओं के पास अक्सर तकनीकी की जो जानकारी है वो कम होती है, तो क्या इसके क्षेत्र में भी कोई सरकार सहायता प्रदान करती है?
1: हाँ, इसमें भी जैसे हमने अभी नाम लिया था PMEGP प्रोग्राम जो है, उसमें महिलाओं के कौशल विकास के लिए भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिस क्षेत्र में जैसे हस्तशिल्प है, चिकन है, जूट है या बैम्बू है, जैसे कांसे हैं, इन सब चीज़ों का जो भी बना रही हैं, अलग अलग उनको उस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है और ट्रेनर्स आते हैं, परफेक्ट ट्रेनर्स होते हैं, उन्हें 10 दिन 12 दिन इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका कौशल विकास होता है और फिर वो खुद अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केटिंग करते हैं।
0: तो आपने भी क्या इस तरह की तकनीकी प्रशिक्षण लिया था?
1: हाँ, लिया था हमने।
0: जी जी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप आगे आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रशिक्षित होना
1: और वो भी समय के साथ अपने आप को अपडेट करना भी जरूरी होता है। हाँ। ऐसे कि एक बार ले लिया तो वो पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ। समय समय अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, जैसे मशीन और सॉफ्टवेयर, तो उसी तरह से खुद को।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको यदि आगे बढ़ना है और कुछ नया लाना है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो खुद को अपडेट रखना ही पड़ेगा और अपने सामान को भी आपको नए नए रंग ढंग में ढालने
1: पड़ेंगे। तो बहुत प्रतिस्पर्धा है इस क्षेत्र में
0: जी,
1: तो कुछ नया नहीं करेंगे तो फिर मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो इसको
0: करना पड़ता है। जी जी, अच्छा, जो चुनौतियों की बात की हमने और ये बात की कि समस्याएं भी बहुत सी आती हैं, लेकिन उससे निकलने के लिए भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और स्वयं महिला भी अपने को अपडेट करके आगे बढ़ सकती है, तो MSME के क्षेत्र में हमारी महिलाएं आए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े, क्या कहना चाहती हैं आप सखियों से?
1: जैसे हम ये जरूर कहेंगे कि महिलाएं उनके अंदर जो कला है अपनी, उसको जरूर आगे बढ़ाएं, उसे छोड़े नहीं, चाहे कितना भी घर में काम का प्रेशर हो, उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना समय दे सकें उस समय के अनुसार उसको बढ़ाएं और इस तरह के MSME के थ्रू अपना स्किल अपग्रेडेशन करें और मार्केटिंग करें आगे और लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करें,
0: क्योंकि आप आगे बढ़ेंगी
1: तभी तो और लोग देखेंगे तो फिर वो भी आगे बढ़ेंगे।
0: जी, जी, क्योंकि नौकरी हम सिर्फ स्वयं अकेले करते हैं, पर जब हम कोई रोजगार करते हैं तो अपने साथ साथ हम औरों को भी जोड़ते हैं और स्वयं का तो विकास होता ही है, साथ ही साथ जो हमारी और सखियां हैं जिन्हें शायद हमसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो भी हमसे जुड़ती हैं और एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ पे मिलकर हम खुद भी बढ़ते हैं और परिवार, समाज, देश के विकास में हमारी जो सखियां हैं वो अपना योगदान देती हैं। डॉक्टर अंशुल चंद्रा जी, आप बांस उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आप में से चुना क्योंकि इस क्षेत्र में आपने काफी पढ़ाई की थी, है ना? तो हमारी सखियों को इसके बारे में बताइए।
1: मैंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से बांस के रोकथाम में जो उसके कीड़े वगैरह लगते हैं उसी के उपचार के लिए मैंने PhD करी, उसी में रिसर्च करी है, तो बस अपने इसी फील्ड को मैं आगे ले जाना चाहती थी और ये भी मेरे अंदर एक वो था कि नहीं, इसी में आगे बढ़ना है। मुझे भी चुनौतियां बहुत आई, चुनौतियां के बावजूद मैंने धीरे धीरे अपने आप को उसी में साधा और आगे बढ़े और अपने साथ कई लोगों को भी जोड़ा है साथ
0: जी,
1: में।
0: जी, तो हमने ये बात आखिरी में इसलिए बताई सखियों क्योंकि जो काम कर रही हैं डॉक्टर अंशुल चंद्रा जी वो बांस से संबंधित है और बांस के क्षेत्र में पढ़ाई की, पर यदि आपने कोई ऐसा विषय चुना अपने व्यवसाय के इसके बारे में आपने पहले से पढ़ाई ना भी की हो तो भी बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है जिसमें जाकर आप अपने को तकनीकी रूप से सक्षम बना सकती हैं, सीख सकती हैं और जो विभिन्न क्षेत्र हैं व्यवसाय के उसमें आप आगे बढ़ सकती हैं और भी अपनी सखियों का वो सहयोग कर सकती हैं। तो MSME के क्षेत्र में हमारी सखियां आगे बढ़ें, निरंतर वो प्रगति करें, देश की प्रगति में योगदान दें। और डॉक्टर अंशुल चंद्रा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमसे जो जानकारी साझा की, अपने बारे में बताया, अपने व्यवसाय के बारे में, उद्योग के बारे में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
2: भाई वाह, कितनी अच्छी भेंट वार्ता दीदी आपने सुनाई और बहुत सारी जानकारियां भी हमें मिली, है ना दीदी?
0: हाँ।
2: और अब मैं भी खुद को अपडेट करूंगी, टेक्निकल नॉलेज लूंगी जरूर। हाँ। और दीदी कितना अच्छा शेयर ममता उपाध्याय जी ने भी पढ़ा है ना?
3: हाँ, मेहनत की दुकान जब दिल से सजती है तो किस्मत भी हमारे साथ साझेदारी करती है।
2: वाह, सच में मैं भी अब सीखूंगी और हमारी सखियों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। वैसे दीदी बहुत अच्छी भेंट वार्ता आपने सुनवाई।
3: हाँ।
2: बहुत बहुत थैंक यू। और इसका टॉपिक क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे?
3: टॉपिक ये था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी और गेस्ट थी अंशुल चंद्रा जी।
2: हाँ।
3: और भेंट कर रही थी
2: हमारी ममता उपाध्याय जी। वैसे हमें बहुत सारी बातें अपनी सखियों से करनी है आगे। हाँ।

0: लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास राजपूत, चेस्ट फिजिशियन हूं, मैं इटावा जिले में प्रैक्टिस करता हूं। बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सरदर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस ना ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही हैं, तो इन्हें नजरअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और समय पर ही सही इलाज कराएं। धन्यवाद।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
4: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
5: लीजर रिसॉर्ट बहराइच,
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
5: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
4: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
5: UPSRTC देवरिया,
4: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
5: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
4: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
5: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
5: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
4: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
0: सखियों, पुनः स्वागत कार्यक्रम अपराजिता में। वैसे दीदी, मैंने एक चीज नोटिस करी है।
1: क्या?
0: कि हम चाहे बिजी हो, फ्री हो, कैसे भी हो, हम सबके हाथ में फोन जरूर होता है, नहीं?
1: और मजेदार बात पता है क्या है? कि चाहे हम मोबाइल किसी जरूरी काम के लिए उठाएं, लेकिन रील्स देखते उसके लूप में ऐसे फंस जाते हैं, और कई बार मुझे तो पता ही नहीं लगता कि कितना समय निकाल देती हूँ मैं।
0: अच्छा। हाँ भाई, सबके यहाँ ऐसा होता है। मेरे यहाँ भी यही कहानी है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो।
1: हाँ।
0: है ना, एक बार जो फोन की स्क्रीन देखना शुरू किया तो फिर दुनियादारी सब एकदम खत्म। एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, फिर भी लगता है सब अपनी अपनी दुनिया में गुम हो गए हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा। पता है, पहले लोग शाम को बाहर निकलते थे, टहलते थे, बातें करते थे। अब क्या करते हैं लोग? अगर गलती से निकल भी जाए घर से बाहर तो हाथ में मोबाइल और मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते नजर आते हैं, उंगलियां भी टेढ़ी होने लगी हैं, और स्ट्रेस में तो लोग दिखते ही दिखते हैं। क्यों, है कि नहीं?
0: बिल्कुल। वैसे सोल्यूशन है इसका।
1: क्या?
0: इसका सोल्यूशन है योग और ध्यान। अब मैंने सोल्यूशन बता तो दिया, पर एक बात देखिए, मैंने बता दिया पर करता कोई नहीं है। मुझसे भी तो नहीं होता है, मैं दूसरों को क्या बोलूं?
1: पता है इसमें मुझे क्या लगता है कि सारा खेल मन का है। और हम सब जानते हैं आजकल हम लोग मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, है कि नहीं?
0: बात सही।
1: और मोबाइल छोड़ना मुश्किल लगता है, थोड़ी देर रख भी दे फिर हाथ चला जाता है। और ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि योग और ध्यान मन को शांत करना सिखाता है, मन को कंट्रोलिंग सिखाता है, पर जो तुमने कहा ना, करना कोई चाहता ही नहीं।
0: लेकिन वैसे लोग करते हैं और योग के फायदे बहुत है, इसका मैंने एग्जांपल देखा है, इसलिए मैं आज योग की बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है।
1: हाँ?
0: ठीक है, वो सुबह उठती है, योग करती है, ध्यान करती है, रात में सही समय पे सोती है।
1: हाँ?
0: और उसके बाद उसमें जो चेंजेस आए हैं ना दीदी, मैंने खुद वो बदलाव नोटिस किया है। मैं देखती थी कि नोटिफिकेशन आते ही फोन उठाना और उसको फोन चलाना शुरू कर देना, ये उसका काम था।
1: हाँ।
0: और अब उसने फोन से एकदम दूरी बना ली है, अब वो खुद पर फोकस करती है ना, मतलब अपने हेल्थ पर फोकस करती है, तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है।
1: हाँ, बाकी में ये काफी पॉजिटिव चेंज हुआ है आजकल, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स किया है, है ना, मतलब मोबाइल से खुद को अलग किया है योग के द्वारा। और जानती हो, मेरी भतीजी के स्कूल में बच्चों को हफ्ते में 3 बार योग कराया जाता है।
0: अच्छा।
1: और वहाँ पे बच्चों के लिए योग करना कंपलसरी कर दिया गया है। और साथ ही उसकी टीचर पता है क्या कहती हैं कि योग के बाद बच्चे क्लास में फोकस ज्यादा करते हैं, चिड़चिड़े नहीं होते, और मतलब उनका एक स्टडी लेवल बढ़ गया है।
0: अच्छा
1: है, तो ये तो अच्छी बात लगती है मुझे।
0: बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है। और पता है मेरे, मैं अपना समय बताऊं, जब मैं स्कूल में थी तो हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, योग तो नहीं बट हाँ फिजिकल ट्रेनिंग हम जरूर करते थे डेली, प्रेयर के बाद हम कराते थे टीचर्स तो। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना दीदी, वो फिजिकल ट्रेनिंग से भी कतराने लगे हैं। क्या होता है, हाथ में फोन दे दिया, फोन में गेम्स खेल रहे हैं ना,
1: मोबाइल
0: खेल रहे हैं, है ना।
1: सही बात है,
0: छोटे बच्चों को तो खाना भी बिना फोन के नहीं जाता, कार्टून वगैरह बिना देखे वो एक और मुंह में नहीं डालते, ये हाल हो गया है।
1: पर पता है आजकल ये बात सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, मुझे तो लगता है हम बड़े भी आजकल यही तो कर रहे हैं। एक फैमिली के होकर भी और साथ में मोबाइल यूज करते हैं।

0: बातें नहीं करते, जबकि पहले क्या होता था, अंताक्षरी खेलते थे, लूडो खेलते थे, आपस में बातें करते थे, पर अब एकदम सारा कुछ बंद, सिर्फ मोबाइल है ना।
1: तो इसका एक रीजन भी तो है। अब देखिए लोग, मान लीजिए एक फैमिली है, इसमें चार लोग हैं। अब कई कभी कभी ऐसा होता है चार लोग है उसमें भी आठ फोन है, किसी के पास दो दो फोन है, एक डिस्चार्ज हुआ दूसरा चालू कर लिया हमने, है ना। तो ये भी होता है दीदी।
0: जबकि पता है आजकल हम लोग ये भी जानते हैं कि योग और ध्यान ये सिखाता है कि हर चीज को कंट्रोल की हालत में यूज किया जाए, मतलब संतुलित इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत अच्छा है। पर हम करते कहाँ है,
1: हम करते नहीं है। हम बस वही है ना कि फोन। वैसे दीदी एक चीज और है, इस पहलू, एक और पहलू भी है इसका, पता है। आजकल लोग चेंजेस ला रहे हैं, मैंने परिवर्तन होते देखा है।
0: अच्छा,
1: वो ऐसे देखा है कि मैंने कई जगह योग सेंटर और वेलनेस सेंटर वगैरह भी खुलते देखा है।
0: हाँ।
1: है ना, लोग जाते हैं वहाँ क्योंकि उनको पता चल रहा है कि भाई अब हमें अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम डिजिटली अगर ऐसे टॉक्सिफाई रहेंगे तो हमारे लिए दिक्कत है, है ना।
0: हाँ हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, योग के बारे में बातें जरूर करेंगे, थोड़ा सा एक विराम और ले लें आंचल।
1: चलिए फिर।
0: अच्छा ये बताओ आंचल, विराम से पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट बात याद आई कि मैं अपना योगा से योगा केंद्र जाने का सोच रही हूँ। तो सोचती हूँ कि कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, किधर पे जाऊँ, लेकिन मुझे अभी इस समय कुछ समझ में नहीं आता, तो तुम क्या सजेस्ट करती हो?
1: आपको योगा सेंटर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे। आप काम करती हैं, है ना भाई, अक्सर माथे पे आपके चिंता की रेखाएं देखी हैं मैंने, काम के प्रेशर, फिर आपके नीज में भी दर्द रहता है।
0: हाँ,
1: है ना।
0: तो आंचल मतलब तुम्हारा कहना है कि मुझे कुछ ज्वाइन करना चाहिए?
1: बिल्कुल करना चाहिए दीदी, आप योगा वेलनेस सेंटर वगैरह ज्वाइन कीजिए।
0: अच्छा तो मैं तुम्हारी सलाह मान लेती हूँ, चली जाऊंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें भी ज्वाइन करना।
1: मैं तो करूंगी, मम्मी बोलती है मुझसे कि आंचल योगा सेंटर वगैरह ज्वाइन करो।
0: हाँ तो एक काम करते हैं कि योगा तुम भी जाना, मैं भी जाऊंगी।
1: बिल्कुल,
0: इससे क्या होगा पता है, हम दोनों खुश रहना शुरू कर देंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा।
1: बिल्कुल,
0: और मानती हो ना हम सबको खुश रहने
1: की बेहद जरूरत है। बिल्कुल, खुश रहेंगे तो एनर्जेटिक रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: तो सखियों क्यों ना करें सोशल मीडिया से दूरी और बना लें योग और ध्यान की दुनिया को अपना।
1: बिल्कुल,
0: और खुद को कर लें डिजिटल डिटॉक्स।
1: बिल्कुल, और इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे श्रोताओं के लिए क्या हो सकती है।
0: अब एक काम करते हैं आंचल, सखियों को जाते जाते एक और गीत सुनवा दें जिसमें सुकून है, शांति है।
1: चलिए फिर।

0: देखिए ना दीदी, बातें करते करते घड़ी ने हमें इशारा कर दिया कि हमें अब अपने सखियों से विदा लेनी होगी, पता भी नहीं चला है ना।
1: हाँ
0: तो
1: अच्छा, आजकल तुमने एक बात देखी, मैं वाकई में स्ट्रेस में रहती हूँ, बोलना कुछ होता है, बोल कुछ जाती हूँ, तो मैं योगा पक्का करूँगी।
0: पक्का करिए बिल्कुल,
1: है ना। और उम्मीद करते हैं सखियों को हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा
0: अच्छा लगा होगा बिल्कुल।

0: वो हमें दोबारा हम उनसे भेंट करेंगे जल्दी ही
1: किसी और कार्यक्रम में। हाँ बिल्कुल, तो तब तक अपनी सखी आंचल
0: और अपनी सखी सीमा को दीजिए विदा। नमस्कार, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अपराजिता। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब फौजी भाई सुने अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

0: फौजी भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम जवानों के लिए आज आपके साथ रूबरू हो रही हूँ मैं, आपकी दोस्त भाषा। स्वीकार कीजिए भाषा का नमस्कार। फौजी भाई, आप हमारे देश की आन बान हैं। आप सरहद पर होते हैं तो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, और आपके मेल, आपके पत्र हमें मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनाते हैं, दिल को बहुत सुकून मिलता है। देखते हैं आज हमारे पास कहाँ से मेल आई है। ये मेल हमें मिली है कटरा चांद खां, पुरान शहर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, श्रुमंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, ऐसे ही मौर्य और स्वाति मौर्य की। आप सभी सुनना चाहते हैं लापरवाह फिल्म का गीत किशोर कुमार और चंद्राणी मुखर्जी की आवाज़ों में, संगीत बप्पी लहरी का।
1: जुड़े रहने के लिए सब

अगला मेल हमें आया है अकोला महाराष्ट्र से। गणेशनी, ललितानी, शेखरनी, आशीषनी, प्रियंका पूरी, एरा पूरी और अभिमन्यु पूरी की। आप सभी सुनना चाहते हैं बड़े दिल वाला फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। मजू सुल्तान पूरी के बोल हैं, सुरों में पिरोया है राहुल देव बर्मन ने।

और ये मेल भेजा है हमें यूनिटी सिटी बहादुरपुर लखनऊ से कविता सिंह, रामाश्रय सिंह, सरोज सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह, सीमा सिंह, डॉली सिंह, राशि, कुहू, नमन, बिट्टू और काजल सिंह ने। आप सभी सुनना चाहते हैं जिंदा दिल फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के युगल स्वरों में अभी आपने जिंदा दिल फिल्म का गीत सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए।

तीसरी आंख फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। इसी गीत के साथ फौजी भाइयों, दीजिए अनुमति भाषा को कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। जय हिंद।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार।

0: स्वीकार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझे

0: दारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के

0: प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद्र स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम।
3: क्या आपको छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या सिर्फ मॉनसून में होती है या पूरे साल रहती है? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर रामजी वर्मा, लखीमपुर खीरी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जैसा कि जैसे नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस न ले पाने के

0: चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं आपको बार बार हो रही हो तो इसे नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें और सही समय पर इसका इलाज कराएं। धन्यवाद।
1: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन विषय पर राम नरेश वर्मा से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां मिठास की फसल आपके खेत में है तो सामयिक प्रबंधन इस समय क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं गन्ना विशेषज्ञ आर्यन वर्मा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। वर्मा साहब, ये बताएं कि इस समय गन्ने की फसल जहां खेत में है तो सामयिक देखभाल में क्या कुछ करें मिठास के किसान भाई बहन।
4: किसान भाइयों एवं बहनों, आपको सादर नमस्कार। गन्ने की फसल खेत में खड़ी है और किसान भाइयों को जो उनकी नाइट्रोजन की मात्रा है, जो अवशेष बची है, वो जून के महीने में ही खेत में अनिवार्य रूप से प्रयोग कर दें।
3: यानी तो जो भी शेष नाइट्रोजन है सबका प्रयोग अंतिम डोज के रूप में,
4: अंतिम डोज के रूप में जून में ही प्रयोग कर दें। जुलाई में हमारी बरसात शुरू हो जाती है, उसमें प्रयोग करना अच्छा नहीं रहता है।
3: तो आजकल दानेदार यूरिया भी है नाइट्रोजन के लिए और नैनो यूरिया प्लस भी स्मार्ट उर्वरक है, तो इनका प्रयोग हो कैसे?
4: मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नैनो यूरिया जो है वो ज़्यादा इसमें उसका बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार का उस पर बहुत जोर भी है। किसान भाइयों को आधा लीटर जो नैनो यूरिया है उसको प्रति एकड़ प्रयोग करना है और स्प्रे से स्प्रे करना है।
3: और जहाँ बड़े पैमाने पर है तो वहाँ ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल?
4: जी जी, कई चीनी मिलें हमारी ऐसी हैं जो ड्रोन से भी किसानों के खेतों पर स्प्रे करती हैं। कुछ हमारे और मध्यम के किसान हैं वो ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर से भी स्प्रे करते हैं। बहुत छोटे किसान जो हैं वो पीठ पे लादने वाले स्प्रे से भी अपने खेत में नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी किसान भाई इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है आने वाले समय में नैनो यूरिया का प्रयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा।
3: वर्मा साहब, ये तो फसल की भूख मिटाने की बात हो गई, फसल की प्यास बुझाने के लिए क्या करना है?
4: किसान भाइयों, गन्ने की खेती में पानी की बहुत महती आवश्यकता है। गन्ने की खेती में मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो 5-6 से सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। अभी वर्षा अगर नहीं होती है तो हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बरसात सीजन में यानी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कभी कभी 15 से लगा करके 20 दिन तक पानी नहीं बरसता है। ऐसी परिस्थिति में हमारी गन्ने की फसल मुरझाने लगती है। गन्ने की फसल की जो मुरझाने वाली स्थिति है वो बड़ी खतरनाक होती है, यानी उसका हमारा उपज पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि बरसात सीजन में भी अपने सिंचाई के साधन को दुरुस्त रखें और जैसे ही 15-20 दिन पानी ना बरसे, गन्ने की पत्ती मुरझाने लगें, तुरंत गन्ने की सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
3: मानसून के आने के साथ ही गन्ने की बधाई भी जरूरी है
4: जी,
3: और उसके पहले मिट्टी की चढ़ाई भी।
4: जून के आखिर में या जुलाई के महीने में गन्ने में मिट्टी चढ़ाई जाती है। जिन किसान भाइयों की फसल बढ़वार अच्छी हो चुकी है यानी पर्याप्त मात्रा में टिलर निकल चुके हैं वहाँ मिट्टी इसी महीने चढ़ा दें। जो गन्ने की फसल देर में बोई गई है यानी गेहूँ काटने के बाद बोई गई है उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य जुलाई के अंत में करना चाहिए, क्योंकि जुलाई में जब मिट्टी हम चढ़ा देंगे तो उससे हमको दो फायदे मिलेंगे। एक तो नालियां बन जाएंगी खेत में, वो सिंचाई का भी काम करेंगी, जल निकासी का भी काम करेंगी। उसके साथ ही साथ ये भी देखा गया है जिन खेतों में मिट्टी चढ़ी रहती है ऐसे खेतों में जंगली जानवर नुकसान कम पहुँचाते हैं।
3: और बधाई के लिए?
4: बधाई के लिए मेरा ये सुझाव है किसान भाइयों से कि अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में बधाई करें। जब हमारा गन्ना कम से कम 5-6 फुट का गन्ना बन जाए, 15 अगस्त के आसपास पहली बंधाई और सितंबर के पहले सप्ताह में दूसरी बंधाई की जानी चाहिए। बंधाई करने से दो फायदे होते हैं कि गन्ना गिरता नहीं है और गन्ना जब गिरता नहीं है तो उसको वजन मेंटेन रहता है।
3: वर्मा साहब, मिठास की फसल में सामयिक प्रबंधन की बात चल रही है तो फसल सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे

0: हानिकारक कीट हैं, बीमारियां हैं जिनसे नुकसान पहुंचता है, तो उसका समेकित प्रबंधन कैसे करें, मित्र कीटों को कैसे बढ़ावा दें ताकि दुश्मन कीट और बीमारियों का प्रबंधन हो जाए।
1: गन्ने की फसल जो हमारी खेत में खड़ी है उसमें इस समय जो कीड़े लग रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कीड़ा है वो है टॉप बोरर। उसका प्रकोप प्रायः हर वैरायटी में होता है,
0: यानी चोटी बेधक।
1: और जो हमारी अर्ली वैरायटी हैं या आप कह सकते हैं जो जिनमें ज़्यादा मिठास होती है उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। उसके नियंत्रण के लिए हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल भी उपलब्ध है, ट्राइकोग्रामा के कार्ड मिलते हैं भारतीय गन्ना में, और वहाँ से ला करके 50,000 कार्ड प्रति हेक्टेयर,
0: यानी ढाई एकड़ में। अगर एकड़ की बात करें तो लगभग 20,000
1: एक कार्ड मिलता है। उसके 3-4-5 टुकड़े कर लिए जाते हैं और कार्ड को पत्तियों में पिनअप कर दिया जाता है और उस कार्ड पे अंडे होते हैं, अंडे रिलीज होते हैं और अंडे हैं उस पर वो पैराफाइट का काम करता है और वो हमारी फसल बच जाती है।
0: बेधक कीटों की बात चली है तो चोटी बेधक के अलावा भी कई तरह के बेधक कीट हैं।
1: एक हमारा जड़ बेधक होता है, एक हमारा जो है सूट बोरर भी होता है जिसको हम अंकुर बेधक कहते हैं। अंकुर बेधक की अवस्था धीरे धीरे अब ख़त्म होने की स्थिति में है, क्योंकि ये कीड़ा गर्मियों में लगता है, जब बरसात शुरू हो जाती है तो ये अपने आप ख़त्म हो जाता है।
0: और जड़ बेधक
1: का प्रकोप बना रहता है। जड़ बेधक के नियंत्रण के लिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि यदि हमारा गन्ना मूढ़ है, थान है, वो सूख रहा है तो उसको हमको खोद के देखना चाहिए। उसमें उसके जो कैटरपिलर हैं वो दिखाई पड़ते हैं ज़मीन के अंदर, और उसके नियंत्रण का हमको नियंत्रण करना ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इमिडा जो हमारा केमिकल है, इमिडा इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है और उसकी ड्रेंचिंग करना चाहिए,
0: यानी 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से।
1: जी 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके लाइनों के पास ड्रेंचिंग कर देना चाहिए, यानी मोटी धार से लाइन के किनारे किनारे स्प्रे करते चले जाना चाहिए। ध्यान ये भी रखना चाहिए कि खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।
0: इसके अलावा कभी कभी पायरिल्ला का भी प्रकोप होता है।
1: पायरिल्ला एक ऐसा कीड़ा है जो कभी कभी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है, और किसी किसी साल तो ऐसी स्थिति बनती है कि पायरिल्ला बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और कई कई साल ऐसे होते हैं कि पायरिल्ला बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जब हमारे खेत में पायरिल्ला आता है तो उसी साथ उसका परजीवी भी
0: पीछे आता है।
1: जो
0: यानी किसान का मित्र आता है,
1: किसान का मित्र है, आप किसान के मित्र के कीड़े की उसको संज्ञा दे सकते हैं। वो पीछे आता है और हमारे उसके जो अंडे हैं उस अंडे में अपना अंडा दे देता है और उससे उसका जो निकलता है वो उसके फसल को हमारी बच जाता है। यदि हमारे खेत में परजीवी नहीं है, पैरासाइट नहीं है, तब हमको केमिकल का प्रयोग करना चाहिए। यदि पैरासाइट हैं तो केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: प्राकृतिक रूप से अपने आप नियंत्रित हो जाएगा मित्र कीटों से।
1: पायरिल्ला एक ऐसा कीड़ा है जो मित्र कीटों से नियंत्रित किया जा सकता है।
0: बीमारियों की बात करें तो कई बीमारियां हैं जो आजकल मिठास की फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनमें पुक्का बोइंग भी है, उकठा भी है, कंडुआ भी है।
1: हमारी गन्ने की फसल है चूँकि मीठी फसल है और वर्ष पर्यंत खेत में खड़ी रहती है, इसलिए गन्ने की फसल में कीड़े मकोड़ों का प्रयोग, रोगों का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही होता है। गन्ने की फसल में एक रोग है जिसको हम लोग लाल सड़न रोग कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेड राट के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग कैंसर गन्ने का भी कहते हैं। आज तक तमाम गन्ने की अच्छी अच्छी वैरायटियाँ जो ख़त्म हो गई, जो रोगग्रस्त हो गई, उनकी खेती ख़त्म हो गई, वो
0: लाल सड़न की वजह से
1: ख़त्म हुई। हमारे यहाँ ऐसा एक रोग है जिसका नियंत्रण अभी तक किसी केमिकल से संभव नहीं हो पाया है। उसके लिए हमको प्रबंधन करना है, प्रबंधन करके ही हम अपने खेत को इस रोग से बचा सकते हैं। और प्रबंधन में हमें किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, यदि फसल चक्र अपना लें, बुआई के समय बीज को उपचारित करके बोएं, बोते समय खेत की तैयारी करते समय
0: भूमि शोधन कर लें,
1: ट्राइकोडर्मा 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लें। यदि ट्राइकोडर्मा नहीं डाल पाए हैं बुआई के समय तो खड़ी फसल में भी ट्राइकोडर्मा डाल करके खेत में गुड़ाई कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, खेत में नमी बहुत ज़रूरी।
0: वर्मा साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल

0: नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 94-52-82-89-11 9452828911 94-52-82-89-11। किसान भाइयों को यदि कोई बीमारी या कीड़ा अपने खेत में दिखाई पड़ता है तो उसकी फोटो खींच करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप भेज दें, मैं उसका उचित समाधान उनको निश्चित रूप से मोबाइल पे सूचित कर दूंगा।
0: आर्यन वर्मा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मिठास की फसल में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विज्ञान और किसान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम नरेश वर्मा से की गई भेंट वार्ता, विषय था गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: क्या आपको छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या सिर्फ मॉनसून में होती है या पूरे साल रहती है? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर रामजी वर्मा, लखीमपुर खीरी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जैसा कि जैसे नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस न ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं आपको बार बार हो रही हों तो इसे नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें और सही समय पर इसका इलाज कराएं। धन्यवाद।
3: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। दयापुरवा बीबीडी लखनऊ से रियांश के लापता होने के संबंध में उनके पिता राजेश कुमार ने सूचित किया है। रियांश की उम्र है 4 वर्ष, कद 2.5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। लापता होने वाले दिन इन्होंने काले रंग का टी शर्ट व काला लोअर पहन रखा था। इनके मिलने के संबंध में यदि कोई भी जानकारी मिले तो हमें सूचित करें। हमारा पता है थाना बीबीडी, जनपद लखनऊ। वकील कुमार वर्मा ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री शिवानी, जिनकी उम्र है 14 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, ये दिनांक 28 मई 2026 से अवधपुरम लखनऊ से लापता हैं। लापता होने वाले दिन इन्होंने सफ़ेद कुर्ता, काली सलवार पहन रखा था। इनके मिलने के बारे में यदि कोई भी जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना गुडुम्बा, जनपद लखनऊ। कुमारी राजनंदिनी के लापता होने के संबंध में उनके पिता रामू ने हमें सूचित किया है। राजनंदिनी, जिनकी उम्र है 13 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है, ये दिनांक 21 मई 2026 से लापता हैं। लापता होने वाले दिन इन्होंने नारंगी रंग का सूट व सफ़ेद दुपट्टा पहना था। इनके मिलने के बारे में यदि कोई भी जानकारी मिले तो हमें सूचित करें। थाना चिन्हट, जनपद लखनऊ। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: कही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है?
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक माधुरी। साथियों, आज लोक माधुरी कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं डॉक्टर आभा आर दीक्षित। आज इनके स्वर में आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत। इनके साथ तबले पर संगत की है, क्षमा कीजिएगा, ढोलक पर संगत की है मनोज कुमार मेहता ने, हारमोनियम पर चंद्रेश पांडे, बांसुरी पर अलका सिंह और साइड रिदम पर विनोद कुमार श्रीवास्तव, नक्कारा पर हैं सुनील कुमार विश्वकर्मा। सबसे पहले इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये तिलक गीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज की कलाकार हैं डॉक्टर आभार दीक्षित। अभी आपने इनके स्वर में ये तिलक गीत सुना, और तिलक गीत के बाद लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में ये माड़ो गीत।

लोक माधुरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आभा आर दीक्षित के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। इनके साथ संगतकर्ता थे ढोलक पर मनोज कुमार मेहता, हारमोनियम पर चंद्रेश पांडे, बांसुरी पर अलका सिंह, साइड रिदम पर विनोद कुमार श्रीवास्तव व नक्कारा पर सुनील कुमार विश्वकर्मा। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अपराह्न के 3

बच चुके हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय होने को है शाम के 5 और हम हाजिर हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ

0: 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:05 और ये वक्त है हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिएगा शारीरिक दक्षता में योग की भूमिका। इस विषय पर वार्ताकार हैं डॉक्टर गणेश शंकर पांडे। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर आप सुनेंगे शिक्षा से उभरता ग्रामीण भारत, शिक्षा से जागता गांव। इस विषय पर ओबी आधारित कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। लोकायतन कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर सुनिएगा भेंटवार्ता ग्रामीण आजीविका मिशन और जनभागीदारी। जन्मेजय शुक्ल से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे। खेती किसानी के कार्यक्रम में शाम 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी। और आज खेती किसानी के ही कार्यक्रम में आप सुनिएगा धरती बचाओ अभियान के अंतर्गत आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित किसान संगोष्ठी व चौपाल पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

आप में संपन्न मजलिशे शाम गरीबा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा अशोक गोस्वामी का राग जयंत मल्हार में वायलिन वादन, और सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर आप सुनिएगा अरशद हुसैन चिश्ती की गाई नात एवं कवालियाँ। श्रोताओं, आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। राष्ट्र पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर, और रात 10:00 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। गन्ने की फसल में कृषि रक्षा कार्य ये आप सुनिएगा कल प्रातः 6:05 पर, कार्यक्रम होगा कृषि चर्चा। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण होगा कल प्रातः 6:45 पर, और सवेरे 7:00 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सुनिएगा घर के बुजुर्गों की देखभाल के सही तरीके, आलेख एवं वाचन नीना सोनकर के। विविधा कार्यक्रम में कल सवेरे 7:10 पर आप सुनेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस।

शाम 7:31 पर सुनिएगा अंग्रेजी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे एक इंटरव्यू। विषय है यंग माइंड्स रीडिंग साइंस, एन इंटरव्यू विद रिसर्चर देवांशी प्रकाश, इंटरव्यू बाय डॉक्टर शीबा राकेश। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 सुनिएगा भक्ति काल के कवियों का दर्शन और वार्ताकार होंगे डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे। आज रात 11:10 पर आप सुनेंगे लखनऊ स्थित स्थानीय इमामबाड़ा गुफरा

सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सुबह। जिले की हलचल कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 9:15 पर, और उर्दू कार्यक्रम के तहत कल सवेरे 9:30 से समाप्त फरमाइएगा। बैनुल अकमावी शायर शकील गोस से फैज़ा ज़ुबैर की मुलाकात, और कलामी शायर के तहत आप सुनेंगे श्री दत्त शर्मा से उनका कलाम। कल का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर मरकज की पेशकश होगी। घर आंगन कार्यक्रम होगा कल दोपहर 1:15 पर, और कल दोपहर 2:30 कार्यक्रम विज्ञान और किसान में सुनिएगा हरी खाद की पलटाई और खरीफ की तैयारी। डॉक्टर नंदन सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे। कल शाम 5:10 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग, और नई उड़ान कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर आप सुनिएगा प्रेम शंकर अवस्थी की वार्ता, विषय होगा ग्रामीण भारत की विकास यात्रा। और खेती किसानी के कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर आप सुनेंगे फलदार वृक्षों की सघन बागवानी, डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। विज्ञान जगत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:31 पर। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा 6G के साथ भविष्य होगा सुपरफास्ट, डॉक्टर जीशान अली सिद्दीकी असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रवीण कुमार की भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे। हिंदी कार्यक्रम में कल रात 8:00 सुनिएगा उपन्यासकार राजी सेठ का कथामानस, और कल रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे हेमा दीक्षित की गाई गसलें। श्रोताओं, ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा तरंग।

0: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों. स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस बेहतरीन कार्यक्रम युवा तरंग में. अभी बज रहे हैं शाम के 5:10 और हर शाम इस समय हम लेकर आते हैं आपके लिए नए विषय और नई जानकारियाँ. और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके दो रेडियो साथी. मैं आयुषी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
1: मांडवी.
0: वैसे मांडवी, आजकल सुबह उठते ही हमारा हाथ सीधे स्मार्टफोन पर जाता है ना?
1: बिल्कुल.
0: हमारी सुबह की चाय से लेकर रात को सोने से पहले तक हमारी पूरी जिंदगी इंटरनेट के इर्द गिर्द घूम रही है.
1: बिल्कुल.
0: ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, पढ़ाई और ऑफिस का काम, सब कुछ डिजिटल हो चुका है.
1: तुम बिल्कुल सही कह रही हो आयुषी. और तकनीक ने हमारे काम को जितना आसान और तेज बनाया है, उतना ही इसने शातिर चोरों के लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं. इंटरनेट की दुनिया ने जो होता है ना, उसमें होने वाले जो धोखेबाजी है, फ्रॉड है, ब्लैकमेलिंग है और चोरियों की जो चोरियां जो होती

0: ना वो हम सबको बहुत ज्यादा आसान हो गई उनके लिए, जिसे हम लोग साइबर अपराध कहते हैं, यानी कि साइबर क्राइम कहते हैं। ये एक ऐसा इनविजिबल खतरा है जो हमारे घर के बंद कमरों में भी हमारे फोन के जरिए घुस सकता है।
1: हाँ मानवी, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये साइबर अपराधी हर दिन इतने नए और शातिर तरीके अपनाते हैं कि एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान भी आसानी से इनके झांसे में आ जाता है। लोग अक्सर अनजाने में इन अपराधों का शिकार हो जाते हैं। जैसे आजकल फिशिंग के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसमें अपराधियों का तरीका ये होता है कि वो आपको आपके बैंक या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से हूबहू असली दिखने वाले नकली ईमेल या मैसेज भेजते हैं।
0: जी, और आयुषी ये फिशिंग तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है। ये जो इन मैसेजेस में एक लिंक होता है और लिंक में लिखा होता है कि अगर आपने तुरंत इस पर क्लिक नहीं किया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही कोई डरकर या उत्सुकतावश इन लिंक्स पर क्लिक करता है, उसके फ़ोन का पूरा कंट्रोल या उसकी पर्सनल बैंकिंग जो डिटेल्स होती हैं वो अपराधियों के पास पहुँच जाती हैं। लोग अपनी जीवन भर की कमाई मिनटों में खो देते हैं।
1: और सिर्फ पैसों की चोरी ही नहीं, आजकल तो लोगों की पहचान यानी आइडेंटिटी थेफ्ट भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सोशल मीडिया से किसी की भी असली तस्वीरें और नाम चुराकर हूबहू वैसी ही एक नकली प्रोफाइल बना ली जाती है। फिर उस नकली प्रोफाइल से उस व्यक्ति के दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेजेस भेजे जाते हैं।
0: लोग अपने दोस्त या रिश्तेदार की मदद करने के चक्कर में बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो कोई फेक अकाउंट था। यहाँ तक कि रैंसमवेयर जैसे खतरनाक डिजिटल वायरस भी आ गए हैं जो आपके कंप्यूटर या फोन के पूरे पर्सनल डेटा और फाइलों को लॉक कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है आयुषी कि इस डिजिटल चक्रव्यूह में खुद को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
1: मानवी, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने बैंक अकाउंट, ईमेल और सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए हमेशा एक बहुत ही मजबूत और जटिल पासवर्ड रखें। पासवर्ड में आपका नाम, आपकी जन्म तिथि या 12345 जैसी आसान चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: उसमें हमेशा अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे #, $ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और हाँ, हर जगह एक ही पासवर्ड रखने की आलस भरी गलती भी ना करे कभी।
0: एग्जैक्टली, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है वो है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA। हमें ये समझना होगा कि आयुषी की अपने फ़ोन के जो ऐप्स हैं उन पर ये सेटिंग लगा दें कि आज जो हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं उसमें 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
1: जरूरी होता है,
0: सर्विस बहुत ज़रूरी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल गया तो भी वो आपके अकाउंट में तब तक लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक कि आपके फोन पर आने वाला वो 6 अंक का जो OTP होता है ना, वो उसमें दर्ज ना कर दे।
1: बिल्कुल, यानी सुरक्षा की एक डबल लेयर बन जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने ATM पिन, नेट बैंकिंग का पासवर्ड या फोन पर आने वाले किसी भी OTP को कभी भी किसी भी इंसान के साथ शेयर ना करें। हमेशा याद रखिए कि दुनिया का कोई भी बैंक, कोई भी मैनेजर या कोई भी सरकारी अधिकारी आपसे फोन पर कभी भी आपका पासवर्ड या OTP नहीं मांगता। अगर कोई ऐसा मांग रहा है तो समझ जाइए कि वो 100% एक धोखेबाज है।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा आजकल मैसेज पर आने वाले उन लुभावने लिंक से बहुत बचकर रहने की जरूरत है जिनमें लिखा होता है कि इस लिंक पर क्लिक करें और फ्री में पाए 500 का रिचार्ज, है ना, या फिर आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है। ये सब सिर्फ जाल होते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इन लिंक्स पर, आपके फोन में बैकग्राउंड में एक वायरस डाउनलोड हो जाएगा जो आपकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड करके अपराधियों तक पहुंचाएगा।
1: और एक और जरूरी सावधानी, जब भी हम किसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कैफे में जाते हैं तो वहाँ का फ्री पब्लिक वाईफाई देखकर हम तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस वाईफाई पर कनेक्ट रहते हुए कभी भी अपने बैंक का ऐप ना खोलें, कोई पैसों का लेन देन ना करें, क्योंकि ऐसे पब्लिक नेटवर्क्स को हैक करना और आपका डेटा चुराना हैकर्स के लिए बहुत आसान होता है।
0: ये सब सावधानियां तो सच में हर उस इंसान के लिए एक लाइफ सेविंग गाइडबुक की तरह है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। लेकिन आयुष, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। मान लो किसी ने पूरी सावधानी बरती लेकिन फिर भी किसी चालाकी का शिकार हो गया, किसी साइबर फ्रॉड में फंस गया और उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, तो उस वक्त इंसान घबरा जाता है। उस नाजुक वक्त में बिना पैनिक के तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए?
1: बहुत ज़रूरी सवाल है मानवी, और इसका जवाब जानना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए कार्यक्रम में लोक संस्कृति की मिठास घोलते हैं। उत्तर प्रदेश की लोक परंपरा और अवधी लोक संगीत की सुरीली पहचान सुप्रसिद्ध

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
1: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
0: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
1: UPSRTC देवरिया,
0: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
0: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
1: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
0: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना मालिनी अवस्थी जी की मधुर आवाज में लोकगीत सैया मिले लड़कैया। गीत से पहले मानवी ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो बिना पैनिक किए उसे क्या करना चाहिए। तो मानवी, ऐसे समय में हिम्मत रखना और तुरंत सही कदम उठाना ही सबसे समझदारी का काम है। अगर आपके अकाउंट से कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है तो सबसे पहला काम ये करें कि तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करें या बैंक की ब्रांच में जाकर अपना एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग और पूरा अकाउंट तुरंत फ्रीज या ब्लॉक करवाएं। साइबर क्राइम की दुनिया में एक शब्द होता है जिसे गोल्डन आर कहते हैं, यानी पैसे कटने के ठीक बाद का पहला एक घंटा।
3: जी, और अगर इस एक घंटे के भीतर सही जगह शिकायत दर्ज करा दी जाए तो पुलिस और बैंक मिलकर उस पैसे को आगे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर होने से रोक देते हैं और आपके पैसे वापस मिलने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। और हाँ, घबराहट में आकर उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के मैसेज को डिलीट ना करें। उस मैसेज का, उस फर्जी फोन नंबर का या फिर जिस लिंक के जरिए धोखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेकर डिजिटल सबूत के तौर पर अपने पास सुरक्षित रख लें उसको।
2: बिल्कुल मानवी, सबूत हाथ में होने के बाद कानूनी शिकायत करना बहुत आसान हो जाता है। और हमारे श्रोताओं को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे देश में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए बहुत ही सख्त और आधुनिक

0: कानून बनाए गए हैं
1: जी।
0: अब शिकायत करने के लिए आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए एक बेहद शानदार और आसान व्यवस्था की है।
1: जी हाँ दोस्तों, आप अब घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सरकार के ऑफिशियल नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल यानी कि cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी पूरी कहानी या ट्रांजैक्शन डिटेल्स और स्क्रीनशॉट्स अपलोड करके ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ये पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ आम नागरिकों के डेटा को भी सुरक्षित रखा जाता है।
0: और अगर किसी को तुरंत फोन पर शिकायत दर्ज करानी है या ऑनलाइन शिकायत करने में दिक्कत आ रही है तो सरकार ने उसके लिए एक बहुत ही आसान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वो नंबर है 1930। इस नंबर पर आप 2400 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं
1: जी।
0: कॉल करते ही वहां बैठे साइबर एक्सपर्ट्स आपकी शिकायत सुनते हैं और तुरंत बैंक से संपर्क करके उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।
1: इसके अलावा दोस्तों, आप अपने शहर या जिले के नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। आजकल लगभग हर बड़े पुलिस स्टेशन में या हर जिले में एक विशेष साइबर सेल डिपार्टमेंट होता है जहां सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से जुड़े अपराधों की जांच की जाती है। वहां जाकर आप अपनी लिखित रिपोर्ट और सबूत जमा कर सकते हैं।
0: इसके साथ ही अगर कोई मामला विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा या उनके सोशल मीडिया हैरेसमेंट से जुड़ा है तो वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मदद ले सकती हैं। और अगर बच्चों की सुरक्षा या डिजिटल स्पेस में उनकी काउंसलिंग की बात हो तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, आज की हमारे इस बेहद गंभीर बातचीत का सीधा सा मतलब यही है, सार यही है कि डिजिटल दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही सतर्कता भी मांगती है। यहाँ डरना, चुप रहना या शर्म के मारे अपनी बात छुपाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपकी असली सुरक्षा आपके जागरूक होने, सही प्रिकॉशन लेने और सही समय पर कानूनी कदम उठाने में है।
0: बिल्कुल मानवी, स्क्रीन के पीछे छुपकर उंगलियों से धोखाधड़ी करने वाले लोग बहादुर नहीं होते हैं, सिर्फ कायर अपराधी होते हैं। और कानून की ताकत उनसे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इंटरनेट को एक सुरक्षित, जिम्मेदार और सकारात्मक जगह बनाना हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल आयुषी। और इसी के साथ दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है शारीरिक दक्षता में योग की भूमिका। वार्ताकार हैं डॉक्टर गणेश शंकर पांडे। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: आज हम शारीरिक दक्षता में योग की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले शारीरिक दक्षता के बारे में जानेंगे और उसके पश्चात योग पर भी चर्चा करेंगे। हम आप सभी जानते हैं कि 21 जून सन 2014 से हम विश्व योग दिवस मनाते हैं और इस योग को आज के दौर में शारीरिक दक्षता का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं। मैं सबसे पहले आपको योग पर ही बता देता हूँ क्योंकि योग के बारे में सबसे पहले हिरण्यगर्भ जी ने बात की थी और उनके बारे में ये कहा भी जाता है। संस्कृत का एक श्लोक है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्या पुरातनः, अर्थात सबसे पहले हिरण्यगर्भ ने इसको दिया था, इससे पहले किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी। लेकिन आज के दौर में महर्षि पतंजलि जी का बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने ही योग को सबसे ज़्यादा परिभाषित किया है। उन्होंने एक लाइन में योग को परिभाषित किया है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाना ही योग है। महर्षि पतंजलि जी ने ये कहा है कि मनुष्य का मन ही सबसे ज़्यादा चंचल होता है और जब उसकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उन पर अगर रोक लगती है तो मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक दक्षता भी इसी से जुड़ी हुई है। जो भी शारीरिक दक्षता के घटक हैं उनमें शक्ति है, गति है, सहनशीलता है, समन्वय क्षमता है और लचीलापन है। आप देखते हैं आज के दौर में जब कोविड जैसे कई बीमारियां आई हैं और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे तो उनकी शारीरिक दक्षता को योग ने ही बनाया। उन्होंने घर पर रह करके प्रैक्टिस किया, वो कहीं जिम में नहीं जा रहे थे, उन्होंने पार्कों में और घरों में अपने आप को कैद करके रखा और योग के जरिए अपने आप को फिट रखा। शारीरिक दक्षता इसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में योग को परिभाषित किया है। उन्होंने योग के बारे में कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग के द्वारा ही हम अपने कर्मों में कुशलता ला सकते हैं, उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में

इसको परिभाषित किया था, तो उन्होंने अपने कर्मों में, यानी जो भी आप कर्म करो उसमें योग अच्छा मान कर करो, क्योंकि अगर आप अपने कर्म में कुशलता लाना चाहते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों आयामों को एक साथ लाना होगा, तभी आपका जो योग आपका कर्म होगा वो कुशल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता को लेकर के कि हम कैसे शारीरिक दक्षता को अच्छा करें, तो योग के जो बहुत सारे अंग हैं अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि अगर आप यम की बात करते हैं तो यम का कार्य होता है कि यम के 5 व्रत हैं जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक होता है, अनुशासित होता है। और इसके बाद जो नियम है, इस नियम का कार्य क्या है, नियम के जो सूत्र हैं, जो 5 व्रत हैं, उनके द्वारा हमारे बाह्य और आंतरिक जो हमारी प्रणाली है वो स्वच्छ बनती है। इसके बाद में जो आसन है उनसे हमारा शरीर और मन प्रसन्न रहता है। प्राणायाम हमारे श्वास को नियंत्रित करता है। इसके बाद में जो प्रत्याहार है उससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल होती हैं। पश्चात धारणा, धारणा का अर्थात ध्यान से है, और इसमें हम किसी सूक्ष्म चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं जो आजकल आप मेडिटेशन के रूप में देखते हैं। इसके पश्चात हमने ध्यान की बात की। देखिए, धारणा और ध्यान दोनों में ही ध्यान का ही वर्णन है, लेकिन ध्यान कुछ अलग है। धारणा और ध्यान में एक अंतर ये है कि ध्यान को कहा गया है कि मन में विघ्न उत्पन्न करने वाले संवेगों, विचारों और इच्छाओं से मन को मुक्त करना ही ध्यान है, जबकि धारणा में सूक्ष्म बिंदु पर हम अपने आप को केंद्रित करते हैं। इसके बाद समाधि है। समाधि जो है वो मन की सेमी कॉन्शियस स्थिति होती है, अवचेतन स्थिति होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम इस योग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैसे इसको शारीरिक दक्षता की कसौटी पर परखेंगे, क्योंकि शारीरिक दक्षता, अभी मैंने इसके 5 घटक बताए हैं आपको, इन 5ों घटकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, जिसको हिंदी में समन्वय क्षमता कहते हैं। और इस समन्वय क्षमता के लिए आपका शारीरिक और मानसिक एकाग्र होना आवश्यक है। इसके अलावा एक बड़े इंटरनेशनल ऑथर हुए हैं, उन्होंने कोट किया है डीआर लैम्ब ने अबाउट फिजिकल फिटनेस, यानी शारीरिक दक्षता के बारे में डीआर लैम्ब ने जो कहा है वो ये कहा है कि जीवन के जो भी चैलेंजेस हैं, यानी जो आपके वर्तमान और जो संभावित शारीरिक चुनौतियां हैं, उनको प्राप्त करना ही वो आपकी शारीरिक दक्षता की श्रेणी में आते हैं। शारीरिक दक्षता मनुष्य को 3 तरीके से मिलती है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। और इनको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए आपकी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना आवश्यक है। और इस व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हम 5 घटकों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर फिटनेस का हमारे अंदर सोच होनी चाहिए, हमारे अंदर न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेबिलिटी है, यानी जो हमारा न्यूरो मांसपेशी और न्यूरो का जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे अंदर होना चाहिए। इसके अलावा हमारे अंदर एक बहुत अच्छी बात होनी चाहिए कि हम आराम के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है। जैसे आराम के प्रति दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि हम सोने को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के अपना दृष्टिकोण क्या रखते हैं, क्या हम उसे अगले दिन के लिए छोड़ते हैं, क्या हम उसको तुरंत करना चाहते हैं या फिर हम उसको टाल देते हैं। जब हम ऐसा एटीट्यूड, ऐसा दृष्टिकोण लेके चलते हैं तो हमारी शारीरिक दक्षता में बदलाव आता है। इसके अलावा जब हम न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका मांसपेशी और न्यूरो का एक समन्वय है ये टूटता है, और ये टूटता तब है जब आप शारीरिक दक्षता को दरकिनार करते हैं, अर्थात जब आप मोटापे का शिकार होते हैं, जब आप कार्य ना करने की आदतों से जूझ रहे होते हैं, तब आपके अंदर इस बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट में बदलाव आता है। इसके पश्चात जब आप में एक अपने राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति की भावना नहीं होती है, तब भी आपका जो शारीरिक दक्षता है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा फिटनेस तो अपने आप में एक पॉइंट है, इसमें आप 5ों कंपोनेंट्स को, जो भी मैंने आपको बताया, अगर इन 5ों कंपोनेंट में बदलाव होता है तो आपका फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक दक्षता प्रभावित होती है। और अब मैं बात करता हूँ इन दोनों के समन्वय की, अर्थात शारीरिक दक्षता और योग की। और मैंने अभी बात किया कि कोरोना काल में लोगों ने योग को अपनाया, योग को फिटनेस का एक माध्यम माना, क्योंकि वो पार्कों में नहीं जा सकते थे, वो जिम में नहीं जा सकते थे, वो कार्य क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, और वो एक दूसरे के पास में भी नहीं जा सकते थे। तो इस तरीके से ये दो

0: पहलुओं से उन्होंने अपने आप को दक्ष बनाया है। कैसे? पहला पहलू हुआ कि उन्होंने फिजिकली अपने आप को शारीरिक रूप से दक्ष बनाया, दूसरा पहलू हुआ मानसिक रूप से दक्ष बनाया। और योग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों के विकास का एक मॉडल है। कैसे? जैसे आप शारीरिक अगर दक्षता की बात करते हैं योग में, तो आप आसन की व्यवस्था करते हैं। आसन मतलब सूर्य नमस्कार हो गया, और भुजंगासन हो गया, और आपका सिद्धासन हो गया। तो इस तरीके के कई उठने बैठने और लेट कर करने वाले जो आसन हैं, इनके द्वारा आप शारीरिक दक्षता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप मुद्राएं और बंध से भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि बंध एक ऐसी अवस्था है जो आपके इन्वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी आपके पेट में, आपके आंतों में और आपके जो आपके स्प्लीन हैं, इन सब में जो पाया जाता है, यानी आप एक तरीके से कहिए तो जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनमें जितनी भी मांसपेशियां पाई जाती हैं, इनका भी आप योग के माध्यम से उनको दक्ष बना सकते हैं। ऐसी व्यवस्था योग का ही एक पार्ट है, बंध उसमें दी हुई है। इसके अलावा अगर आप मानसिक दक्षता की बात करते हैं, तो आपके लिए ध्यान है, समाधि है, प्राणायाम है, और इसके अलावा आपने आजकल मेडिटेशन सेंटर्स भी सुने होंगे, जिनमें आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को, मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था शारीरिक दक्षता में योग की भूमिका। वार्ताकार थे डॉक्टर गणेश शंकर पांडे जी।
2: बिल्कुल। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उस हिस्से की ओर जिसका इंतजार हर छात्र, हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा को रहता है। जी, हम बात कर रहे हैं रोजगार सूचनाओं की। पढ़ाई, कोचिंग, नोट्स, मॉक टेस्ट के बीच अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो है सही समय पर सही जानकारी मिलना। इसी मकसद के साथ हम इस मंच के माध्यम से आपको अलग अलग सरकारी भर्तियों की जानकारी देते हैं, ताकि आप जान सके कि कहाँ मौका है और आवेदन कर सकते हैं आप।
1: चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान IIT BHU की। IIT BHU वाराणसी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी परिसर में जूनियर असिस्टेंट के गैर शिक्षण पदों पर भर्ती निकाली है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून 2026 तय की गई है, यानी आज ही इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही कंप्यूटर पर बेसिक टाइपिंग और डेटा एंट्री का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रशासनिक पद के लिए सामान्य वर्ग की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों को छूट मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार IIT BHU की आधिकारिक वेबसाइट iitbhu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
2: दूसरी बड़ी पोस्ट है जिला मिर्जापुर से। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारिक कार्यालय DBEO मिर्जापुर ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षा यानी के फुल टाइम टीचर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है, और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 27 जून 2026 की शाम तक है। अगर इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करें, तो इसके लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ BEd और TET परीक्षा पास होना अनिवार्य मांगा गया है, और अधिकतम उम्र 45 वर्ष रखी गई है। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक जिला वेबसाइट mirzapur.nic.in पर उपलब्ध है।
1: इसी के साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा और सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए UP SSSC ने फायरमैन और गार्ड के पदों पर बम्पर भर्ती की घोषणा की है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जून 2026 की रात तक खुली हुई है। अगर बात करें इसके लिए शैक्षिक योग्यता की, तो उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही उनके पास PET 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इस सुरक्षा पद के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। जो युवा लखनऊ के इस सुरक्षा बल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो अंतिम तिथि से पहले UP SSSC.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
2: जी, और अब हमारी आखिरी पोस्ट है केंद्र सरकार के उपक्रम। NTPC उत्तर प्रदेश ने राज्य के विभिन्न पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के पदों पर अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख आज 26 जून 2026 तय की गई है, यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो आज ही है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी

0: उसकी बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में बीई या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम कार्य अनुभव होना चाहिए। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है, जिसका सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। योग्य उम्मीदवार NTPC की आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, जून के इस आखिरी हफ्ते में हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े विभागों में नौकरियों की पूरी बहार आई हुई है। अब देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को थोड़ा और तेज कर दीजिए और इस शानदार अवसरों का पूरा फायदा उठाइए।
0: बिल्कुल, और हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।
2: क्या आपको छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या सिर्फ मॉनसून में होती है या पूरे साल रहती है? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर रामजी वर्मा, लखीमपुर खीरी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जैसा कि जब नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस न ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं आपको बार बार हो रही तो इसे नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें और सही समय पर इसका इलाज कराएं। धन्यवाद।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, हम आपको गीत सुना तो देते, लेकिन हमने अभी अभी देखा कि समय की सीमा जो है वो हमें कह रही है कि अब गीत तो नहीं सुनवा सकते, लेकिन आपसे कुछ बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अब आपको बताएंगे कल का कार्यक्रम विवरण। आयुषी,
1: तो दोस्तों, कल के कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएं, जिसमें हम व्यवस्थित दिनचर्या के लाभ के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी एक विशेष भेंटवार्ता, जिसका विषय है युवाओं के लिए कुछ खास बातें। तो सुनना ना भूलिएगा युवा तरंग का अगला अंक कल इसी समय और इसी जगह पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आयुषी
0: और मुझे यानी मांडवी को दीजिए इजाजत। नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:45। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नई उड़ान।

जागरूकता, संवेदनशीलता और सकारात्मक बदलाव की ओर प्रेरित करता कार्यक्रम नई उड़ान, जिसे लेकर आज मैं अमिता, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपके लिए क्या क्या जानकारियां होंगी, चलिए आपको बताते हैं। आज हमारे ओबी सेगमेंट में परिवर्तन श्रृंखला के अंतर्गत शिक्षा से उभरता ग्रामीण भारत, शिक्षा से जागता गांव, साथ ही अभिषेक शर्मा के साथ होंगे प्रगति बुलेटिन और अवसर की जानकारी। लेकिन पहले बात समय के साथ, आज 26 जून है और ये दिन हमें दो महत्वपूर्ण मुद्दों की याद दिलाता है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, साथ ही अत्याचार से पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोनों विषय सुनने में अलग लगते हैं, लेकिन इनका एक गहरा संबंध है। नशे की लत केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती है। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव और सामाजिक विघटन को बढ़ावा देता है। नशा केवल स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये कई बार हिंसा, शोषण और मानसिक और शारीरिक अत्याचार का कारण भी बनता है।

0: ऐसे में अत्याचार से पीड़ित लोगों के समर्थन का ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। दोस्तों, नई उड़ान का संदेश यही है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां युवा नशे से दूर रहे, जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। और हाँ, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अकेला महसूस ना होने दिया जाए। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम नशे और अत्याचार दोनों के खिलाफ आवाज उठाएं और प्रेम, सम्मान और सहयोग की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आज जब हम नशे से दूर रहने और अत्याचार के पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होने की बात कर रहे हैं, तो हमें मुहर्रम का संदेश भी याद आता है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी सत्य, न्याय और मानवता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया में नफरत, अन्याय और कठिनाइयां बढ़ें, तब हमें प्रेम, करुणा और ईश्वर की रहमत की पनाह तलाशनी चाहिए। इसी भाव के साथ सुनते हैं ये मन को छू लेने वाला गीत।
1: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, एमडी मेडिसिन, वरिष्ठ फिजिशियन, शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ। बहुत से लोग एलर्जी को छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल होने पर कुछ लोगों को सही से सांस न ले पाने का चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही हैं, तो इन्हें नजरअंदाज न करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और समय पर सही इलाज कराएं।
1: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.

0: क्या आपको छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या सिर्फ मॉनसून में होती है या पूरे साल रहती है? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर रामजी वर्मा, लखीमपुर खीरी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जैसा कि जैसे नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस न ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं आपको बार बार हो रही हों तो इसे नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें और सही समय पर इसका इलाज कराएं। धन्यवाद।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: साथियों, ईश्वर की पनाह और मार्गदर्शन का संदेश हमें विश्वास और नई उम्मीद देता है। इसी विश्वास के साथ अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है, शिक्षा। जी हाँ, शिक्षित और सशक्त ग्रामीण समाज केवल गांव के विकास की ही नहीं बल्कि पूरे देश की उन्नति की आधारशिला है। तो आइए आज की परिवर्तन श्रृंखला के अंतर्गत जानते हैं शिक्षा से उभरता ग्रामीण भारत और शिक्षा से जागते गांव की कहानी अपने साथी अभिषेक शर्मा के साथ।

कभी जिन गांवों की पहचान अशिक्षा, बाल विवाह और सीमित अवसरों से होती थी, आज वही गांव शिक्षा की रोशनी से जगमगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप सुन रहे हैं नई उड़ान कार्यक्रम की विशेष श्रृंखला परिवर्तन, जिसमें आज बात होगी शिक्षा से उभरते ग्रामीण भारत की। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस ग्रामीण भारत में जहां किताबों के पन्नों ने सपनों को उड़ान दी है, जहां बेटियां अब सिर्फ घर की चौखट तक नहीं बल्कि अपने भविष्य तक पहुंच रही हैं और जहां शिक्षा ने पूरे समाज की सोच बदल दी है। गांव की इन गलियों में कभी स्कूल जाना हर बच्चे की किस्मत में नहीं होता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बच्चे शिक्षा को अपने सपनों का रास्ता मान रहे हैं।

0: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से उभरते ग्रामीण भारत की, और इस वक्त हम सीतापुर रोड इटौजा में मौजूद हैं। उसी क्षेत्र के रहने वाले अनिकेत गुप्ता नाम के एक युवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे जरा सा समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी नज़र में आज का जो ग्रामीण भारत है वो शिक्षा से किस तरह से परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ रहा है। अनिकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार भैया, मेरा नाम अनिकेत गुप्ता है।

0: अनिकेत जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: कौन सी कक्षा में?
1: 12th अभी पास कर चुका हूँ, उसके बाद अब ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से आपने पढ़ाई की? आपका कॉलेज कहाँ पर है?
1: मेरा कॉलेज इटौंजा के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जजौ सीतापुर में पढ़ता है।
0: अच्छा, तो अभी आप किस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं?
1: अभी मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ और साथ साथ बीए का भी एजुकेशन के लिए फॉर्म भर रहा है।
0: तो जेई की आप तैयारी कर रहे हैं अनिकेत, तो कैसे करते तैयारी आप? इसके लिए किसी शहर में रुके हुए हैं, वहां जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, या कैसे आपकी पढ़ाई हो पा रही है?
1: नहीं नहीं, मैं शहर में नहीं रुका हूँ, मैं घर से ही ऑनलाइन बैच लेकर पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, आप मोबाइल या किसी तरीके?
1: जी हाँ जी।
0: अच्छा, अब जो हमारा मेन सवाल था वो ये है कि अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि शिक्षा से जो ग्रामीण भारत है वो किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से उभर रहा है, किस तरह से उसका विकास हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शिक्षा से अब ग्रामीण भारत भी बहुत ही ज्यादा बदल रहा है। जैसे कि पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ना ज्यादा अलाउ नहीं था, लेकिन अब ये सोच सभी की बदल रही है।
0: अच्छा अनिकेत, ये बताइए कि जैसे आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो युवा हैं, शिक्षा की वजह से उनके अंदर आप क्या बदलाव देखते हैं, क्या परिवर्तन देखते हैं, कि वो शिक्षा के दम पर क्या अपने ही क्षेत्र में रहकर अच्छा रोजगार कर पा रहे हैं, अच्छी कमाई कर पा रहे हैं, उनको शहर नहीं जाना पड़ रहा है, या आप क्या महसूस करते हैं?
1: जी हाँ बिल्कुल, आजकल के ज़माने में स्वरोजगार भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत अच्छे से स्वरोजगार चला पा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरक्की हो रही है।
0: धन्यवाद अनिकेत, थैंक यू सो मच।
2: मेरा नाम शुभम प्रताप सिंह है और मैं स्टडी हॉल विद्यास्थली में स्पोर्ट्स टीचर हूँ। जब मैंने खेलना शुरू किया तो शुरुआत में तो घर में महाभारत छिड़ गई थी, क्योंकि हम सबके यहाँ तो सीधा नियम ही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जब मैं स्कूल के बाद भी दिन भर धूप में क्रिकेट का बल्ला लेकर इधर उधर घूमता रहता था और खेलता रहता था, तो मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि ये लड़का तो हाथ से ही निकल गया, जिंदगी भर अब बस मैदान की मिट्टी ही छानेगा। लेकिन मेरे स्कूल के टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया, फिर मैंने ट्रेनिंग ली, आज मैं उसी स्टडी हॉल विद्यास्थली में स्पोर्ट्स टीचर हूँ। और सबसे बड़ा बदलाव तो तब आया जब पिछले कुछ सालों में हमारी कुछ स्कूल के बच्चे नेशनल लेवल पर खेल कर आने लगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बालिकाएं उसमें सबसे आगे रहती थी और नेशनल लेवल पर खेल कर आने लगी, जो कि ग्रामीण स्तर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब नज़ारा ये है कि जो पेरेंट्स पहले बच्चों को खेलने पर पीटते थे, डांटते थे, वो अब सुबह सुबह आकर मेरे पास कहते हैं कि शुभम सर, ज़रा मेरे बच्चे पर भी ध्यान दे दीजिए। तो इन सबसे यह पता चलता है कि अब खेल में बर्बादी नहीं है, बल्कि सम्मान का रास्ता बन चुका है हमारा खेल। हर बात की एक बात तो ये है कि जो शिक्षा है वो ग्रामीण अंचल में एक नहीं, बहुत सारे जीवन बदलने का कार्य कर रही है।
0: दोस्तों, इस युवा छात्र की आवाज में सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि उस नए ग्रामीण भारत की तस्वीर है जो शिक्षा के सहारे आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इस बदलाव के पीछे माता पिता की सोच में आया परिवर्तन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम है भैया आपका?
3: अवधेश कुमार भैया हमारा नाम है।
0: क्या करते हैं आप?
3: भैया हम पेंटर हैं।
0: कहाँ गाँव कहाँ पड़ता है आपका?
3: भैया बक्सी तालाब के पास है, चंडिका देवी मंदिर पड़ते हैं वही।
0: अवधेश जी, ये बताइए कि आज हम शिक्षा से उभरते ग्रामीण भारत की बात कर रहे हैं, तो आपके नज़रिए में, आपके हिसाब से जो हमारा ग्रामीण भारत है, जिसे हम जो है भारत की आत्मा भी कहते हैं गांवों को, तो गांवों में आप शिक्षा से किस तरह का विकास देख रहे हैं?
3: भैया आज जौन शिक्षा के अभाव पहले रहा, आज से 20-30 साल पहले, वो अब बहुत स्तर तक कम हो गया है, क्योंकि जब से ये प्रधानमंत्री जी द्वारा डिजिटल भारत का किया गया है, तो वैसे शिक्षा व्यवस्था थोड़ा अच्छी हुई है कि गांव-गांव तक जो बच्चे शहर जाके नहीं पढ़ पावत रहे, वही अब गांव में फोन से या आसपास के कोचिंग सेंटर जाके पढ़ लेते हैं। अच्छे स्कूलन में पहले वो व्यवस्था नहीं रही जो आज है, तो पहले से तो बहुत सुविधा बढ़ी है भैया।
0: अच्छा, तो जब शिक्षा का स्तर बदलता है या बढ़ता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, गांव हो या शहर हो, तो लोगों में क्या क्या परिवर्तन आप देखते हैं?
3: भैया जैसे शिक्षा का स्तर जो बढ़ती है, गांव स्तर में हम रहित तो ज्यादा हमको गांव के बारे में पता है, शहर में

तो आदमी का सब पढ़े लिखे रहा थी। अब हुआ के बारे में हम उतना जानकारी नहीं है, लेकिन गांव में ये है कि देखी थे जौन पढ़े घर वाले हैं या जेके घर में ज़्यादा लोग पढ़े हैं, तो गांव में कौन समस्या हो पहले कहीं है भैया की चलो वह सही बताई है का करे चाहिए का न करे चाहिए। तो पहले से तो बहुत समस्याओं का समाधान हुआ है भैया, और जैसा कि आजकल देखा जाए कि अब हर बच्चा मतलब पढ़ के आगे बढ़ना चाहता, वो मजदूरी नहीं करना चाहता। गांव की स्थिति जो है भैया, हम सब देख रहे हैं कि यहाँ जोन हम सब काट लाए 30

0: आपका जीवन हो सकता था?
1: भैया बिल्कुल महसूस होते हैं कभो कभो जब लोगन के देखी थे आगे बढ़े हैं, जैसे हम हूँ कबो लखनऊ जाते है काम करे तो हुआ देखी थे जोन मतलब हम तो पेंटिंग करे जाए पेंटर के काम करे लेकिन हुआ जोन डिजाइन बनी है तो एक भैया बड़े साहब आई हैं तो ये बताई हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो वैसे नहीं वैसे, तो उत्सुकता वह समय लागत कि हम पढ़ ले हो तो शायद आज यहाँ खड़े हो, लेकिन समय के दोष और घर की चीजें विपरीत परिस्थिति रहे तो हम नहीं पढ़ पाए, उसका कोनो हमको दोष नहीं, लेकिन अपने लड़कन बच्चन के भैया हम जौन स्थित में हम हैं एमा तो नहीं रखब ऐसे अच्छे करब कि जौन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और जौन हम समस्या झेल रहे वही आगे न झेलें।
0: अच्छा एक सवाल अवधेश जी आपसे और पूछेंगे कि इस शिक्षा के बदलते स्तर की वजह से महिलाओं के उत्थान में या महिलाओं की तरक्की में कितना योगदान आप देखते हैं?
1: भैया महिलाओं में तो हम बहुत देख रहे हैं कहे कि गांव की जोन बिटिया हैं उन्हों अब स्कूल जाए लगी हैं, पहले तो नए जात रही कि हमका नहीं पढ़ेगा पापा अब नया जाएगा नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो सुविधा स्कूल वाले अब दे रहे हैं तो वहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं खुशी से जाइए स्कूल, जो नई पीढ़ी की औरतें हैं वो पढ़ी लिखी हैं तो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर पा रही, तो इसलिए महिलाओं को पढ़ना बहुत जरूरी क्योंकि हर समय एक आदमी नहीं कामयाब रहेगा तो चलेगा, लेकिन महिलाओं को पढ़ना और महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल अवधेश जी, और जो आपकी सोच में जो परिवर्तन या जो आपके विचार हमारे सामने आ रहे हैं हमारे श्रोताओं के सामने आ रहे हैं वो परिवर्तन साफ तौर पर दिख रहा है और नजर आ रहा है कि शिक्षा अगर व्यक्ति के पास है व्यक्ति शिक्षित है तो उसकी सोच भी हमेशा सकारात्मक रहती है चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया।

0: एक समय था जब बेटियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं माना जाता था। आज वही अभिभावक अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
1: आपका क्या नाम है भैया?
2: राजकुमार नाम है।
1: क्या करते हैं आप?
2: मजदूरी करते हैं।
1: अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? थोड़ा अपने गांव के बारे में बताइए।
2: हमारा गांव है ग्राम बरावन खुर्द, पोस्ट काकोरी, जिला लखनऊ।
1: अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं?
2: मेरे 5 बेटियां हैं।
1: बेटा भी है कोई आपका?
2: नहीं, बेटा नहीं है कोई।
1: अच्छा, तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, क्या उम्र होगी बच्चियों की और अभी वो क्या कर रही हैं?
2: बच्ची की उम्र कम से कम बड़े वाली की 30 साल होगी और 5 बेटियां हैं, सब लगभग लगभग पढ़ रही हैं।
1: अच्छा,
2: 2-3 की शादी भी कर दिया।
1: ये बताइए राजकुमार भैया कि जैसे जो एक पहले की सोच हुआ करती थी कि बेटियों को बहुत ज्यादा पढ़ा करके क्या करना है, तो अब आपको लगता है कि सोच में परिवर्तन हुआ है?
2: जी, बहुत सा हुआ है, होना भी चाहिए क्योंकि बेटियों हो चाहे बेटा बराबर हैं, उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, जैसे जब हम बात ये करते हैं कि शिक्षा से जो हमारा ग्रामीण भारत है, महात्मा गांधी जी ने कहा था ये भारत जो है वो गाँव का देश है, तो जब हम गाँव की बात करते हैं यानी कि भारत की आत्मा की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से कितना विकास हो रहा है आप क्या महसूस कर रहे हैं? एक दौर आपका रहा होगा जब आप बचपन में जब छोटे रहे होंगे तब आपने अपने गांव को देखा होगा और आज आप अपने गांव को देख रहे हैं, तो क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं?
2: बहुत परिवर्तन हुआ। पहले एक प्राइमरी स्कूल था कक्षा 5 तक, वहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं थे, अब तो इतना परिवर्तन हुआ। एक ब्राउन कला, उसमें भी इंटरमीडिएट लोकेशिंग हो गया है, आसपास पड़ोस में भी बहुत सारे स्कूल हो गए, तो बहुत सा परिवर्तन हुआ है।
1: अच्छा, और स्वरोजगार पे चूंकि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपसे हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि और बात करना चाहिए। जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो युवा हों या महिलाएं हों, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा के दम पर लोग स्वरोजगार भी अपना रहे हैं? पहले के समय में अपना काम करने से लोग हिचकते थे कि कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन अब लोग किसी भी काम के बारे में बहुत अच्छे से पहले जांचते हैं, पड़ताल करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं, फिर उस काम को करते हैं और स्वरोजगार कर रहे हैं, तो क्या स्वरोजगार की स्थिति भी मजबूत हो रही है शिक्षा से?
2: जी, बहुत मजबूत हो गई। हमारे गांव में मान लो ट्रेनिंग सेंटर या इसे कोई चीज कोचिंग सेंटर इसे खुले हैं, तो इससे शिक्षा भी बढ़ रही है और रोजगार हर चीज बढ़ रही है।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।

0: दोस्तों, ये सिर्फ एक या दो परिवारों की कहानी नहीं है, ये उस सामाजिक बदलाव की कहानी है जो शिक्षा के माध्यम से गांव-गांव में दिखाई दे रहा है। जब बेटियां पढ़ती हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी सशक्त होती हैं। और इस परिवर्तन के केंद्र में हैं हमारे शिक्षक, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटे हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा वर्मा है और मैं स्टडी हॉल विद्यास्थली की प्रधान अध्यापिका हूँ। यदि हम 20-30 साल पहले के गांव को याद करें तो शिक्षा की स्थिति आज जैसी नहीं थी। स्कूल तो थे, लेकिन संसाधनों की कमी, जागरूकता का अभाव और आर्थिक कठिनाइयों के कारण बहुत से बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया करते थे। विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। शिक्षा ने ग्रामीण भारत में एक नई चेतना जगाई है। अब माता पिता भी समझने लगे हैं कि शिक्षा ही बच्चों के बेहतर भविष्य की कुंजी है। वे अपने बच्चों को, विशेषकर बेटियों को, स्कूल भेजने के लिए पहले से कहीं अधिक जागरूक और प्रतिबद्ध हैं। लड़कियों की शिक्षा में सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जो बेटियां कभी घर की चारदीवारी तक सीमित रहती थी, वे आज शिक्षक, नर्स, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी और उद्यमी बनकर समाज का नेतृत्व भी कर रही हैं। मुझे एक ऐसी छात्रा की याद आती है जो एक साधारण किसान परिवार से थी। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। स्कूल के शिक्षकों और परिवार के सहयोग से उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज वह अपने क्षेत्र में अनेक बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई है। उसकी सफलता केवल उसकी नहीं, बल्कि शिक्षा की शक्ति की सफलता है। शिक्षा ने ग्रामीण भारत को केवल साक्षर नहीं बनाया है, बल्कि आत्मविश्वासी, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाया है। आज का ग्रामीण भारत बड़े सपने देख रहा है और उन्हें पूरा करने का साहस भी रखता है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा की इस रोशनी को हर गांव, हर घर और हर बच्चे तक पहुंचाने का संकल्प लें।
0: दोस्तों, शिक्षा से बदलते ग्रामीण भारत के हमारे इस विषय को समझने के लिए हमने बात की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अमिता शुक्ला से।
2: मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अमिता शुक्ला हमारा केंद्र लेती है। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि शिक्षा से ग्रामीण भारत में क्या क्या परिवर्तन महसूस हुआ है, तो हम इसमें कुछ कम शब्दों में बताना चाहेंगे। शिक्षा ने ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक दोनों ही तस्वीरों को गहराई से बदला है और महिलाओं की स्थिति जो पहले थी उसमें भी काफ़ी हद तक की सुधार हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जैसे कि पहले के लोग बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित होते थे, उनको अपने मतलब स्वास्थ्य के बारे में नॉलेज नहीं होता था, कौन सी चीज़ को कौन से मौसम में कब कैसे क्या चीज़ यूज़ करना है, वो सब धीरे धीरे उनको ज्ञान मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पहले कुछ लोग रूढ़िवादी होते थे, तो आज के टाइम पे जैसे जैसे शिक्षा या मान लीजिए नॉलेज, एक्सपीरियंस लोगों का बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो रूढ़िवादिता है वो भी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है।
0: दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उसके गांव में बसता है और जब गांव शिक्षा से जागता है तो राष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है। किताबों से निकली ये रोशनी अब सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि घरों, परिवारों और पूरे समाज को प्रकाशित कर रही है। शिक्षा सचमुच ग्रामीण भारत के भविष्य को नई दिशा दे रही है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि हर गांव शिक्षित हो, हर बच्चा अपने सपनों को जी सके, मैं अभिषेक शर्मा लेता हूं आपसे विदा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत।

जी हाँ, शिक्षित और सशक्त समाज ही विकास की असली पहचान है। शिक्षा नए अवसरों के द्वार खोलती है और आत्मनिर्भरता की राह दिखाती है। तो अभी आपने सुना परिवर्तन श्रृंखला के अंतर्गत शिक्षा से उभरता ग्रामीण भारत, शिक्षा से जागता गांव, साथी अभिषेक शर्मा के साथ। और आइए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और समय है रोजगार के अवसर और देश दुनिया की प्रगति से जुड़ी हुई कुछ खबरों को आपको बताने का। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी NBEMS, इसमें उपनिदेशक का एक पद, कनिष्ठ प्रोग्रामर का एक पद, कनिष्ठ लेखाकार के 4, आशुलिपिक के 7 और कनिष्ठ सहायक के 39 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। और इसकी जो ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि है वो 29 जून 2026 से शुरू होगी। तो

आप इसकी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लीजिए, natbold.edu.in। इसके साथ ही दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी 1969 पदों के लिए रिक्तियां निकली हैं। अलग अलग पदों पर ये सारी रिक्तियां हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है। प्रक्रिया ऑनलाइन है और विस्तृत जानकारी dssb.delhi.gov.in पर आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई अवसरों की, और अब नज़र डालते हैं प्रगति समाचारों की ओर। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित UPI, जो कि डिजिटल भुगतान समाधान उपलब्ध कराने की भारत की क्षमता को दर्शाती है, ऐसे में अब इसे सिंगापुर, संयुक्त अमीरात, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस सहित अब फ्रांस भी इसे अपनाने जा रहा है। ये पहल भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए Tier 2 शहरों पर फोकस कर रही है। सरकार अपने प्रयासों से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी को GCC हब बनाने की तैयारी कर रही है। GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की विदेशी शाखाएं हैं जो दूसरे देशों में कारोबारी विस्तार को संभालती हैं। तो अपनी इन्हीं प्रगति समाचारों के साथ आज के नई उड़ान कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। अनुमति दीजिए अमिता को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं सुनिए। थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ से श्रीमती रेखा ने सूचित किया है कि शुभम, जिनकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, दिनांक 9 मई 2026 से कहीं लापता हैं। शुभम का रंग सांवला, शरीर की बनावट गहरी और चेहरा लंबा है। गुमशुदगी के वक्त शुभम ने काले रंग की चेकदार शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें, प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ। श्रीमती किरण कनौजिया ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री मानसी कनौजिया 22 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 17 वर्ष, कद 4 फीट 8 इंच और रंग गोरा, चेहरा अंडाकार है। लापता होने वाले दिन इन्होंने हरे रंग का सलवार सूट और पैंट में काले रंग, पैरों में काले रंग का जूता पहना हुआ था। इनके माथे के बाईं ओर गहरी चोट का निशान है। जिस किसी को भी मानसी के संबंध में कोई सूचना मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें, प्रभारी निरीक्षक थाना शहादतगंज जनपद लखनऊ।

तनु सिंह के लापता होने के संबंध में इनके पिता श्री विजय ने सूचित किया है कि इनकी पुत्री तनु सिंह, जिनकी उम्र लगभग 15 वर्ष है और कद 5 फीट है, दिनांक 10 मई 2026 से कहीं लापता हैं। तनु का रंग सांवला, चेहरा लंबा है। गुमशुदा होने वाले दिन इन्होंने लाल रंग की टी शर्ट और काले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। तनु के बारे में किसी को भी कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ। गाजीपुर गांव के निवासी भोलानाथ ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री मुस्कान, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, 8 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। मुस्कान का कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल और शरीर की बनावट इकहरी है।

0: लापता होने वाले दिन इन्होंने क्रीम रंग का सूट, काला दुपट्टा और हरे रंग की चप्पल पहनी हुई थी। मुस्कान के संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, प्रभारी निरीक्षक थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुई।
1: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, एमडी मेडिसिन, वरिष्ठ फिजिशियन, शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ। बहुत से लोग एलर्जी को छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस न ले पाने का चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही हैं तो इन्हें नजरअंदाज न करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और समय पर सही इलाज कराएं।
1: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्य वार्ताः। गृहमंत्री अमित शाहः मादक द्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् मादक द्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रिय सुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति। अयोध्यायाः राम मंदिर दान राशि स्तेय प्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः। पैक सिलिका संधौ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडावार्तासु, यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसंघर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः युवभ्यः मातृभ्यः अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीय सभाम् अभिसंबोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
3: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
2: श्री शाह अवोचत यत् चतुरोत्तरद्विसहस्रतः चतुर्दशाधिकद्विसहस्रपर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राममितं संश्लेषितमादकद्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्य अपेक्षया 14 लक्ष किलोग्राम मितं संश्लेषित मादक द्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्य अपेक्षया 14 लक्ष किलोग्राम मितं संश्लेषित मादक द्रव्याणि गृहीतवन्तः।

0: गृहीतानि संश्लेषित मादक द्रव्याणि 8.11 मिलियन किलोग्राम मितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादक द्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानं अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अंकैः ज्ञायते। मादकद्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स् कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादकद्रव्याणां अपराधसम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदानप्रदानार्थम् अनेकानि ऑनलाइन पटलानि विकसितानि सन्ति।
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानं जनसहभागित्वेन चालितं जनांदोलनं जातम्। मादक द्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्य मंत्रिणः बीएल वर्मणः लेखं विनिमय कुर्वन् श्री मोदी एतत् अवोचत्। उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दान राशि स्तेय प्रकरणे एफआईआर इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमंत्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पंजीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च स्तेय संबंधिनां आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमंत्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य एसआईटी दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिंगटन नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखर सम्मेलने भारतेन सह अन्यैः चतुस्त्रिंशत् देशैः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिक विषयानाम् अमेरिका उपसचिवः जैक भेलबर्गः अवोचत् यत् एआई अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागी देशाः एआई युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामक दृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेलबर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयस्य सचिवेन एस कृष्णन महोदयेन अथ च भारतीय उद्योग क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम पूर्ण श्रद्धया गांभीर्येण च आचर्यते। अयम् दिवसः पैगंबर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य वीरगतिं संस्मरति। हजरत इमाम हुसैनः कर्बला युद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिम् अयच्छत्। अस्मिन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागं संस्मृतवान्। सामाजिक अंतर्जालीय माध्यमेन प्रेषिते संदेशे तेनोदीरितं यत् हजरत इमाम हुसैनस्य जीवनं सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढ

0: अधिकतया स्थातुम् अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयं यत् राष्ट्रिय राजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला, महरौली इत्यादिषु विभिन्न प्रमुख स्थानेषु मोहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य मासस्य 24-25 दिनांकयोः दक्षिण कोरिया देशस्य आधिकारिक यात्रां विहितवान्। स्वयात्रावधौ डॉ जयशंकरः द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं दक्षिण कोरियायाः विदेश मंत्रिणा चो ह्यून इत्यनेन सह विस्तृतां उच्चस्तरीय चर्चां विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम अनेक प्रमुखाणां क्षेत्राणां सहयोगस्य समीक्षा कृता, यत्र व्यापार निवेशौ, वित्तीय सहयोगः, रक्षा सुरक्षा, प्रविधयः, नवाचाराः, संस्कृतिः, शिक्षा तथा च परस्पर जनसंपर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीय वैश्विक परिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतं तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु सहकार्यं वर्धयितुम् उपायानां विषये मन्त्रणा कृता। विदेश मन्त्रालयानुसारं द्वाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारत दक्षिण कोरिया सम्बन्धेषु नूतन गतिशीलतायाः स्वागतं कृतम्। सहैव भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक सन्धिम् इतोपि अग्रे नेतुम् अविरतं सम्पर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ टियेन चेन इत्येतं 1:17:17:24 अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 6:30। इसी के साथ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: सौरभ भैया।
0: हाँ हिमांशु भैया।
1: सौरभ भैया देखो, अपने सबके गांव राव में रह के ही बहुत तरीके के रोजी रोजगार कीन जा सकत है, बाहर जाए खातिर कोनो जरूरत नहीं पड़ता है।
0: बिल्कुल भैया, बाहर देखो कत्ता प्रदूषण होगा है, कत्ती भीड़ भाड़ होगी है शहरन में। हाँ, यह बदनी पलट पलट गाँव में आवत है।
1: बिल्कुल, और जरूरी है भाई, जब अपने गाँव राव में रोजी रोजगार मिल जाए, वहाँ पर उन्हें काम धंधा करे का मिल जाए, तो कहा करे का बाहर जावा जाए भला, अपन घर परिवार छोड़ के।
0: सही कह रहे हो। इके एक बात और है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यहाँ जो है अपने गांव में यहाँ रह के हम लोग रोजगार के सकित है, इमाम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: बिल्कुल, प्रधानमंत्री के जो यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका PMEGP के नाम से भी जाना जाता है, यह पर जो है आवेदक का सब्सिडी भी मिल जाता है और बैंक से आसानी से लोन भी मिल जाता है, वही का इस्तेमाल करके वही का लेके अपन रोजी रोजगार शुरू कर सकत हैं।
0: बिल्कुल, अपन रोजी रोजगार शुरू कर सकत हैं। और जो है जो अपने विशेष भर क्या भाई बहन है उनका जो है ज़्यादातर सब्सिडी मिल जाते हैं, और जो अपन सामान्य भाई बहन है उनको ठीक ठाक सब्सिडी सरकार प्राप्त करावत है। और इसमें जो है कम से कम 10% या 5% पैसा अपने पास से लगाओ पड़ते हैं, वह जरूरी हुआ है तीमा अपन मन लाग रहा है काम।
1: बिल्कुल भाई, अपन जब रुपया पैसा लाग रहा था तो अपने काम धाम में मन लागत है, और काम धाम में यही होता है कि भाई कतने ज्यादा से ज्यादा इसमें फायदा हो सके, मुनाफा हो सके, और ये क्या आगे बढ़ावा जा सके।
0: बिल्कुल भैया, यह सारी प्रक्रिया जो है जी का आजकल डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन हो जाते हैं, तो इसमें कहूँ फालतू में दौड़े भागे नहीं पड़ते, किराया भाड़ा नहीं लागत है, और अपन जो है कहूँ परेशान नहीं होते।
1: बिल्कुल, सरकारी जो पोर्टल होते वहीं पे जाके ऑनलाइन तरीके से अपन आवेदन किया जा सकता है, आगे प्रक्रिया आगे बहुत आसान हो जाता है।
0: बिल्कुल, तो जरूर अपने पंच भाई का लाभ उठावें, और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभ उठाए गए हैं, अपने रोजगार का सृजन करें, आत्मनिर्भर बने, और जो है अपने गांव की तरक्की में अपन योगदान दें।
1: एकदम भैया, बिल्कुल सही को। देखो भैया, इस समय जो है गर्मी चल रही है, बहुत जबरदस्त गर्मी है, तो ये हमारे कहा है कि अगर जो बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हुए तो घर से बाहर का ना निकला जाए दोपहर उपहर, सवेरे संझे में अपन काम निपटा लें जाए।
0: बिल्कुल, अपने ना निकला जाए, अगर निकला जाए तो भैया गमछा वमछा डाल लो, साथ में पुण्य पानी की बोतल ले लो। आज देखो हम पानी बोतल ला रहे हैं तो दूसरे जने से मांग मांग पी रहे हैं।

0: बिल्कुल हाँ,
1: तनिक ध्यान नहीं रहा, नहीं खरीद ले हुई, तो जाहिर सी बात है कि जो है अपन पानी की बोतल एक साथ में लेकर चलो
0: एकदम भैया,
1: ताकि जो है गर्मी से बचे रहो, स्वस्थ रहो
0: और शरीर में पानी की पूर्ति बराबर बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया देखो अपनी बैठकी में एक ठू जो है भेंट वार्ता लेके आवा गया है, ग्रामीण आजीविका मिशन और जन भागीदारी। वार्ताकार हैं जनमेजय शुक्ल भैया और इनसे बात कही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आप सुन लेंगे
1: भैया। बिल्कुल भैया, सुना जाए।
2: नमस्कार भाइयों बहनों, गांव में रोजी रोजगार और आजीविका के अवसर कैसे मिले और उसमें जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से उनमें जन भागीदारी कैसे बढ़े, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं संयुक्त आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश जनमेजय शुक्ला साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्ला साहब ये बताएं, गांव में रह करके आजीविका मिल जाए इसके लिए क्या करें ग्रामीण भाई?
3: जी राय साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम बात करें तो एक सबसे बड़ी चुनौती जो आती है कि गांव में ही हम उनके काम के अवसर दे सकें। अब काम के अवसर कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं इसके लिए देखने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर आबादी हमारी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, छोटे सीमांत कृषक हैं या अकृषक हैं, तो उनके लिए आजीविका एक बड़ा संकट के रूप में सामने आती है। तो ये ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं समय समय पर चलाई हैं जिनके बड़े सफल परिणाम निकल के आए हैं। आप सब जानते हैं वर्ष 2005 से शुरू हुई थी मनरेगा योजना, जिसको अब जीवी राम जी कहा जा रहा है
2: जी।
3: और जो 1 जुलाई से फिर से नए कलेवर में शुरू होगी। और इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो महिलाओं के समूह के माध्यम से आजीविका संवर्धन काम करती है। इसके अलावा ग्राम विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग, खादी ग्राम उद्योग, तमाम ऐसे विभागों के तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं, जिससे कि हमारा जो मुख्य समस्या है जब लोगों को वहां पर आजीविका के साधन नहीं होते हैं, खेती पर निर्भरता कम होती जा रही है जिससे कि माइग्रेशन बढ़ता है, लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ जाते हैं और शहरी नगरीकरण की जो समस्याएं हैं उनसे जूझते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो योजनाएं गांव में ही आपको अपनी आजीविका मिल जाए, अपने घर परिवार के बीच में रहें और अच्छी आमदनी आप गांव में ही उसके अवसर मिल सकें, इसके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उस पर ही आज हम आपको थोड़ा सा भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा।
2: शुक्ला साहब, विस्तार से जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर चर्चा करें, उसके पहले गांव में रह करके कौन कौन से आजीविका के स्रोत हो सकते हैं?
3: पहले हम थोड़ा सा इस पर ध्यान बताना चाहेंगे। जैसे आप देखते होंगे अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत लोग बहुत इस बात पर चर्चा होती रही थी कि साहब पढ़ाई लिखाई के जितना काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन बढ़ गई है लेकिन उसके अनुसार अवसर नहीं मिल पा रहे हैं या बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। तो बेरोजगारी दर के बारे में अगर भारत के सापेक्ष अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप पाएंगे अगर भारत में जो नवीनतम आंकड़े हैं, अगर आंकड़ों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, भारत में ये लगभग 5% के आसपास बेरोजगारी दर दिखती है, तो उत्तर प्रदेश में ये 2.5 से 3, 3.5% के आसपास। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जो विशेष जो कठिनाई है वो कठिनाई है कि चूंकि ये गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ कृषि प्रधान काम ज़्यादा है, इसलिए नॉन फार्म सेक्टर में यानी कृषि क्षेत्र के अलावा जो गैर कृषि क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं उन पर अगर हम बात करें तो उसके जो अवसर हैं उनमें ज़्यादा संसाधन मिल सकते हैं और लोगों को ज़्यादा लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता है। इसी को ध्यान रखते हुए जो वर्तमान सरकार है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन सबका जोर इस बात पर है कि नॉन फार्म सेक्टर में कैसे हम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को स्थापित कर सकें, ग्रामीण आजीविका को बढ़ा सकें, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकें। आपने देखा होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ये छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप पर बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंक का सारा काम, आपका पैसा निकालना जमा करना, ये सारा काम बिजली सखी के माध्यम से हो जा रहा है, बिजली का बिल कलेक्शन विद्युत सखी के माध्यम से हो जा रहा है, स्वच्छता सखी के माध्यम से गाँव गाँव में सफाई के अभियान को जितना कूड़ा निस्तारण वगैरह ये सब में महिलाएं आगे बढ़ के काम कर रही है,
2: और ड्रोन दीदी के माध्यम से
3: ड्रोन दीदी ड्रोन उड़ा रही है और इतना बढ़िया तरीके से उसका लेट लॉन्ग सेट करके कितने एरिया में कौन कौन सी दवाई पड़नी है, कितनी पड़नी है, किस मात्रा पड़नी है, इसका पूरा ज्ञान उनको हो गया है। आज सीएम युवा उद्यमी योजना है, इससे आपको 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज का मिल जा रहा है। तो इसमें अवसर निकल के आ रहे हैं, वो अवसर ये निकल के आ रहे हैं छोटे छोटे केंद्रों में, अगर गाँव में ग्रोथ सेंटर्स बनेंगे, गाँव में आजीविका साधन बनेंगे, इसलिए जितनी भी चाहे ट्रेनिंग की जरूरत हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, चाहे जिस चीज़ की जरूरत हो, वो सारी चीज़ें सरकार मुहैया करने तैयार हूँ। बस जन भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को आगे आने की जरूरत है। आप जानते ही होंगे हमने अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 9.5 लाख

0: समूह के माध्यम से करीब 1 करोड़ दीदियों को स्वयं सहायता समूह जोड़ा हुआ है, जिसको आगे चल के हम लगभग 3 करोड़ दीदियों को समूह में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और 1 लाख महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का आगामी वर्षों में लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें से 18.5 लाख दीदियाँ अभी से ही लखपति दीदी हैं, यानी उनकी परिवार की वार्षिक आय अभी 1 लाख से अधिक है और ऐसी दीदियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है, आमदनी गांव में रहकर ही कर रही हैं। आप कल्पना करिए, एक बीटेक पास बच्चा वो बंगलौर दिल्ली जा करके जो शुरुआत में सैलरी मिल रही है उतना आमदनी वो दीदी अपने गांव में काम करके अपने आजीविका का अवसर पैदा कर ले रही है। तो इसमें बस जरूरत यह है जन भागीदारी बढ़ाई जाए, लोग इसमें समझें कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएं सरकार आपके साथ आगे आएगी।
1: शुक्ला साहब, जो नई योजना है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, इसके माध्यम से ग्रामीण आजीविका के कौन कौन से अवसर हो सकते हैं?
0: देखिए जी राम जी, आप जानते हैं कि ये मनरेगा का नया परिवर्तित रूप है। बस मनरेगा में जो भी परिवार कार्य का इच्छुक होगा उसको जॉब कार्ड बना के काम दिया जाएगा। जी राम जी में इसको मनरेगा और आजीविका को साथ में जोड़ के इन कामों को प्राथमिकता दी जानी, जिससे कि आजीविका जैसे वर्कशीट बनाना है समूह को, माली वर्कशीट बना के देना है तो वर्कशीट जी राम जी में आसानी से बन जाएगा। ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं कि जिससे कि आपको रोजगार के अवसर बढ़े। और एक और चीज़ है कि जब लीन सीजन, खासकर जिस समय कृषि क्षेत्र होता है, जब मजदूर, मनरेगा की सफलता का एक पैमाना यह था कि गांव में खेती किसानी समय में लोगों को मजदूर नहीं मिलते थे, तो जी राम जी में इस बात को ध्यान रख करके किया गया कि भाई अब कम से कम जो बुआई का सीजन होता है उसको लीन सीजन मान करके उस समय ये जी राम जी के मजदूरों से उसमें
1: यानी बुआई और कटाई के समय जब खेती का काम अधिक है
0: तब उस समय उनको फ्री कर दिया जाए और बाकी समय इनका
1: रोजगार के अवसर दिए जाए,
0: रोजगार के अवसर दिए जाए।
1: शुक्ला साहब, ग्रामीण आजीविका की जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार द्वारा संचालित हैं, उनमें जन भागीदारी बढ़े इसके लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे?
0: देखिए जन भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सशक्त साधन ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत और जितने हमारे विभाग हैं इनके बीच में, जैसे हमारी एक ग्राम पंचायत विकास योजना GPDV बनती है, जब ग्राम पंचायत की खुली बैठक हो, जब ग्राम के विकास की योजनाएं बने, इसमें जो रोजगार परक योजनाएं हों इनको इसमें GPDV में शामिल किया जाए। और GPDV में सभी चीजें सब शामिल तभी हो पाती हैं जब लोगों की आवश्यकताओं, लोग वहां पर उपस्थित हों, अपनी आवश्यकताएं बताएं, हम ये काम करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए ये सुविधाएं बना के दिया जाए। तो सरकार के पास इतने फंड्स हैं, ग्राम पंचायत के इतने फंड्स हैं, वो निश्चित रूप से उसको बना के देंगे और कार्ययोजना में उसको शामिल करना चाहिए। तो जितना आप खुली बैठकों में भाग लेंगे, ग्राम की गतिविधियों में भाग लेंगे, ब्लॉक में, जिले में जिस प्रकार के आयोजन है, जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आप जिस भी चीज का ट्रेनिंग लेना चाहें चाहे, तो ट्रेनिंग सेंटर के लोग आपके दरवाजे चल के आएंगे, आपके गाँव में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी या आपको ट्रेनिंग सेंटर में बुला करके ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी किसी प्रकार की चाहे स्किल मिशन के माध्यम ट्रेनिंग दिया जाए, बहुत प्रकार की ट्रेनिंग स्किल मिशन के द्वारा दी जा रही है। ऐसे पंचायत राज विभाग द्वारा बहुत ट्रेड्स में ट्रेनिंग दिया जाए, हमारे पास RCT सेंटर्स हैं, बैंक के RCT सेंटर, बैंक और ग्राम विकास विभाग मिलकर बनाता है RCT सेंटर्स, वहां पर तमाम ट्रेडों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे बहुत चीजें हैं और ऐसे सारे लोगों की संकलित सूची विकासखंड के माध्यम से आए और उनको ट्रेनिंग दिला करके उनको रोजगार स्थापित कराया जा सकता है।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहेंगे ग्रामीण भाइयों बहनों का ग्रामीण आजीविका और जन भागीदारी के बारे में? शुक्ला साहब,
0: इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, जब परिवार विकसित होगा तो गांव विकसित होगा, गांव विकसित होगा हमारा समाज विकसित होगा, राज्य विकसित होगा, देश विकसित होगा। गांव के विकास से ही राज्य और देश का विकास जुड़ा हुआ होता है। गांव की जो भी हमारी आधारभूत संरचना है, गांव की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी आप बढ़िया सुरक्षित रखें, उनका इस्तेमाल करें, पंचायत भवन का इस्तेमाल करें, मीटिंगों में जाएं, बढ़ चढ़ के भाग लें और जो भी आपकी आवश्यकता है उनको आप उचित माध्यम से संबंधित विभागों तक और अधिकारियों तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी और आपको आपकी आजीविका को बढ़ाने में सरकार और विभाग आगे बढ़कर काम करेंगे।
1: जन्मेजय शुक्ला साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और ग्रामीण आजीविका के कौन कौन से अवसर हैं और सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं और उनमें जन भागीदारी कैसे बढ़े, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिमांशु भैया।
3: हाँ सौरभ भैया।
2: देखो ग्रामीण आजीविका मिशन और जन भागीदारी इस विषय पर कितने अच्छे से डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया और जन्मेजय शुक्ल भैया जो उन्हें आपस में सवाल जो आपके हैं और हम लोगों के यहाँ जानकारी उपलब्ध करें, तो के लिए इन दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद
3: भैया।
2: अब जो है समय हो रहा है, देखो कुछ गीत गौनाई क्या और इस समय जो है थोड़ा एक भजन सुन लीजिए, लोक भजन।
3: हाँ बिल्कुल भैया, सुनवा दीजिए।
2: तो अपने पंच भाई के एक लोक भजन

0: Caesar Resort, Behraich.
1: District Health Society, National Rural Health Mission, Balia.
0: Tulsipur Sugar Company Limited, Balrampur.
1: Suyash Paper Mills, Basti.
0: UPSRTC, Devariya.
1: Chinmay Gramoday Shishu Vidya Mandir Inter College, Gonda.
0: Karamchari Bhavishya Nidhi Sangathan, Kshetriya Karyalay, Gorakhpur.
1: Triveni Engineering Industries Limited, Kushinagar.
0: District Health Society, National Rural Health Mission, Maharajganj.
1: District Health Society, National Rural Health Mission, Sant Kabir Nagar.
0: Basic Shiksha Vibhag, Shravasti.
1: Nagar Palika Parishad, Siddharth Nagar.
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सौरभ भैया।
6: हाँ हिमांशु भैया।
5: देखो भैया, देखो अपन सब खेती पाती के जो इस समय समय चल रहा है और पूरी तैयारी के साथ में अगली फसल के लिए हम सब तैयार हैं।
6: बिल्कुल, तो इसके लिए जरूरी है कि जो हम बुआई करे उसके लिए उन्नत और सही बीज का चुनाव करें।
5: बिल्कुल भैया, सही बीज हुए तो अच्छी फसल हुए और अच्छी पैदावार हुए।
6: बिल्कुल,
5: और यही के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सबका खेती पाती से संबंधित समय समय पर जानकारी मिला करे।
6: बिल्कुल,
5: वह जानकारी मिला था भैया विशेषज्ञ से।
6: विशेषज्ञ से सही बात कहे हो, सीधे विशेषज्ञ से जानकारी मिल जाए, इसे बढ़िया का हो सकता है।
5: बिल्कुल भैया, तो देखो हमारे भैया जो है रियाज अहमद भैया संकलन के हिन है एक रेडियो रिपोर्ट धरती बचाओ अभियान के अंतर्गत आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित किसान संगोष्ठी व चौपाल पर आधारित रेडियो रिपोर्ट है
6: जो कि स्थल ध्वनिंकन है और उसका वाचन किन है नीना सोनकर बहिनी, तो स्थल ध्वनिंकन के यहाँ सुना जाए।
5: बिल्कुल भैया,
7: अंधाधुंध रसायनों के इस्तेमाल से खराब हो रही मिट्टी को बचाने और किसानों को जागरूक करने के लिए खेत बचाओ अभियान के तहत कल 25 जून को आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आचार्य श्याम बिहारी गुप्त, महानिदेशक ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट, प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र कुमार सहित तमाम कृषि वैज्ञानिक अधिकारी, प्रगतिशील किसान तथा कृषि उद्यमी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल लगाकर सीधे किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनकर यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,
8: उत्तर प्रदेश के कर्मठ जमीन से जुड़े आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह जी, सचिव डेयर और महानिदेशक हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के ML जाट जी, गतिशील कुलपति ज्ञानेंद्र प्रताप जी, DDG राजवीर सिंह जी, पंकज जी, राघवेंद्र सिंह जी, KK सिंह जी, श्याम बिहारी जी, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रामलला के चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। और तुलसी बाबा के वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं, राम राज्य। और राम राज्य कहे तो क्या, तो उन्होंने कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, और हमारा आदर्श राम राज्य। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश में और उनके मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सचमुच में राम राज लाना चाहते हैं। और राम राज कैसे आएगा, उसका एक मुख्य आधार है खेती और किसान। दुनिया की हर चीज फैक्ट्रियों में बन सकती है, लेकिन भोजन फैक्ट्रियों में नहीं बन सकता, अन्न फैक्ट्रियों में नहीं बन सकता, फल और सब्जी फैक्ट्रियों में नहीं बन सकती। आज के दिन ऐतिहासिक की बात कर रहे थे शाही जी। हाँ, ऐतिहासिक है, इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज रोड मैप उत्तर प्रदेश का हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बनाया और हमने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को सौंपा। रोड मैप का मतलब है खेती में क्या क्या करना,

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

0: वैज्ञानिक रूप से।
1: बढ़ते हुए तापमान में, सूखे के बढ़ते दिन, कम होता पानी, जलवायु परिवर्तन, तो आज अभी समय नहीं कि उस पर मैं विस्तार से बोलूं, लेकिन आदरणीय शाही जी, मैं आपसे ये निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जब कृषि रोड मैप पे आप ढंग से यहाँ चर्चा कर लो, तब किसानों के बीच में जारी करने हम आएंगे और तब उसको ढंग से किसानों के बीच में रखेंगे। यहाँ आना भी ऐतिहासिक आचार्य नरेंद्र देव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, और मुझे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सेवा करने का सौभाग्य दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और सचमुच मैं अंतरात्मा से ये कहता हूँ कि किसानों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है, और इसलिए एक एक करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय कृषि की दशा और दिशा कैसे सुधरे। आज खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आए, खाद डालो, कितनी भी डालो, दवाइयाँ छिड़को, पेस्टिसाइड डालो, मैं खाद डालने का विरोध करने नहीं आया, लेकिन मैं ये चेताने आया हूँ कि अगर ऐसे ही हम खाद की मात्रा बढ़ाते गए तो एक दिन ये धरती अन्न पैदा करने से ही इनकार कर देगी, ऊसर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। आप बताओ मेरे किसान बहनों और भाइयों, धरती केवल अपनी है क्या? इसमें आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे, उनका हक नहीं है क्या? चार पीढ़ी के बाद, पांच पीढ़ी के बाद अगर धरती बंजर हो गई, क्या कर लोगे आप? धरती बीमार हो रही है, धरती में पैदा हुआ अन्न फल फूल वो भी बीमार है, और वो खाने वाले आदमी भी बीमार हो रहे हैं। और इसलिए आज विचार करने का समय है, हम कैसे संतुलित खाद का प्रयोग करें। जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करो ना भाई। मेरा आपसे आग्रह है, मिट्टी का परीक्षण करवाएं, और अब टेक्नोलॉजी में ऐसे उपाय आ गए कि उसमें पता चलेगा कौन से तत्व है धरती में, पोटाश कितना है, सल्फर कितना है, बोरान कितना है, आग्नेय कार्बन कितना है, और उससे अंदाज लगेगा कि इस चीज की जरूरत है तो वो डालो ना भाई। और इसलिए खादों का संतुलित उपयोग जरूरी है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से चर्चा हुई मेरी, और उन्होंने जो प्रयोग बताया आप भी देखिएगा, उससे लागत भी घटती है, खाद का पैसा बचता है। नेचा हो और खेत में मिलाओ, पानी दो, मिलाओ, सड़के वही खाद बन जाता है, हरित खाद 25% कम हो जाता है यूरिया की जरूरत।
2: प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने संबोधन में कहा,
3: मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी ने खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कुमारगंज विश्वविद्यालय में आने का निर्णय किया, और जहाँ तक मुझे जानकारी है पहली बार भारत सरकार का कोई कृषि मंत्री इस आचार्य नरदेव कृषि विश्वविद्यालय में पधारा है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हरी खाद के रूप में तो हमारे पूर्व ढांचे का इस्तेमाल करते थे। इस साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 60,000 कुंटल बीज ढांचे का प्रबंध करके और हर जनपद के भीतर उपलब्ध कराया, और इसलिए कराया हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कम हुई है, उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और हम अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में करते चले जा रहे हैं। और इसलिए सरकार ने यह प्रयास किया कि हम आपको ढेंचा बीज उपलब्ध कराएं, बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों के भीतर लगाई है, यहाँ उसको पलट करके 4-5 दिन पहले यहाँ पर पलटी गई, और आज खुद माननीय मंत्री जी ने अपने हाथों से धान लगाई, लाइन सोइंग किया है। लाइन सोइंग करने से भी हमारी फर्टिलाइजर की जो मात्रा होती है वो घट जाती है, हमारे पास उसको यूरिया जब डालते हैं तो लाइन सोइंग में डालने के कारण यूरिया भी कम होती है, साथ साथ में उसकी बढ़त बढ़वार ज्यादा होती है और पैदावार भी उससे हमारी बढ़ती है। तो हमको इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाना, सीधी धान की बुआई के कार्यक्रमों को आगे की ओर चलाया जाना, और इसलिए हम लोगों को इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने खेती को विस्तार दिया जाना है। हमको 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित कृषि कैसे तैयार करनी है, और उस पर हमारे उत्पादन को बढ़ाया जाना, साथ साथ में खेती का विविधीकरण को किया जाना, और जिन खेतों को हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है धान गेहूं गन्ने से, उनकी जगह पर अन्य फसलों को लिया जाना, दलहन और तिलहन के उत्पादन के दृष्टि से प्रयास किया जाना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस समय सभी 75 जनपद मिलाकर के लगभग 1,65,000 कुंटल अनुदान पर बीज हमने उपलब्ध कराए। हमारा देश आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सके कृषि क्षेत्र में विदेशों से हमको फर्टिलाइजर मंगाना, विदेशों से हमको तेल खाने के लिए मंगाना, विदेशों से दाल खाने के लिए मंगाना, उस झंझट से हमारा देश बाहर हो जाएगा और हम स्वाभिमान के साथ दुनिया के भीतर खड़े हो सकेंगे।
2: इससे पूर्व आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

0: कुमारगंज अयोध्या के कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए कहा,
1: तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरा पर देश के महान और यशस्वी समाजवादी नेतृत्व करने वाले आचार्य नरेंद्र देव की कर्मस्थली और उनके नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में देश के अन्नदाता किसानों के लिए आयोजित इस खेत बचाओ अभियान, जिसके लिए हमारे माननीय कृषि मंत्री जी बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। और आपने देखा होगा जो किसान अभी चौपाल में थे, उनसे किस तरह से उनका इंट्रोडक्शन किया, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस चौपाल के माध्यम से जो मार्गदर्शन माननीय कृषि मंत्री जी ने दिया है, उसके लिए हम लोग बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कृषि विकास के दर पे चल रहा है, और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि एक रोड मैप फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फॉर उत्तर प्रदेश के लिए मंथन माननीय कृषि मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आज सुबह किया है, और हमें बड़ी आशा है कि उस रोड मैप के माध्यम से निश्चित ही हम लोग एक विकास की ऐसी स्तर पर पहुँचेंगे जो देश में सबसे अग्रणी रहेगा। माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और सर, मुझे याद नहीं आता है कि इस प्रांगण में कभी केंद्रीय कृषि मंत्री आए होंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस प्रांगण में पधारे, और जिस तरह का लगाव आपने किसानों के साथ दिखाया है वो बहुत ही अनुकरणीय है, और हम सभी लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि इस प्रांगण में आए। मैं खुले हृदय से अपने माननीय महानिदेशक और सचिव डीयर डॉक्टर एम एल जाट साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर राजवीर सिंह जी जो उप महानिदेशक प्रसार हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे विश्वविद्यालय में कुछ समस्याएं हैं, उसके निराकरण में आप लोगों का बहुत ही सतत सहयोग अपेक्षित है। महोदय, ये विश्वविद्यालय करीब 50 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, और जिन परिस्थितियों में इसकी स्थापना हुई थी वो भी हमने देखा था, और आज की स्थिति में जो स्वरूप इस विश्वविद्यालय का है वो भी हम देख रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि अभी हमारे पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, अब शोध में, प्रसार में और किसानों के लिए नए प्रयास करने के लिए विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सर्वोपरि रहे, इसी आशा के साथ आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
0: कार्यक्रम के अंत में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कार्यक्रम में आए सभी आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया।
2: खेत बचाओ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय सम्मानित शिवराज चौहान जी, माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय एमएल जाट जी, श्याम बिहारी गुप्ता जी और कुलपति ज्ञानेंद्र जी, सभी सम्मानित मंच, और मैं माननीय मंत्री जी का जो कि दिल्ली से चल के आए और किसानों के साथ संपर्क और संवाद जो बनाने का उन्होंने काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यहां पर आए हुए किसानों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये थी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत। तो श्रोताओं, ये थी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत विषयक संगोष्ठी की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर नीना सोनकर, संकलन रियाज अहमद एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: तो भैया, ये सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके माध्यम से ने अपने पंच भाई के यहाँ जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनके भी विचार जाने के यहाँ मिले। और अब जो है एक महत्वपूर्ण बात है, किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी है ना, यह सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से एक डिजिटल पहल है, जिसके तहत जो देश के किसान हैं प्रत्येक किसान के यहाँ एक अनूठी फार्मर आईडी दी जा रही है, जिसका एक हिसाब से किसानन के आधार कार्डों कहा जाता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: है ना, आम बोलचाल की भाषा में। हाँ, तो इमा किसान का आधार कार्ड जो है, भूमि का रिकॉर्ड है, खतौनी है और बोई गई फसलन का विवरण के यहाँ एक साथ डिजिटल रूप से जोड़ा जाता है, जिसके आधार पर जैसे फसल बीमा है या कृषि लोन है या कोई भी सरकारी योजना का लाभ है, वो सीधे और पारदर्शी तरीके से अपने पंच भाई के खाते में यहाँ पहुँच जाते हैं। और इसके साथ साथ देखो, एक महत्वपूर्ण बात और है कि आज दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार यहाँ अपन

0: जो भाई बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि उनका सप्ताह भर के कृषि समाचार जाने के हम मिले हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: किसान डायरी के माध्यम से। तो अपने पंच भाई के यहाँ किसान डायरी सुनवा दें जाए, जो कि बीते सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित है।
1: बिल्कुल,
0: जी का आलेख वाचन किन है आनंद अग्निहोत्री भैया, और जी का संपादन किन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो एक सुना जाए और जाने जाए समाचार।
1: बिल्कुल भैया, सुन लीजिए।
2: नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कृषि समाचार। पहले सुनिए सप्ताह की सुर्खियां। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धरती बचाओ अभियान के तहत किसानों से किया संवाद। सूखे की स्थिति में भी पैदावार बढ़ाने वाले बीजों को बढ़ावा। खरीफ सीजन से पहले पीएम किसान निधि की नई किस्त जारी। एमएसपी पर दलहन और तिलहन खरीद को केंद्र की मंजूरी। यूपी के किसानों को मिलेगी हर संभव मदद। उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग में डिजिटल क्रांति। वैज्ञानिक हरा चारा उत्पादन से बढ़ेगी पशुपालकों की आय। फसल उत्पादन बढ़ाने में मददगार हैं ये कृषि यंत्र। एआई ऐप और मृदा परीक्षण से स्मार्ट होगी खेती।

MSP पर दलहन और तिलहन खरीद को केंद्र की मंजूरी। यूपी के किसानों को मिलेगी हर संभव मदद। उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग में डिजिटल क्रांति। वैज्ञानिक हरा चारा उत्पादन से बढ़ेगी पशुपालकों की आय। फसल उत्पादन बढ़ाने में मददगार हैं ये कृषि यंत्र। AI ऐप और मृदा परीक्षण से स्मार्ट होगी खेती। नाफेड करेगा किसानों से सीधी खरीद और सुगर केन कंट्रोल आर्डर 2026 का ड्राफ्ट वापस। कृषि समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में धरती बचाओ अभियान के तहत किसानों से संवाद किया। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती की सेहत सुधारने के बारे में तमाम तरह के सुझाव दिए। किसानों को पूरे वर्ष में कभी न कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस बार भी उसे अल नीनो से जनित हालात का सामना करना होगा। इसके चलते सूखे की स्थिति पैदा होती है। हालांकि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों तैयार हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर किसानों और कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की कोशिश तेज कर दी है। मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने वर्चुअल बैठक कर खरीफ की योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति झेल सकने वाले बीजों के इस्तेमाल को हर जिले में बढ़ावा दिया जाए। केंद्र ने ऐसी ही फसल किस्मों को अपनाने की सलाह दी है जो कम समय में तैयार हो जाती हैं, ताकि बारिश में देरी पर भी फसल चक्र पूरा हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ने राज्य कृषि विभागों के साथ समन्वय करके जिला स्तर तक आकस्मिक कृषि योजनाएं तैयार की हैं, जिससे यदि बारिश देर से हो या कम हो तब भी किसानों का नुकसान न्यूनतम रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को कवर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उड़द, मूंग और अरहर के लिए 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्तावित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरीफ की फसल के पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले स्थित तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 18,880 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर किसानों के खातों में 2,000 की राशि सीधे भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और दलहन तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और मूंगफली की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से हजारों किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा तथा बाजार में कीमतों की अनिश्चितता से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले के तहत सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने जा रहा है। यहां 1,490 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मूंग और उड़द की खरीद की जाएगी। इससे प्रदेश के दलहन उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर अवसर मिलेगा और उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यूपी सरकार किसानों को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए सभी विभागों को पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने तथा किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि मिशन मोड में किसानों को समय पर सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रहे तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। लखनऊ में 23 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और शासन के निर्देशों के अनुरूप विभाग ने प्रदेश की सभी गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के लिए डिजिटल मॉड्यूल

तैयार किया है। इसके संचालन और प्रभावी उपयोग के लिए नामित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। नई व्यवस्था के तहत निरीक्षण एवं परीक्षण की पूरी चेकलिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिससे प्रत्येक ऑडिट की निगरानी रियल टाइम में की जा सकेगी। विभागीय अधिकारी भी प्रगति की समीक्षा ऑनलाइन कर सकेंगे। 20 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक प्रदेश व्यापी विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल पर दर्ज गन्ना क्षेत्रफल संबंधी आंकड़ों का भू राजस्व अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है, जो किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और राजस्व रिकॉर्ड के बीच अंतर की पहचान करने में मदद करेगा। पशुपालन को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में आंध्र कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली एवं हाइफर इंटरनेशनल के सहयोग से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 30 महिला किसानों को वैज्ञानिक हरा चारा उत्पादन, संतुलित पशुपोषण तथा पशुओं के रोग प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि केवल हरा चारा उगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका वैज्ञानिक प्रबंधन, उचित कटाई, भंडारण तथा संतुलित आहार के रूप में उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पशुओं के नियमित टीकाकरण, कृमिनाशक और समय पर स्वास्थ्य जांच पर विशेष जोर दिया गया, ताकि रोगों की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। जब हर क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे में कृषि इससे अछूता रहे यह संभव नहीं। कभी किसान बैलों की मदद से खेत जोतता था, लेकिन अब तकनीकी यंत्र उसके कार्य को न केवल आसान कर रहे हैं, बल्कि फसल उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। किसानों को इन यंत्रों की जानकारी होना आवश्यक है, तभी वह कामयाब हो सकता है। हालांकि किसी भी कृषि यंत्र को खरीदने से पहले किसानों को अपने क्षेत्र की जरूरत, उपलब्ध संसाधन, भूमि की स्थिति और आर्थिक क्षमता का आकलन करना चाहिए, ताकि सही मशीन का चयन किया जा सके। ये यंत्र हैं पलटने वाला हल, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, पडलर और रोटावेटर। इसी तरह बुआई के लिए जो यंत्र तैयार किए गए हैं, वे हैं पशु चालित बीज एवं उर्वरक ड्रिल, ट्रैक्टर चालित बीज एवं उर्वरक ड्रिल, प्लांटर, रिज, फरो तकनीक। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हर यंत्र हर किसान के लिए उपयुक्त नहीं होता। यंत्र खरीदने से पहले भूमि का आकार, फसल का प्रकार, उपलब्ध शक्ति स्रोत और आर्थिक स्थिति का आकलन करना आवश्यक है। सही कृषि यंत्र का चयन खेती की लागत कम करने, समय बचाने और उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब AI का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा है, तब कृषि में इसका उपयोग क्यों नहीं हो सकता। किसानों को टिकाऊ खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और डिजिटल कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से तेलंगाना विकाराबाद जिले के पुडूर गांव में खेत बचाओ अभियान एवं रेंज IIRR मोबाइल ऐप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ICAR भारतीय धान अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर बी शैलजा ने किसानों को AI आधारित रेज ऐप का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि यह ऐप धान की फसलों में रोग, कीट और पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान कर किसानों को त्वरित प्रबंधन सलाह प्रदान करता है। वहीं डॉक्टर डी कृष्णावेणी ने धान की फसल में आने वाली प्रमुख समस्याओं और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन उपायों की विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अत्याधुनिक ई एक्शन पोर्टल नाफेक्स इन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि नाफेक्स इन के माध्यम से कृषि उपज की बिक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और किसानों के अनुकूल बनेगी। इससे किसानों को अपनी उपज का भुगतान सीधे बैंक खाते में मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इस अवसर पर नाफेक्स इन ई एक्शन पोर्टल, दृष्टि ERP प्रणाली और नाफेड कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। इन पहलों का उद्देश्य डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाना, किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना और सहकारी विपणन व्यवस्था को आधुनिक बनाना है।

0: अमित शाह ने बताया कि वर्ष 2014 में नाफेड गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग और पारदर्शी प्रबंधन के कारण आज नाफेड देश के 74 लाख से अधिक किसानों को सेवाएं दे रहा है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के विरोध के बाद सुगर केन कंट्रोल आर्डर 2026 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। प्रस्तावित नियमों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में किसानों ने आपत्ति जताई थी। किसानों का कहना था कि नए प्रावधानों से गन्ने के दाम तय करने की प्रक्रिया और भुगतान व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, खासतौर पर FRP और चीनी मिलों के कार्य क्षेत्र में बदलाव को लेकर चिंता जताई गई थी। विरोध बढ़ने के बाद खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने ड्राफ्ट को फिलहाल वापस लेते हुए कहा है कि सभी हितधारकों से सुझाव लेने के बाद ही संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। तब तक गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के मौजूदा प्रावधान ही लागू रहेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले को गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। किसान डायरी का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: तो हिमांशु भैया,
2: हाँ सौरभ भैया,
1: देखो ये रहा है किसान डायरी जो कि बीते सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित रहा है, जिसका आलेख एवं वाचन किया है आनंद अग्निहोत्री भैया और संपादन किया है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो उम्मीद है अपन पंच भाई जो किसान डायरी सुनी हुई है उनसे संबंधित जो समाचार हुई उनका लिखी हुई है उनका लाभ जरूर उठे।
2: एक खाते दोनों भैया के बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद। अब देखो जो है
2: अपनी बैठके में आप गाँव नहीं सुन लीजिए भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुना जाए। किसानी गीत है जिसका स्वर दिन है रत्नेश द्विवेदी भैया,
2: सुन लीजिए भैया।

0: तो हिमांशु भैया।
1: हाँ सौरभ भैया,
0: आपने पंच बहन के मौसम की जानकारी दे दो।
1: बिल्कुल भैया, जो हमका जानकारी मिली है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 तारीख यानी आज से लेके और 2 जुलाई 2026 तक का जानकारी हमारे पास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 26, 27, 28 का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो आज से लेके यानी 26 तारीख से लेके 2 जुलाई 2026 तक का कहीं कहीं पर बौछार पड़े की संभावना है, बारिश होने की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 29 तारीख से लेके और 2 तारीख तक का संभावना है बारिश होए के।
0: और चेतावनी?
1: चेतावनी भैया कोई विशेष चेतावनी नहीं दिए हैं, समय के अनुसार बारिश के अनुसार किसान भैया अपन अपन काम धाम देखे हैं।
0: ठीक है, तो अपने पंच भाई से ने जो है कल के कार्यक्रम बता दे फटाफट। लोकायतन में सुनिए वार्ता ग्रामीण भारत की विकास यात्रा, जिस पर जानकारी दे हैं प्रेम शंकर अवस्थी भैया। और खेती के सामने यहाँ सुनिए भेंट वार्ता फलदार वृक्षों की सघन बागवानी, जिस पर जानकारी दे हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, और उनसे जानकारी लें डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो यह के साथ अपने पंच भाई से ने आज्ञा लेकर समय हो रहा है, अपने पंच भाई से लीन जाए आज्ञा। जय

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार FIR दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में SIT की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था SIT गठित की गई है, SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल SIT की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। SIT मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन

0: किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा खानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर पीएस

0: पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शामे गरीबा मजलिस उफरामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए, इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है अंग्रेजी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं इंटरव्यू। विषय है यंग माइंड्स रीडिंग साइंस एंड इंटरव्यू विद रिसर्चर देवांशी प्रकाश, इंटरव्यू बाय डॉक्टर शीबा राकेश।
4: From the invisible forces shaping ourselves to the chemical reactions driving life itself, science happens at the absolute extremes. Good evening, friends. Welcome to the English program. I'm your host, Shiba Rakesh. And in today's edition, we are peering through the microscope with a rising star in the scientific community. She is bridging the gap between physics and chemistry to unlock the deepest secrets of human biology. Please welcome biophysics and biochemistry PhD candidate, Devanshi Prakash. Welcome to the studios of Akashvani Lucknow, Devanshi.
5: Thank you so much for calling me. I'm so happy to be here.
4: Let me start by asking you, what is the simplest way to explain your PhD research to, let's say, a 5-year-old?
5: To a 5-year-old, I would say that our body is made up of these building blocks. Like if you want to build a structure out of Legos, the building block would be Legos. So our body is built up of these packages called cells. And these cells need to exchange materials between themselves in order for our body to function. I study how this exchange takes place.
4: Okay. And what first sparked your passion for looking at life through a molecular lens?
5: I have always found biology to be fascinating. Mm-hmm. Ever since I started to read biology textbooks in school, I found it to be the most interesting subject of all. It used to be my favorite. And that is what encouraged me to do a bachelor's and master's in zoology. Mm-hmm. Because I really like animals too. I find them to be really, really cute and really amusing. So when I started to study zoology, I was taught a lot of sub-subjects under it. And I realized a lot of those subjects converge at one point. And mm-hmm. that one point is the molecule, because there is a battery of molecules present in whichever body we are studying, which is very important for its functioning. So I realized that if, in fact, I want to understand mm-hmm. life as is, I need to understand the molecules first.
4: What has been your most exciting eureka moment during your research so far?
5: My eureka moment is actually not related to research per se. Mm-hmm. My eureka moment is about the human capacity to continue to function despite not knowing what is coming, as is the nature of science.

अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे इंटरव्यू। विषय था यंग माइंड्स रीडिंग साइंस एंड इंटरव्यू विद रिसर्चर देवांशी प्रकाश, और इंटरव्यू ले रही थी डॉक्टर शीबा राकेश। इसी के साथ आज का ये अंग्रेजी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

हैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो

0: के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, उसका ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर।
2: 8700001 4242।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:45। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में प्यार किया तो डरना क्या इस फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गीत. आवाज़ें थी कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की. आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाज़ में हीरो नंबर 1 इस फिल्म का गीत.

0: हीरो नंबर वन इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे थे और फिल्म संगीत का कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे दुल्हन हम ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत आवाज़ें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की। श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 8। इसी के साथ प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: भक्ति प्रतिफलित करता है। सत्य दार्शनिक का कवित्व तुलसीदास का उच्चतम है। देवताओं से पूजित भारत की ऋषिगंध के कवियों ने पहचाना। युग की विसंगतियों ने मुठभेड़ करने वाला इतना बड़ा कोई दूसरा कवि उस युग में नहीं दिखता। तुलसी अपने समय के सबसे बड़े आदर्शवादी कवि हैं। कृतियों में तुलसी की मूल दृष्टि सामयिक दर्शन दृष्टि के रूप में उभरी है। गोस्वामी तुलसीदास ने द्वादश ग्रंथों में राम जी के बाद यदि सबसे अधिक किसी की महिमा गाई है तो महान हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी का जीवन सहयोग में स्थित है। बुद्ध को विवेक रूप में स्वीकार हनुमान आंखों से भगवान देखकर अश्रु प्रवाह करते हैं। शरणागति ज्ञान भक्ति और कर्म मंत्रमुग्ध करते हैं। हनुमत कृपा से बाहु पीड़ा जाती रही। तुलसी की कविता वो है जिससे सुर सर सम सम कह हित हुई। सैसव पत्थर हृदय को पिघला देने वाला है। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। अवसर पाते दर्शन के लिए लगन की योग्यता तुलसी ने कराई। अकेले तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन का नया चिंतन सूत्र दिया। भक्ति काल के कवियों का दर्शन करने निहारती है। तुलसी के रहीम का दर्शन चित्रकूट में प्रासंगिक है। जापत विपदा परत है सो आवते ही देश। कामदगिरी मंदाकिनी दार्शनिक है। राष्ट्रीय रामायण मेला चित्रकूट प्रेक्षागृह में तुलसी कवि की चौपाइयाँ दार्शनिक हैं। अयोध्या का इतिहास रचने वाली भूमि चित्रकूट की परिक्रमा का दर्शन है। तुलसी की आत्मीयता रहीम ही दार्शनिक हैं। भक्तिकालीन कवियों को सर्वहारा स्वर उभरे हैं। कबीर सूर और जायसी जन्म से मस्जिद थे। रविदास मीराबाई ने सबसे अधिक स्वर करुणा प्रदान किया। संतत्व का आश्रय अध्यात्म बोध के सहारे मानस भाव का दर्शन बढ़ाया। कुंभन दास ने संतन को कहा सीकरी को नाम दर्शन मिला। अत्यंत विनीत संत भक्त कवि के लिए तुलसी अलग रहे। नाना पुराण निगागम निगागम नाना पुराण निगागम नाना पुराण निगमागम का दर्शन साहित्य मंथन किया। बीजक नानक बाणी हनुमान चालीसा गोरख बाणी राम रख

था स्रोत, ज्ञान कोश बन गया। प्रेम तत्व बड़ी निष्ठा के साथ उभारा, ढाई आखर से जोड़ने का प्रयास। जायसी ने मानुष प्रेम को बैकुंठी बनाया, लीला माधुरी राग, रति ऐश्वर्य, बोध का प्रयोग परीक्षण किया। इसमें लोकमंगल युग में श्रृंगार और बीरस की रचनाओं का दर्शन मिला। स्वामी रामानंद ने बताया, हरि का भजे तो हरि का होए, रसखान मानवता के आदर्श कवि हैं, तुलसी का नहचू और मंगल काव्य है। दर्शन के लिए तुलसी ने रामलीला, कृष्ण काव्य ने रासलीला जन्म देने के दार्शनिक हैं। भक्ति काल

रस खान मानवता के आदर्श कवि हैं। तुलसी का नहचू और मंगल काव्य है। दर्शन के लिए तुलसी ने रामलीला, कृष्ण काव्य ने रासलीला जन्म देने के दार्शनिक हैं। भक्ति काल के कवियों का संत सत्य का आचरण करता है। शांत सहज स्वभाव में संत बसती है। संत कवि सद्गुण परम मंगल है। रहमन विपदा की बली जो थोड़े दिन होए, निर्बल कौन सताइए जाको मोटी है। अद्भुत व्यक्ति संसार में खोजने से नहीं मिलता। संस्कृत का संकट ज्यों ज्यों गहराता जाएगा, भक्ति काल के कवियों का दर्शन उतना मूल्य प्रासंगिक सिद्ध हुआ। धम धूसर मनाने वाली सभ्यता संत तुलसीदास ने मध्य युग के मानव समाज को बचाया। कवितावली में कलिचाल की कुचाल तुलसीदास को व्यथित करती है। सारे सदग्रंथ लुप्त होने में बड़े कवि तुलसीदास पुनः प्रेरणा स्रोत बनाई। जहाँ मिले रवि आगे जाए कवि, दर्शन का संयोग दुर्लभ मंत्र है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कठिन कलेशा, रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कवियों का धर्म दर्शन का सत्य है। ऐतिहासिक संदर्भ का गुण दार्शनिक मंत्रमुग्ध सत्य मंत्र गूंजता है। भक्त में भक्त का भगवान से सीधा संपर्क प्रेम है। भक्त का दर्शन हंस मिला। भक्त का संबंध हृदय से होता है और प्रेम हृदय की धड़कन है। माता अपने नवजात शिशु को अपना दूध पिलाती है, उस समय आनंद पाती, तृप्ति और संतुष्टि अनुभव करती। वह केवल वही जानती है भक्त का फल आनंद है। भक्त और विभक्त का अर्थ जुड़ना का भाव है। जीवन सुंदर बनाने के लिए प्रेम और करुणा अपनाना है। विश्वास से भक्ति जीवन में परमानंद मिलता है। नींव विश्वास पर दर्शन टिका होता है। मीराबाई ने भौतिक आनंद छोड़कर, सामाजिक परंपराएं तोड़कर, संत रविदास की शरण में जाकर आध्यात्मिक आनंद का रसपान किया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों का मानस दर्शन बिन विश्वास भक्ति नहीं मंत्र है। काकभूषुंड ने प्रार्थना की भगत हीन गुण सब गुण ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। सूरदास का बाल जीवन किष्ट के लिए है। वात्सल्य रस में माता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस भक्त के साथ वियोग वात्सल्य श्रीकृष्ण चेतना है। मैया मैं नहीं माखन खायो, कवि सूरदास ने भक्त और वात्सल्य को रस रूप प्रदान किया। भक्ति आनंद प्रेम और आध्यात्म ऊर्जा श्रीकृष्ण ने दिया। कान्हा की बांसुरी की मधुर तान मुरली मनोहर का सौंदर्य स्वरूप है। गोकुल की चेतना दार्शनिक है। बीज मंत्र राम के लिए दर्शन तर्क शास्त्र से मुक्त जन दर्शन और जीवन दर्शन रूप अपनाया। निरंजन अनहत का कंठहार बनाया गया। कवियों का षट दर्शन वेदांत योग सयो और साग दर्शन प्राप्त हुआ। ब्रह्म जीव जगत माया रहस्य वाद की प्रतिष्ठा कर न्याय मीमांसा नहीं भटकाया। बीज मंत्र राम के सहारे दर्शन रूप में अपनाया। विश्व विभीषिका का एकमात्र मुक्ति मार्ग है मानस। भक्ति काल में कवियों का संतत्व का संदेश जथा लाभ संतोष दिव्य आचरण और आस्था का संचार करती है। सेवा को जीवन का संस्कार बनाया। भक्ति आंदोलन के उन नायक संत दादू ने पाखंड का विरोध किया। कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहिब घर ही माए। जयपुर नरेना तीर्थ का निखार उभार आता है। समय के पहले कुछ नहीं होता। वाग देवी की वीणा झंकृत हुई, भक्ति संगीत आराधना का दर्शन मिलता है। भक्ति मार्ग के प्रणेता संत तुकाराम का दर्शन कहते, दया वही योग्य कहलाती है जो सज्जन का पालन करती है। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करते हैं। कबीर की वाणी अंतः प्रेरणा से निकलती है। वचनामृत से ज्ञान सागर का बीजक ग्रंथ दर्शन अलौकिक है। कबीर कुरीतियों से समझौता करने वाले संत नहीं थे। सूफी दर्शन के लिए जायसी की साधना सिद्धांत ओतप्रोत है। हृदय से निकलकर हृदय पर चोट करती है अलौकिक प्रतिभा की दृष्टि से कबीर का मूल्यांकन अत्यंत दुर्लभ दार्शनिक है। सत्य की खोज अखड़पन भाषा से युक्त रही अखंड भक्त में एकात्म होने की बात करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाए। सबसे बड़ा दर्शन मानवता है। मैं हूँ भूखा ना रहूँ साधन भूखा जाए। संदेश सार्थक है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। यही दर्शन है रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। यही है रहमन पानी राखिए बिन चाहे सब सुन। भक्ति सागर में सागर है। भक्ति बड़ी शक्ति दूसरों के लिए है। धर्म का जीवन दर्शन निखारा, दिशा आगे मिलती है। भारतीय संस्कृति में अन्न को भगवान का प्रसाद माना गया है।

0: नरने वा नारायण सेवा भूख मिटाती है, भेंट बनना दार्शनिक है, सरस्वती शब्द बंसी बनाती हैं, आजीविका साधना रहित विद्वान दुर्बल की भूख मिटाने वाले जैसे व्यक्ति नहीं, भक्त कवियों का दर्शन है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक दें रघुवीर, भक्त निश्चल दर्शन देती है, परोपकार दर्शन मंत्रमुग्ध करती है, भक्त का देवत्व आती है, देने वाले देवता भक्त दर्शन है, करुणा भक्त का दर्शन है, लोक मंगल भक्त का आधार है, आनंद सन दर्शन है, कवियों का दर्शन मंगल संदेश है, दुर्बल संयोग सरस्वती है, भक्त रचनाएं महान दर्शन है, नरोत्तम दास की भक्ति दार्शनिक है, भक्तकाल कवियों ने रचा इतिहास प्रसंग दर्शन, साधारण होने की सुंदरता असाधारण घटनाएं कवियों का दर्शन है, आंखें करुणा का इतिहास छिपा होता है, रोटी में धरती का श्रम, प्रेम में मानवता की विरासत, हर नए दिन में ब्रह्मांड का उपहार समाया कवियों का भाव है, विश्वास भक्त से आनंद मिलता है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, संत तुलसीदास ने कहा, जाने बिन होई परतीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति, भक्ति भगवान के दर्शन से प्रारंभ होती है, भक्त भक्त की ऊंचाइयों को छू लेता है। संत तुलसी का चातक प्रेम वर्णन मीराबाई विरह वेदना का प्रतीक है, संकट के क्षणों में गिरधर मीरा उन्हें जीवन उदारी का ध्यान आता है, जो उन्हें ऐसे दुष्टों से बचा सके जो सदा उन्हें विपत्ति में डाल देते हैं, भक्त चेतना में मानवीय संवेदना की उदारता का चित्र उभरता है, मेवाड़ की मरुभूमि में भक्ति मंदाकिनी के रूप प्रकट हुई, मीरा ने वृंदावन की यात्रा की, यह भूमि उनके इष्टदेव की क्रीड़ास्थली थी, गोकुल उजाड़दीनी, मथुरा बसायदीनी, कुब्जा कुराजदीनी, राधे कुविशार, कुंजन कुंजन फिरत राध के शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बीना नर फीको, मीरा जात पात में विश्वास नहीं करती, समरसता की स्थापना हरि भक्तों को एक वर्ग का मानती हैं, संत शिरोमण स्वामी रविदास किसी व्यक्ति वस्तु आस्था और विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी व्यवहार को मानते हैं, मन चंगा कठौती में गंगा, दूसरों का हित करने वाली परोपकारी है, निर्गुण भक्ति साधना का दर्शन कबीर के बाद संत रविदास ही रामानंद के शिष्य थे, पवित्रता के कारण रविदास की पत्नी के नाम की आराधना की गई, देवत से बड़ी देवत की साधना दार्शनिक है, प्रभु जी तुम चंदन पानी दैवीय गुण कविकों का अद्भुत दर्शन है, अभाव से भरा हुआ जीवन कठिनाई से रोटी बनाने में एक साध की भूख शांत की, करुणा और दानशीलता ने जीवन में नया दर्शन मोड़ दिया, सत्य की खोज का दर्शन मंत्रमुग्ध करता है, कवि का जीवन दर्शन तुलसी सिद्ध संत उच्चतम दार्शनिक हैं, जन्म से तुलसी विकट घाटियां पार करते गए, प्रार्थना सेवा त्याग करुणा प्रेम अहिंसा में कवियों का दर्शन मिला, आंतरिक शुद्ध चरण पर भक्त कवि देते हैं भक्तिकाल के कवियों का दर्शन, संत तुलसीदास कबीर रविदास सूरदास रहीम रसखान जायसी मीराबाई की रचनाएं महान हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे की वार्ता, विषय था भक्ति काल में कवियों का दर्शन। और इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों की गाई नात एवं कवालियाँ।

अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों की गाई नात एवं कवालियां अभी आप सुन रहे थे, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का आज का ये कार्यक्रम आप यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:30, और इसी के साथ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मैंने प्यार क्यों किया इस फिल्म के गीत के साथ। सोनू निगम और जयेश गांधी, अमृता काक की आवाज़ों में प्रस्तुत है ये गीत।

0: just
1: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और जयेश गांधी अमृता काक की आवाजों में मैंने प्यार क्यों किया इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं के नीति मोहन और विशाल ददलानी को गुंडे फिल्म के गीत में।

गुंडे फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। आवाजें थी के नीति मोहन और विशाल ददलानी की। कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं गायत्री अय्यर और शान की आवाजों में। फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।

0: सलाम नमस्ते फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं गायत्री अय्यर और शान की, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए, और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री

0: गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की।

0: बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी

0: the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतालिक सहसाला विज़न दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। और US ओपन बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान चेन्नई ताइपे के आला दर्जे के खिलाड़ी चाउ टीएन चेन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदांबी श्रीकांत और 3 खवातीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात से मुक्त भारत के विज़न को हासिल करने के लिए आज एक तफसीली लाहे अमल पेश किया। मंशियात के कंट्रोल की ब्यूरो के जरिए मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मंशियात की कंट्रोल से मुतालिक एक विज़न दस्तावेज का आगाज़ किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने यह कहते हुए मंशियात के खिलाफ एक मुत्तहदा लड़ाई पर जोर दिया कि मंशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात और नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। उन्होंने रूहानी लीडरों, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए वो सब एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर यकजा हों।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वज़ीर दाखिला ने एक ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट का भी आगाज़ किया, जिसके तहत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए मालियत की 209,500 किलोग्राम जब्त शुदा नशावर मादों को ज़ाया किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान अवामी शिरकत से एक अवाम उन्नास की तहरीक बन गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने यह बात समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वज़ीर मुमलिकत BL वर्मा का एक मज़मून शेयर करते हुए कही, जो नशे से मुक्त भारत की तामीर की अहमियत पर तहरीर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने नशे से मुक्त भारत और विकसित भारत बनाने के मिशन में शामिल होने के लिए हर एक शहरी पर जोर दिया। जनाब वर्मा ने अपने मज़मून में तहरीर किया है कि हुकूमत मंशियात की लत को एक हसास मामला समझती है, जो भारत के नौजवानों के मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की से ताल्लुक रखता है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने अद्वियात से मुतालिक जाबते 1945 में तरामीम की तजवीज़ की है। उनका मकसद मुआइने, टेस्ट करने या तजिया करने के लिए इजाज़त हासिल करने वाले जाबतों को सहल बनाना है। वजारत ने कहा कि तरमीम में तमाम तरह की अद्वियात को तजिया जाती और गैर क्लिनिकल टेस्टिंग मकासद के लिए कम मकदार में दरामद करने के लिए मंजूरी पर मबनी एक निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। सहल करदा जाबतों का इतलाक उन बहुत सी अद्वियात पर नहीं होगा जिनका ताल्लुक जिनसी हारमोन्स, साइटोटॉक्सिस ड्रग्स और बीटा लैक्टम ड्रग्स से है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद को तैनात करने और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इसका मकसद भारत बरतानिया

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 9:30 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है आप ही के पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं आप ही के फरमाइशी ईमेल। और आपको बता दें, आज का ये सफ़र आप तय करेंगे अपनी रेडियो साथी आकांक्षा के साथ। तो कार्यक्रम में अब देर नहीं करते हैं और आपके साथ साझा कर रहे हैं पहला ईमेल। और ये ईमेल हमें आया है कुरसठ हरदोई से, और ईमेल करने वाले हमारे श्रोता हैं राम खिलावल, अवनीश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र बबलू, रामप्रसाद, देवीशंकर शुक्ला, विजय पाल यादव और कृष्ण कुमार सिंह। सबसे पहले तो आपने हमें बहुत सी शुभकामनाएं दी, और आप लिखते हैं कि सभी आकाशवाणी लखनऊ को सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। भाई, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें इस तरह से हम पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि हमारे कार्यक्रम आप तक पहुँच रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं। ईमेल में आप आगे लिखते हैं, जो इंसान अपने इरादों को में मजबूत होता है, उसे कोई भी मुश्किल ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। आंधियां हमेशा उन दियों की परीक्षा लेती है जो जलने का हौसला रखते हैं। अपने हौसले को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए। कितनी खूबसूरत सी बात, और कितने आसान शब्दों में आपने हम तक और हमारे सभी श्रोताओं तक पहुँचा दी। बहुत ज़रूरी है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और संघर्षों में जीतने के लिए हौसला बहुत ज़रूरी है। तो भाई, आपने इतनी अच्छी बात साझा की, इसीलिए अब आप ही की पसंद का गीत आप ही के रेडियो सेट तक पहुंचाए देते हैं। आपने फरमाइश की है किशोर कुमार के गाए गीत की, फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया, और इसी फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पे पहुंचा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की फरमाइश पर आप ही की पसंद के गीत। और कार्यक्रम में अगला ईमेल जो हमने लिया है वो है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप का। आपने हमें मोहाली चंडीगढ़ से ईमेल किया और अपनी फरमाइश हमसे जाहिर की। भाई आप ही की फरमाइश पहुंचा देते हैं आपके रेडियो सेट पर, सौतन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

सौतन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं शक्ति फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है

बालोद छत्तीसगढ़ से। और ईमेल करने वाले हमारे श्रोता हैं देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। आप सभी ने फरमाइश की शक्ति फिल्म के गीत की। आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

बाराबंकी से ही नवीन जायसवाल, ग्राम सदरपुर भानमऊ बाराबंकी से अखिलेश, उजरवारा पुरवा फतेहपुर बाराबंकी से आदर्श वर्मा, चांदपुर सिधौली सीतापुर से शिवानी कश्यप, लखनऊ से राजकुमार शर्मा, सागर साहब और मुकेश मौर्य, पैंतीपुर सीतापुर से बसंत कुमार, आप सबकी सम्मिलित फरमाइश हमारे पास आई और आपकी फरमाइश पर लीजिए पेश है धर्मवीर फिल्म का गीत मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं धर्मवीर फिल्म का गीत मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और इस गीत की फरमाइश आई है पलिया मसूदपुर बाराबंकी से अंजनी कुमार की।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम में अब वक्त है कि हम अंतिम फरमाइशी ईमेल शामिल करें। और ये ईमेल हमें आया है रोशनी रावत का। आपने हमें सफ़ीपुर उन्नाव से ईमेल किया है और आप लिखती हैं कि मेरी इच्छा है कि एक गीत सुना दें, सुना देंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अरे भाई बिल्कुल क्यों नहीं, आपने अपनी पसंद हमसे जाहिर की, हम ज़रूर पूरी करेंगे आपकी पसंद। और सफ़र फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे की आवाज़ में।

सफ़र फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी पसंद का आज का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। आप थे अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा के साथ और ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं रात के 10 और इसी के साथ अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट से। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज़ों में।

बड़े मियाँ छोटे मियाँ इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अमित कुमार, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें थीं। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को शोल्जर फिल्म के इस गीत में।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में शोल्जर फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं राम लखन फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़, नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की।

राम लखन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और आइए अब सुनवाते हैं आपको हैरी आनंद और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में बिच्छू फिल्म का गीत।

बिच्छू फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे थे हैरी आनंद और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को सरफरोश फिल्म के गीत में।

सरफरोश फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 10:30। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अशोक गोस्वामी का राग जयंत मल्हार में वायलिन वादन, और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे अशोक गोस्वामी का राग जयंत मल्हार में वॉयलिन वादन, और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। और इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 26 जून 2026 को 100 साल मुकम्मल कर चुका है। समात फरमाइए। इमामबाड़ा गुफरान मुआब लखनऊ में मुनक्किद मजलिसे शामी गरीबा की रेडियो रिपोर्ट। मजलिस को खिताब कर रहे हैं जनाब मौलाना कल्ब जव्वाद साहब।
1: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعده فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوا على النبي محمد وآل محمد عليه السلام। पहले तो ये बात आपके सामने अर्ज़ करना है कि मजलिस शामी गरीबा जिसमें आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, ये 1926 में सबसे पहली मरतबा इसी हुसैनी फरमाबाद में मुनक़िद हुई थी और आज जो है वो 2026 है। तो अंग्रेज़ी के लिहाज से तो 100 साल हैं मगर अरबी कैलेंडर के लिहाज से 103 साल हो रहे हैं इस मजलिस शामी गरीबा को, जो सबसे पहले इसी हुसैनिये में लखनऊ में मुनक़िद हुई और आज दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जहाँ ये मजलिस मुनक़िद न हो रही हो। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाली। मौजू गुफ्तगू जो पूरे अशरे में रहा वह है तौहीद अहले बैत अलैहिस्सलाम, तौहीद मोहम्मद वाली मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये गुफ्तगू लिहाजा जो हक मौजू वादा नहीं हो सका, मैं चाहता हूँ कि इस मजलिस में भी जो मजलिस शामी गरीबा के नाम से मारूफ है उसमें भी थोड़ी देर अपने बच्चों और जवानों के लिए कुछ तौहीद अहले बैत के सिलसिले में अर्ज़ किया जाए। अगरचे ये मुश्किल बहुत मुश्किल मौजू है, सख्त मौजू है, लेकिन हमारे सामने बड़ा समझदार मजमा है, बड़ा पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। इंशाल्लाह मैं जो बातें अर्ज़ करूँगा उस पर गौर व फिक्र आप हज़रात फरमाएँगे और बहुत संजीदगी से आप हज़रात गौर करेंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। देखिए बहुत फ़र्क है अहल बैत तौहीद में और हमारी तौहीद में, बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हम किसी चीज़ की शिनाख्त करते हैं तो हमेशा असर के ज़रिए से मुअस्सिर तक पहुँचते हैं, कि हमारा अंदाज़ यह है कि हम असर से मुअस्सिर तक पहुँचते हैं। असर से मिसाल पेश कर दूँ, हम धुआँ देखते हैं तो धुआँ देख कर हमें समझ में आ जाता है कि आग रोशन है, अगर आग हमने नहीं देखी मगर धुआं हमने देखा तो हम समझे आग है। तो धुआं है असर और आग है मुअस्सिर, इसका मतलब है असर से हमने मुअस्सिर को पहचाना। हमारे पीठ के पीछे कोई बोला, हमने उसको नहीं देखा लेकिन बोलने वाले से अंदाज़ा हो गया कि कोई पीठ के पीछे है जो बोल रहा है, अगर ना बोलता तो हमें अंदाज़ा ना होता कि पीठ के पीछे कोई मौजूद है। इसको कहते हैं असर से मुअस्सिर तक पहुँचना। तो हम जो अल्लाह को पहचानते हैं वो मखलूक़ात के ज़रिए पहचानते हैं, अल्लाह के जो मखलूक़ात हैं उनके ज़रिए से हम खालिक तक पहुँचते हैं। हमने दरियाओं के ज़रिए से अल्लाह को पहचाना, हमने समंदरों के ज़रिए से अल्लाह को पहचाना, हमने चाँद के ज़रिए से अल्लाह को पहचाना, हमने सूरज के ज़रिए से अल्लाह को पहचाना, हमने सितारों सैारों कहकशानों के ज़रिए से अल्लाह को पहचाना, हमने जो सितारों सैारों में जो नज़्म है जो इर्तिबात है उससे अल्लाह को पहचाना। तो यह हुआ असर से मौसर तक पहुँचना। लेकिन मुश्किल ये अहले बैत के सिलसिले में यह है कि हम मखलूक़ात के ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचते हैं, उसकी मारिफत हासिल करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अहले बैत और मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए मसला ये है कि जब वो दुनिया में आए तो मखलूक़ात में कोई मौजूद ही नहीं था, पूरी कायनात में हू का सन्नाटा था। जब मोहम्मद आले मोहम्मद तशरीफ़ लाए हैं, जब वो खल्क हुए हैं, जब अल्लाह ने उनको खल्क फरमाया है तो ना ज़मीन थी, ना आसमान था, ना सूरज था, ना कहकशाने थी, ना सितारे, ना चाँद, ना सूरज। आखिर वो उन्हीं ने अल्लाह को कैसे पहचाना, मसला है ये नहीं कि उन्हीं ने अल्लाह को कैसे पहचाना। लिहाजा यहाँ पर अइमे मासूमीन के हमें

होता तो मुझे होना चाहिए था, अगर मैं नहीं हूं तो फिर कोई नहीं। सलवात भेजे बनाना वास्त पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहीं पर एक लतीफ पहलू जो आपके सामने करना चाहता हूं। तमाम मुसलमान उलमा ने मुफस्सरीन ने लिखा कि कायनात की हर शय अल्लाह की इबादत कर रही है, तो इसका मतलब है कि हर शय मुसलमान है। ज़मीन इबादत कर रही है, ज़मीन मुसलमान। आसमान इबादत कर रहा, आसमान मुसलमान। सूरज इबादत कर रहा, सूरज मुसलमान। कायनात का तफसील नहीं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मुसलमान है, क्योंकि ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की इबादत कर रहा है, ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की इबादत कर रहा है, लिहाजा पूरी कायनात मुसलमान। मगर अजीब जुमला लिखते हैं मुफस्सरीन उलमा, लिखते हैं कि सब मुसलमान है मगर किसी ने ज़बान से कलिमा नहीं पढ़ा है, किसी ने जमात से कलमा नहीं पढ़ा। अरे सूरज ने कभी कलमा पढ़ा? चांद ने कभी कलमा पढ़ा? आसमान ने कभी कलमा पढ़ा? सितारों ने कभी कलमा पढ़ा? जमीन ने कभी कलमा पढ़ा? दरख्तों ने कभी कलमा पढ़ा? फिर कैसे मुसलमान? क्या अपने अमल के जरिए मुसलमान है, अपने किरदार के जरिए मुसलमान है? कलिमा नहीं पढ़ा, इनका अमल बताता है कि मुसलमान है। उसके बाद लिखते हैं कि इस्लाम जबानी कलिमे से साबित नहीं होता, किरदार से साबित होता है, सीरत से साबित होता है। इनकी सीरत बता रही है कि मुसलमान, इनका किरदार बता रहा है कि मुसलमान, इनका अमल बता रहा है कि मुसलमान। तवज्जो रजत करना चाहता हूँ, इसका मतलब पूरी कायनात को मुसलमान मान लिया बगैर कलिमा पढ़े। यहां तक जुमला लिखते हैं कि जितने मुनाफिक थे सब जबान से कलिमा पढ़ रहे थे मगर हकीकी मुसलमान नहीं थे, लिहाजा कलिमे से, जबानी कलिमे से इस्लाम साबित नहीं होता। मैं अर्ज करना चाहता हूं इन मुसलमान मुफस्सरीन से कि पूरी कायनात को किरदार और अमल की बुनियाद पर मुसलमान माना तो फिर एक शख्सियत के लिए क्यों शर्त लगा दी कि जब तक जमा से कलेमा नहीं सुन लेंगे उनको मुसलमान नहीं मानेंगे। पूरी कायनात को किरदार की बुनियाद पर मुसलमान माना मगर जनाब अबू तालिब के लिए शर्त लगा दी कि जब तक कलेमा नहीं सुनेंगे हम उनको मुसलमान नहीं माने। अगर किरदार और सीरत बुनियाद है तो अबू तालिब से बढ़कर कोई मुसलमान ही नहीं है। एक सलवात भेजे बलनावास पर मोहम्मद वाले। आज पूरी दुनिया हुसैन का गम मना रही है, कोई खित्ता ऐसा नहीं है कि जहाँ हुसैन का गम न मनाया जा रहा हो। अरे पहाड़ों के दर्रों में हुसैन का गम मनाया जा रहा है, रेगिस्तानों में हुसैन का गम, हिमालय की तराइयों में हुसैन का गम, अरे वेस्ट इंडीज के जंगलों में हुसैन का गम मनाया जा रहा है। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का असर है कि कायनात का कोई खत्ता ऐसा नहीं है जहाँ हुसैन का गम न मनाया जा रहा हो, क्योंकि हुसैन की कुर्बानियाँ ही ऐसी हैं जो एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए बातिल के लश्कर से कह रहे हो एक कौम जफाकार अगर ये मैं तुम्हारी निगाह में गुनाहगार हूँ तो इस नन्हे से बच्चे की क्या खता है। मगर तीन भार का तीर नन्ना सा गला, रिवायत कहती है कि अली असगर तीन भाल के तीर से ज़बह हो गए थे। हाँ हज़ारों इमाम हुसैन पहुँचते खेमे में नन्हे से अली असगर की लाश लिए हुए। अब चाहते थे कि अली असगर को दफन करें मगर दफन कैसे करें, करबला की ज़मीन आग की तरह चल रही थी। आज आपने देखा कि यहाँ उतनी गर्मी नहीं होती कि जितनी अरब के सहरा में गर्मी होती है, लेकिन पैर जमीन पर नहीं रखा जा रहा था, पैरों में छाले पड़े जा रहे थे मगर आजादार उसी गर्म जमीन पर चल रहे थे। या हुसैन कहते पता नहीं कितनों के पैरों में छाले पड़ गए, कितनों के पैर जख्मी हो गए, इतनी गर्म नमी थी, इतनी जल रही थी। तसव्वुर करो कि अरब के सहराओं में यहाँ से दुगनी गर्मी होती है, वो जमीन कितनी जल रही होगी। हुसैन ने नन्ही सी कब्र खोदी, नन्ही सी कब्र खोदी, जमीन आग की तरह से चल रही थी, नन्हे से अली असगर को उस कब्र में लिटाया, चलती भी रेत, जलती भी रेत, अली असगर

पैर डालना शुरू किए। अरे किस दिन से वो चलती हुई आ कितना की रेत अली असगर नंदी थी लाश पर डाली। रिवायत कहती है अब सिर्फ चेहरा रह गया था जिस पर खाक पड़ना थी जिस पर रेख पड़नी थी। इमाम हुसैन उठ जाते ए रबाब अब यहाँ से तुम्हारे से मुर्द है अली असगर तुम इसके चेहरे पर एक अपने हाथों से डालो। दारो नंदी से कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ करबला के मैदान में पहुंचते हैं हमला करते हैं जबरदस्त हमला। रिवायत कहती है कि हुसैन के सामने से सब भाग रहे थे जितने पहलवान आते थे एक वार में दो टुकड़े फिर दो दो पहलवान आने लगे एक बार में दोनों के दो टुकड़े आखिर में 10-10 पहलवानों की टोलियां आईं। इमाम हुसैन तलवार नियाम में रख लेते थे उन पहलवानों के दरमियान जाते थे और दो के सर पकड़ कर आपस में टकरा देते थे दोनों के भेजे निकल आते थे बराबर इतने पहलवान थे कत्ल होते जाते थे। शिवर खड़ा हुआ उसने कहा ए उमर साथ क्या हुसैन के हाथों सारे पहलवानों को कत्ल करवा देगा पूरे लश्कर को एक साथ हमला करने का हुक्म दिया जाए 1,00,000 का लश्कर हुसैन अकेले चारों तरफ से हमले हो रहे हैं कोई तीर मार रहा है कोई तलवार मार रहा है और जिसके पास कुछ नहीं था वो पत्थर मार रहे थे। पिसरे सात के पास लोग पहुंचे ए पिसरे सात अब मैदान में सारे पत्थर खत्म हो गए अब यहाँ कोई पत्थर मौजूद नहीं है अब हम क्या करें। बलून कहता है ये जलती हुई रेत उठा और हुसैन के जख्मों पर डाला ताकि ज्यादा से ज्यादा अजियत हो। बस मजलिस तमाम हो रही है ज़ादारा। रिवायत कहती है कि हुसैन जीने फरस पर डगमगा रहे थे कभी दाईं तरफ झूम जाते थे कभी बाईं तरफ और ज़बान पर क्या था ई वल्लाह अल्लाह की कसम नहीं अल्लाह की कसम नहीं। अरे हुसैन क्या कह रहे हैं अल्लाह की कसम नहीं अतला मिशकिनी कहते हैं कि लगता है कि कोई दोनों पहलुओं में कोई संभालने आ गया था। अरे दोनों पहलुओं में कोई संभालने आ गया था एक पहलू में रसूल आ गए थे दूसरे पहलू में फातिमा जहरा आ गई थी मेरे लाल जमीन बहुत चल रही मेरे लाल तू जख्मों से चूर है आ तुझे अपनी गोद में लिए लेती हूँ ताकि तेरे जख्मों को अजियत न। हुसैन कहते थे नहीं अल्लाह की कसम नहीं अल्लाह की कसम नहीं मुझे इम्तिहान देने दीजिए मैं इम्तिहान दे रहा हूँ। यही वो वक्त था कि एक नैजा आकर सीने में पड़ता है और सीने को तोड़कर पार निकल जाता है। हुसैन ने वो नैजा निकालने की कोशिश की नैजा नहीं निकल सका नैदा नहीं निकल सका। मेरा दिल कहता है कि हुसैन ने लाशिया अली अकबर का रोक करके कहा होगा ए मेरे लाल अली अकबर तुम्हारे सीने से मैंने तो नैदा निकाल लिया अरे मेरे सीने से कौन नैदा निकाल। तीरों की बारिश होती है तीरों की बारिश। पिसरे साथ कहता है ए हुरमला हुसैन गिर नहीं रहे हैं कोई ऐसी तरकीब कर कि हुसैन घोड़े से गिर जाए हुसैन घोड़े से गिर जाए। हाँ आज़ादार मलून ने चिल्ले कमान में तीर जोड़ा इस तरह से निशाना लिया कि सीधा पेशानी पर आकर तीर पड़ा पेशानी को तोड़कर पार हो गया। हुसैन अब संभल नहीं पाए जीने फरस से डगमगाते हुए ज़मीन के ऊपर आ गए। आज़ादार अब मस्जिद ख़त्म करना चाहता हूँ 2 मिनट की जहमत है आप अगर करबला जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर इमाम हुसैन गिरे थे ज़ख्मी होकर और जहाँ पर शिवर ने शहीद किया था तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है। अरे मैं कैसे उस मुसीबत को बयान करूँ कैसे इस मुसीबत को बयान करूँ जो करबला जाते हैं मेरी बात की तस्दीक कर ले जाकर कि जहाँ पर इमाम हुसैन घोड़े से गिरे थे जख्मी होकर मुझ जगह महफूज है वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ी आप मुझ जगह महफूज है लेकिन जहाँ हुसैन के गले पर खंजर चला था तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला हुसैन इतने जख्मी थे

0: कि ना चल सकते थे, ना उठ सकते थे, ना घुटनियाँ चल सकते थे, किसी तरह से चल नहीं सकते। ये 1 किलोमीटर का रास्ता कैसे तय हुआ? अरे देखने वालों ने मंजर देखा, मनुष्य शिव कंजल लेकर करीब आया, बालों में हाथ डालकर हुसैन को खींचना शुरू किया। ए शिव, अगर दबा कर ला तो यही क्यों नहीं दबा कर देता? अगर खंजर चलाना है तो यही क्यों नहीं खंजर चला देता? वो मलूर कहेगा, अरे यहाँ नहीं सभा करूँगा, यहाँ नहीं खंड करूँगा, यहाँ हुसैन की बहन ज़ैनब मौजूद नहीं है, देखो सामने खड़ी हुई है, उसके सामने ले जाकर सभा करूँगा। बहन फरियाद करती रही, हुसैन के गले पर खंजर चलता रहा। अदादारो शाम गरीबा नमोदार हो गई। जनाब ज़ैनब छोटे छोटे बच्चों के लिए हुए जलते हुए खेमों की खाक पर बैठी हुई हैं। बच्चे बड़ी मुश्किल से प्यास में सोए थे। देखा शहजादी ने कि कूफे की तरफ से एक सवार आ रहा है। शहजादी एक टूटा हुआ नैजा लेकर खड़ी हो गई। सवार से कहा, देखो हमारे करीब ना आना, हमारे करीब ना आना, देखो बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए प्यास में, वो फिर ना जाग जाए। अगर तुम्हें लौटना है, अगर लूटना है तो दिन में आकर लूट लेना, लेकिन हमारे पास कुछ बचा नहीं है, जो कुछ था सब तुम लोग लूट लेंगे। मगर वो सवार आगे बढ़ता आ रहा है, आगे बढ़ता आ रहा है, यहाँ तक के जनाब ज़ैनब करीब पहुँच गई। मैं तुमसे कह रही, अरे मैं अली की बेटी होकर तुमसे कह रही हूँ, ये सुनना था। उस नकाब उस सवार ने अपने नकाब उल्टी, ए ज़ैनब किसको रोक रही हो? मैं तुम्हारा बाप अली हूँ, मैं तुम्हारा बाप अली। ज़ैनब दौड़ कर बीबियों के पास आई, अगर कोई चली हुई चादर होता मुझे दे दो, अगर कोई चली हुई चादर तो मुझे दे दो, मैं बाप के सामने भी बगैर कभी चादर के नहीं आए। नहीं शहजादी, कोई चादर मौजूद नहीं। तड़प कर आई, बाबा के कदमों पर सर रख दिया। ए बाबा, उस वक्त आप कहाँ थे जब हुसैन के गले पर खंजर चल रहा था? ए बाबा, उस वक्त कहाँ थे जब खेमा में आग लगी हुई थी? हादत और मजलिस खत्म हुई। जो यहाँ की रिवायत है कि हूर की ज़ौजा कुछ खाना पानी लेकर आती है, शहजादी उसका इस्तकबाल करती है, उसके बाद वो पानी पेश करती है। शहजादी का मैं नहीं पीऊँगी, पहले सकीना पिएगी। सकीना आलम गशी में पड़ी हुई थी, पहुंची और बच्ची का शाना हिलाया, ए सकीना पानी पी लो, ए सकीना पानी पी लो। नींद से आँख खुली थी, घबरा कर कहा, क्या मेरा चचा पानी ले आया? क्या मेरा चचा अब्बास पानी ले आया? नहीं सकीना, अरे चचा तो फरात के किनारे शहीद हो चुके हैं, ये हुर की ज़ौजा तो पानी लेकर आई है, बेटा तुम पी लो। ये सकीना तुम पी लो। फूफी अम्मा, आपने पानी पिया? क्या नहीं, तुम सबसे छोटी हो, लिहाजा तुम पहले भी हो। ये सुनना था कि जामे आम लिया और मख्तल का रुख किया। ए सकीना कहाँ जा रही हो? वो भी अम्मा, मुझसे छोटा तो अली असगर है, वो पहले पानी पी रहे। सकीना ने पानी पीने से इनकार किया। इमाम ज़ैनुलाबदीन को खबर की गई, इमाम तशरीफ लाते हैं, ए सकीना पानी पी लो। सकीना ने इनकार किया, उस आकार इशारा किया, सामने से पर्दे हटे, देखा जन्नत का मंजर है। इमाम हुसैन कौसर के सामने शहजादी फातिमा ज़हरा की आगोश में सर है और शहजादी जामे कौसर लिए, ए बेटा बहुत प्यासे हो पानी पी लो, 72 लाशें उठाए पानी पी लो। ए अम्मा कैसे पी लो? मेरी सकीना प्यासी है। ए सकीना, जब तक तुम नहीं पियोगी कौसर का पानी हुसैन नहीं पिएगा, जन्नत में तुम्हारा बाबा प्यासा है।
1: अभी आप इमाम बाड़ा गुफरान मुआब लखनऊ में मुनक़िद मजलिस शामी गरीबा की रेडियो रिपोर्ट समाअत फरमा रहे थे, जिसे खिताब कर रहे थे जनाब मौलाना कल्ब जव्वाद साहब। दीन नबी पर खास करम है हुसैन का, जितना हो जिक्र जिक्र वो कम है हुसैन का। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस रिपोर्ट को आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से पेश किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे लखनऊ स्थित स्थानीय इमामबाड़ा गुफरा माप में संपन्न मजलिसे शामे गरीबा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। मीडियम वेव के मीटर पर

पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 11:41 और 18 सेकेंड। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।